एफ एम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पांचवी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने को है। हमारा आज का प्रसारण

ये प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्बनी से द्विपक्षीय सहयोग

0: के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। हर सुबह की तरह पहले वंदना देश की। विश्व को मानवता और सत्य अहिंसा का संदेश देने वाले भारत को नमन करते हैं, जिनके लिए महाकवि कहते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ हो चलो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो।

समूह सुर में ये देश वंदना अभी आपने सुनी और आइए अब आरंभ करते हैं आज की ईश वंदना। सबसे पहले प्रणाम मंगल मूर्ति गिरजानंदन गणपति को करते हैं एल नितेश के गाए इस भक्ति गीत के साथ।

एल नितेश और साथियों के स्वर में ये भजन अभी आपने सुना। और आइए भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में करते हैं प्रार्थना। सर्वशक्तिमान हे ईश्वर महान, हमें दीजिए वो अमर ज्ञान जिससे हो हम सबको जग में समता का भान। ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते और पंथ अलग अलग हो सकते हैं, परंतु वे सभी हमें एक ही संदेश देते हैं, जियो और जीने दो। आइए सुनते हैं ये जैन पादिका। स्वर है दिलराज कौर और कृष्णा कल्लई के।

ये जैनपदी का अभी आप सुन रहे थे दिलराज कौर और कृष्णा कल्लई के स्वर में। और आइए अब रंग जाते हैं सांवरे के रंग में, सुनते हैं ये भजन जिसे स्वर दिया है आशा भोसले ने।

कृष्ण हमारा चिंतन है तो वहीं राम हमें मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह चरित्र सिखाते हैं। इसीलिए कहा जाता है राम के किए गए कार्यों का अनुसरण करें और कृष्ण के शब्दों का अनुकरण करना चाहिए। आइए सुनते हैं ऐसा ही भाव लिया एक सुंदर सा भजन जिसे स्वर दिया है अनूप जलोटा ने।

अनुप जलोटा के स्वर में ये भक्ति रचना आप सुन रहे थे। इसी के साथ आज की आराधना हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ संपन्न करते हैं कि ईश्वर हमारे हर कार्य में मदद करेंगे और हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे।

0: देशवंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है कार्यक्रम खेती की बात सुनने का। जैविक खेती, खरीफ सीजन में अपनाए जाने वाले उपाय के बारे में जानकारी आज आप सुनेंगे। वाचन स्वर चित्रलेखा तिवारी का है।
1: किसान संगी हुआ राम राम, जय जोहार। संगवारी हुआ, जैसे कि खरीफ सीजन शुरू हो चुके हैं और ये समय है खेती में ऐसे उपाय अपनाए के जो माटी की उर्वरता बढ़ावाए, उत्पादन ला सुरक्षित रखाए और खेती के लागत भी कम कराए। आज हम बात करबो खरीफ मौसम में जैविक खेती अपनाए के महत्वपूर्ण उपाय। ए विषय में आवा जानी कौन प्रकार ले जैविक तकनीक के उपयोग करके हम स्वस्थ फसल और बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकत हन। खरीफ मौसम में धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग, उरीद, बाजरा और बहुत प्रकार के फसल के बुआई किए जाते। जैविक खेती के मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक तकला कम करना और प्राकृतिक संसाधन के उपयोग करना। एक बार सबसे पहली तो भुइयां के तैयारी करना चाहिए। तब भुइयां के तैयारी पर मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, माने माटी के जांच करवाना है। जैविक खेती की शुरुआत ही स्वस्थ माटी से होते और खेत के तैयारी के समय अच्छी तरह सरे हुए गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, नाडेप खाद के प्रयोग करा। प्रति एकड़ 2 से 4 टन जैविक खातु माटी में मिलाए ले

0: भूमि के उर्वरता शक्ति बढ़ते और जल धारण क्षमता में सुधार होते। अब माटी के परीक्षण के आधार में जैसे हमन बताए रहे वैज्ञानिक मन ओकर आधार में पोषक तत्व के आवश्यकता के निर्धारण करते कि कतका कतका का दवाई या खातू डालना है। ये है सबसे महत्वपूर्ण होते। दूसर होते गुणवत्ता युक्त एवं उपचारित बीज के चयन। बुआई बर प्रमाणित अस्वस्थ बीज के चयन करना चाहिए। बीज ला जैविक विधि से उपचारित करना बहुत आवश्यक है। एकर बर ट्राइकोडर्मा एजोटोबैक्टर राइजोबियम या पीएसबी जैसे जैव उर्वरक के उपयोग किए जाते। बीज उपचार से बीज जनित रोग के प्रकोप कम होते और अंकुरण बेहतर होते। संगी हुआ तीसरा बात करबो जैव उर्वरक के उपयोग के। खरीफ फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस के उपलब्धता बढ़ाए बर जैव उर्वरक के उपयोग करते। एजोटोबैक्टर एजोस्पिरिलम राइजोबियम फास्फेट ये सब घुलनशील जीवाणु जो उन्हें माटी में पोषक तत्व के उपलब्धता बढ़ाते। एकर प्रयोग करे ले रासायनिक उर्वरक की आवश्यकता कम होते और उत्पादन लागत भी घटते। फिर बात करबो खरपतवार प्रबंधन के। जैविक खेती में खरपतवार नियंत्रण बर यांत्रिकी या सांस्कृतिक उपाय भी अपनाते। कैसे समय समय में निंदाई गोड़ाई करा और मल्चिंग के प्रयोग करा। फसल अवशेष सूखा घासला मल्चिंग करे ले खरपतवार कम उगते और माटी में नमी भी बने रहते। जैविक कीट और रोग प्रबंधन के बात करबो तो खरीफ मौसम में कीड़ा और रोग के प्रकोप बढ़ जाते। एक नियंत्रण पर नीम आधारित उत्पादन नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र अग्नि अस्त्र और दशपर्णी अर्घ जैसे जैविक घोल के उपयोग किए जा सकते हैं। संगे संग खेत में जन पक्षी बैठे की व्यवस्था करे रहता ना फेरोमोन ट्रैप और पीला चिपचिपा ट्रैप एकर लगाए से हानिकारक कीट के संख्या कम हो जाते और मित्र कीट बांच जाते। छठवा बात करो फसल विविधीकरण मिश्रित खेती के। तो एक फसल ला बार बार लगा के बजाय फसल चक्र अपनावा। दलहनी तिलहनी फसल ला शामिल करे से माटी की उर्वरता बने रहते। मिश्रित खेती और अंतर्वर्तीय खेती ले कीड़ा रोग के दबाव कम होते और किसान मन ला अतिरिक्त आय भी मिलते। अब बात करबो जल प्रबंधन के। तो खरीफ मौसम वर्षा आधारित होते एकर बार खेत में जल निकासी की व्यवस्था उचित रखना चाहिए। काबर के पानी गिरत रहते कई दिन तक झड़ी करे रहते। ज्यादा पानी खेत में भराए ले खेत के धान है जलक जते। तो जहाँ जल संरक्षण और सूक्ष्म सिंचाई तकनीक के उपयोग करा एकर से फसल में आवश्यक नमी मिलते और जल के भी बचत होते। बाकी जैविक प्रमाणन के बात करबो तो जैविक उत्पाद के बाजार में मांग लगातार बढ़त जाते। किसान भाई मन समूह बना के या संबंधित योजना से जुड़ के जैविक प्रमाणन प्राप्त कर सकते हैं। प्रमाणित जैविक उत्पाद बेहतर मूल्य दिलाए में सहायक है। तो कहे के मतलब है आप मन जैविक खेती अपना के माटी के सेहत में सुधार करा उत्पादन लागत कम करा पर्यावरण संरक्षण में योगदान देवा और जैविक खातू जैविक जैव उर्वरक प्राकृतिक कीट नियंत्रण और उचित जल प्रबंधन कर जैसे उपाय ला अपना के जैविक खेती के चाबी अपन हाथ में रखा। संगवारी हुआ तो देखा का कहथन स्वस्थ माटी स्वस्थ फसल और स्वस्थ जीवन पर जैविक खेती ला अपनावा बढ़िया लागत पावा। यही गोट बात के संग आज के खेती के बात में अटके कल नवा विषय के साथ फिर उपस्थित होबो। तब तक के लिए राम राम जय जोहार।
1: जैविक खेती खरीफ फसल सीजन में अपनाए जाने वाले उपाय इस विषय पर खेती की बात कार्यक्रम आप सुन रहे थे चित्रलेखा तिवारी की स्वर में। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह के हैं। सतीश भाटिया का संगीत संयोजन है।

श्री राम और उनके तीनों अनुजों का विवाह संस्कार संपन्न हो चुका है और अब वधुओं की विदाई की वेला निकट आ चली है। प्रतिदिन अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, किंतु जनक जी के स्नेह भरे आग्रह पर उन्हें रुक जाना पड़ता है। बारातियों का आदर सत्कार पूर्ववत जारी है। कई दिन बीत जाने के बाद विदा की घड़ी आ ही पहुंची। महर्षि विश्वामित्र तथा वधुकुल के पुरोहित शतानंद ने राजा जनक को समझाया, आप स्नेहवश उन्हें विदा नहीं करना चाहते, परंतु विदा तो देनी ही है। जब रनिवास में यह समाचार पहुंचा तो सभी लोग इस प्रकार उदास हो गए जैसे संध्या होने पर कमल मुरझा जाते हैं। अनगिनत बैलों पर लादकर बारातियों के लिए मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री भेजी गई। साथ ही 1,00,000 घोड़े, 25,000 सजे सजाए रथ, 10,000 हाथी तथा गाड़ियों में भर भर कर उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण। उधर रनिवास में सीता समेत अन्य वधुओं की विदाई का करुण, अत्यंत मार्मिक तथा हृदय विदारक दृश्य उपस्थित है।

सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में मिताली सिंह भूपिंदर सिंह की मुख्य गायन स्वरों में आज का रामचरितमानस गान का अंक अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम नव विहान। इस कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी देंगे मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया अर्थात भारत में बनाओ अभियान भारत सरकार की पहल पर एक बहुआयामी अभियान है, जिसमें भारत को बनाने अर्थात भारत में निर्मित स्वदेशी सामानों का स्वर्णिम स्वप्न पूर्ण होगा। इसके अंतर्गत भारत को विनिर्माण के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा और यह संकल्प औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाकर आर्थिक समृद्धि लाने की धारणा पर आधारित है। सीधा सीधा अर्थ है उत्पादन बढ़ाओ, रोजगार के अवसर उत्पन्न करो और क्रय शक्ति बढ़ाओ। इस कार्य में विकास प्रक्रिया में सबको लाभ मिलेगा और सबकी भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर 2014 से आरंभ किया गया था भारत सरकार के द्वारा और ये एक प्रमुख राष्ट्रीय कार्यक्रमों में गिना जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य था देश के विशाल आबादी के लिए रोजगार सृजन करना और भारत को एक वैश्विक डिजाइन और विनिर्माण यानी कि मैन्युफैक्चरिंग केंद्र में बदलना। इसके अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को विकसित किया जाएगा, भारत के निर्माण क्षेत्रों में विदेशी निवेश यानी एफटीआई को बढ़ावा दिया जाएगा, साथ ही साथ व्यापार को सुगम बनाने के लिए नियमों को सरल भी बनाया गया है। सरकारी प्रक्रियाओं को आसान और पारदर्शी बनाया गया, जिसमें 25 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई। विनिर्माण, बुनियादी ढांचे और सेवा गतिविधियों में इन क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं श्रोताओं, जिनमें मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र पर काम करते हुए सरकार ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जिसमें रक्षा और तकनीक के क्षेत्र में भारत में बहुत सारे स्वदेशी परिवहन विमान और रक्षा उपकरण बनाए जा रहे हैं। मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत विश्व स्तर पर स्मार्टफोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रमुख निर्यातक केंद्र भी बनता जा रहा है। इसके साथ साथ इस योजना और संबंधित आर्थिक पैकेज जैसे कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत में ही स्वदेशी नवाचार और स्टार्टअप्स को भारी गति भी मिल रही है। युवाओं की ऊर्जा को भारत के यानी कि देश के लिए समर्पित करना इस कार्यक्रम यानी कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य भी रहा है।

मेक इन इंडिया कार्यक्रम के चार प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, जिसमें कि नई नई प्रक्रियाएं, न्यू प्रोसेसिंग, नई अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी नया होगा, नए नए क्षेत्र जिसमें कि बुनियादी ढांचे से लेकर सेवाओं में विकास की अपार संभावना वाले प्रमुख उद्योगों की पहचान की जा रही है, साथ ही साथ नई पीढ़ी की नई सोच यानी नई माइंडसेट को भी सरकार पारंपरिक नियामक रेगुलेटरी सोच से बदलकर एक सहयोगी यानी कि सुविधा प्रदाता के रूप में दृष्टिकोण अपनाकर बढ़ावा दे रही है। यही है मेक इन इंडिया योजना।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नव विहान, जिसमें हमने जानकारी दी आपको मेक इन इंडिया के बारे में। FM 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः की 6:50 हुए हैं। समय हो चला है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का।

हमारी इसी सभा में सुबह 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गांधी चर्चा, विषय होगा भारत वापसी। आज सुबह कार्यक्रम हम लेकर आएंगे 7:05 से यादों के झरोखे से, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7:30 से। आपकी पसंद के फिल्मी गीत हम आपको सुनवाएंगे सुबह 10:30 से। आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में आज सुबह 8:30 आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए, और 10:00 से हम अनुप्रसारित करेंगे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से एक विशेष भेंटवार्ता आकाशवाणी रायपुर से सुबह 10:00। हमारे केंद्र से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनते हैं 11:00 से। एक और प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय है संध्या 5:00 का।

शाम 5:05 पर आज अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह से बातचीत आप सुन पाएंगे। कार्यक्रम की भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। इसके बाद शाम 5:35 पर हमारे युवा दोस्तों के कार्यक्रम युवा जगत में बातचीत होगी जल संरक्षण और हमारे दायित्व के बारे में। साथ ही क्रम होगा मेरा शहर का, एक भेंटवार्ता भी प्रसारित की जाएगी जिसमें आप सुन सकेंगे छत्तीसगढ़ पीएससी से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पद पर चयनित आर्यन राठौड़ से भेंटवार्ता। आपसे बातचीत करेंगे श्रुति साहू। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल करें, गीत सुने आप सुनेंगे शाम 6:20 और इसका शेष भाग शाम 7:00 से।

7:20 पर आप हमारे साथ होंगे कार्यक्रम ग्राम सभा में, जिसमें आज गोट बात होगी बदलत पर्यावरण और हमर जीवन संग खेती में प्रभाव। 7:30 बजे से फोन इन कार्यक्रम हम प्रसारित करेंगे, जिसमें पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी आपको दी जाएगी, जिसमें विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना नंदा, आप पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ परदोरी बिल्हा जिला बिलासपुर से हैं, जो कि श्रोताओं से फोन पर बातचीत करेंगी, उनके प्रश्नों के समाधान देंगी और कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरू भैया। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं मेहदी हसन की गाई हुई कुछ गैर फिल्मी गजलें और 8:15 से आनंद लीजिएगा कार्यक्रम रजनी कंधा का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। कुछ क्षणों में संस्कृत में समाचार और 7 बजे हिंदी में समाचार क्रमशः आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्रोकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:05 हुए हैं। प्रस्तुत कार्यक्रम आज सुबह

0: आज सुबह
1: बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वीकार कीजिए, हमारा नमस्कार।

0: मित्रों, लेकर अपनी बातों का पिटारा, गीतों का सहारा और कुछ सूचनाओं संदेशों के साथ हम हाजिर हैं आज सुबह का ये अंक लेकर और शुरुआत करते हैं इस संदेश के साथ।
1: लगता है आज मैं हवा में उड़ रहा हूँ। कुछ ज्यादा हो गई, बहुत ज्यादा। ये क्या टकरा गया यार? अरे चिराग, ये क्या अलाउद्दीन का चिराग है? घिस कर देखता हूँ।
2: क्या हुक्म है मेरे आका?
1: क्या तुम सब कुछ कर सकते हो?
2: हाँ मेरे आका, मैं सब कुछ कर सकता हूँ।
1: तो तुम मुझे इस देश का राजा बना दो।
2: माफ कीजिएगा का, अभी इसके लिए 15 दिनों का वक्त बाकी है।
1: अरे तो मैं क्या आज के लिए बोल रहा हूँ, 15 दिनों बाद बना देना।
2: मगर मैं मुर्दे को जिंदा नहीं कर सकता आका।
1: क्या मतलब, किस मुर्दे को जिंदा करना पड़ेगा यार?
2: आपको मेरे आका, नशे के कारण आपने अपनी जिंदगी खत्म कर ली है आका। मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ आका।
3: नशा चाहे शराब का हो, सिगरेट का हो या नशीली दवाओं का, ये आपका सर्वनाश करता है। नशे से बचिए, समाज को बचाइए।
0: तो श्रोताओं, कई वर्षों से ये संदेश आप सुनते आए हैं और हर बार हम यही कहेंगे, नशा नहीं जीवन चुनिए। और यकीन मानिए, कोई भी फिक्र, कोई भी परेशानी धुएं में नहीं उड़ाई जा सकती, ना ही कोई तकलीफ या मुसीबत को घूंट के साथ गटका जा सकता है। परंतु हाँ, आप इन सभी का सेवन करके नशे की वजह से स्वास्थ्य पर जरूर असर डालने वाले काम करते हैं। हो सकता है इससे लीवर खराब हो जाए, लंग्स खराब हो जाए, फेफड़े काम करना बंद कर दें या फिर किडनी ही अपना जवाब दे जाए, और तो और मानसिक दशा के साथ साथ दुर्घटनाओं के शिकार भी हम हो सकते हैं। श्रोताओं, आज की तारीख 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 7 दिसंबर 1987 से आरंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया था विशेष रूप से नशा निरोधक दिवस मनाने के लिए। इसका मुख्य उद्देश्य था नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी से होने वाले वैश्विक जागरूकता को बढ़ाना। वैसे हमारे देश में श्रोताओं, 17 से 26 जून तक पूरा एक हफ्ता नशा मुक्त भारत अभियान का आयोजन किया जाता है, जिसमें संगत का असर हो या फिर दिखावे के लिए युवाओं में नशीले पदार्थों की ओर बढ़ते रुझान को सेमिनार्स, नुक्कड़ नाटकों और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जागरूकता फैलाने के काम में लाया जाता है। दुष्प्रभावों के बारे में सचेत करने के साथ साथ नशे की लत के शिकार हो चुके लोगों का इलाज भी किया जाता है, उन्हें समझाया जाता है

और जिन लोगों ने अवैध तस्करी की हो दवाओं की, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के संदेश भी जारी किए जाते हैं। श्रोताओं, वैसे तो नशीली दवाओं को खरीदने के नियम सख्त हैं, फिर भी इनका दुरुपयोग करने वाले हमारे यानी कि आम जनता के तन, मन और परिवार के साथ साथ समाज के भी दोषी होते हैं, जिनसे बचना और किसी भी लालच में पड़े बगैर नशे को ना कहना भी सिखाया जाता है। मित्रों, अगर हम अपने आसपास देखें तो कितनी ही कलाएं हैं, विधाएं हैं, शौक हैं जिनमें हम अपना मन रमा लें तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे कलाकार बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं, रचनाकार बन सकते हैं, अपने देश और समाज के उपयोगी भी बन सकते हैं। तो क्यों ना हम विकल्प रहित संकल्प के साथ साथ सकारात्मक सोच लेकर जीवन को चुने, नशे को नहीं। और श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, इसी विषय पर आज शाम 5:05 पर अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह से बातचीत कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। और आइए अब एक प्यारा सा गीत जिंदगी को बुलाने का सुन लेते हैं कार्यक्रम में।

0: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
1: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
0: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
1: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
0: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार।

0: एनपीएस संचय के साथ।
1: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हेल्दी व इंडिया। शुद्ध शहद A2 बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हेल्दी व इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
0: समय पर बुआई
2: और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
3: संदेशों के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम आज सुबह में आप सभी का, और आइए अब सुन लेते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
4: नमस्कार श्रोता साथियों, इस समय आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी स्थानों के साथ साथ आज बिलासपुर में भी मुहर्रम का पर्व हमेशा की तरह आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज शाम 5 बजे इमाम बाड़ों से सवारियां एवं ताजिया के साथ जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर भ्रमण करते हुए देर रात्रि विसर्जन किया जाएगा, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। इस दौरान ताजिए की संख्या के अनुसार कुछ स्थानों में सुगम यातायात के आशय से यातायात की दिशा आवश्यकता अनुसार क्षणिक परिवर्तित की जा सकती है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है ऐसे स्थानों में अपने वाहनों की गति कम से कम रखें, पूरी सावधानी के साथ चलें। शहर की तरह मुहर्रम की झलक शहर से बाहर रतनपुर, कोटा, सीपत, तखतपुर, बिल्हा, बोदरी आदि जगह भी होगी। यहाँ भी सभी से अनुरोध है परंपरा के अनुसार आपसी सौहार्द एवं आम यातायात व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही शहर के साथ साथ संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जैसा कि हम आपको हमेशा ये बताते आ रहे हैं और आप देखते भी आ रहे हैं कि लगातार विकास कार्य बिलासपुर जिले में होते आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों से पूरे शहर की हर चौड़ी सड़क में पूर्व से बने छोटे आकार के रोड डिवाइडरों को तोड़कर नए और बड़े आकार के रोड डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस समय शहर के पुराना बस स्टैंड और सबसे अधिक व्यस्त मार्ग तेलीपारा मार्ग में यह कार्य प्रगति पर है। यहाँ पुराने डिवाइडर को तोड़ने से मलवा बीच सड़क में काफी देर तक रखा रहता है तथा इस कार्य में लगा वाहन JCB भी यही सड़क पर होता है और मजदूरों के साथ साथ निर्माण सामग्री भी सड़क में ही होती है। इसलिए ऐसे समय में पूरी सावधानी बरतें, धीरे चलें। थोड़ी भी चूक या लापरवाही का परिणाम घातक हो सकता है, इस आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
3: धन्यवाद करते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन अपडेट्स के लिए। और श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना हम आपको दे दें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित पुरस्कार के रूप में 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान

किए जाते हैं। नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किए जा सकते हैं। और बस इन सूचनाओं, संदेशों और हमारी बातों के साथ साथ कार्यक्रम आज सुबह का समय हो चला है समाप्त। तो आपके हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे ले रहे हैं विदा। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह, ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है गांधी चर्चा। आज का विषय है भारत वापसी।

गांधी चर्चा के आज के संक में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, 9 जनवरी 1915 को जब गांधी जी मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे तो एक राष्ट्रीय वीर जैसा ही उनका स्वागत हुआ। 3 दिन बाद बंबई के धनी मानी व्यक्ति जहांगीर पेटिट के भव्य भवन में नागरिकों की ओर से उनके सम्मान में एक शानदार स्वागत समारोह किया गया। गांधी जी को सम्मानित करने में भारत सरकार भी पीछे न रही। 1915 के नए साल के खिताबों में उन्हें सरकार की ओर से कैसर ए हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। गोखले जैसे उदार नेता से संबंध होने के कारण वो खतरनाक राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं समझे गए। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने असंवैधानिक आंदोलन जरूर चलाया था जिसमें लोगों ने कानून की अवहेलना की और जेल गए थे, लेकिन उस आंदोलन का कारण जितना राजनीतिक था उतना ही मानवीय भी। सभी भारतीयों और वर्ण द्वेष अथवा राजनीतिक कारणों से जिनका मन दूषित नहीं हो गया था, ऐसे सभी अंग्रेजों की सहानुभूति उस आंदोलन से थी। फिर जब भारत के वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने भी सत्याग्रह आंदोलन का समर्थन कर दिया तब तो उस पर विद्रोह का कलंक अवश्य ही हट गया था। गांधी जी राजनीति में कूदने को उतावले नहीं थे। भारत में उनके राजनीतिक गुरु गोखले थे जिन्होंने शुरू में ही गांधी जी से वचन ले लिया था कि वो पूरे 1 साल तक भारत की सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय जाहिर नहीं करेंगे। वो 1 वर्ष गांधी जी के लिए उम्मीदवारी का समय था या परीक्षण का काल था। गोखले इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि गांधी जी पूना की भारत सेवक समिति यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य बन जाए। गोखले की इच्छानुसार काम करने के लिए गांधी जी बहुत उत्सुक थे, लेकिन समिति के कुछ सदस्यों को आशंका थी कि गांधी जी के और समिति के आदर्शों और कार्यविधि के बीच बहुत बड़ी खाई है। उनको भारत सेवक समिति का सदस्य बनाने पर जब बहस चल रही थी तब गांधी जी पोरबंदर और राजकोट में अपने घर होते हुए पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन गए जहां रविन्द्रनाथ ठाकुर का विश्वविद्यालय था जिसमें सारी दुनिया के विद्यार्थी आते थे। गांधी चर्चा में अब हम सुनते हैं एक भजन, इसके बाद और चर्चा की जाएगी।

ये भजन अभी आपने सुना। पूना से एक तार प्राप्त होने पर कि गोखले जी का देहांत हो गया, गांधी जी को शांति निकेतन से तुरंत लौटना पड़ा था। क्षण भर के लिए तो स्तंभित रह गए। साल भर तक उन्होंने गोखले के देहावसान का शोक मनाया, नंगे पैर रहे और अपने मार्गदर्शक के प्रति सम्मान में पुनः भारत सेवक समिति का सदस्य बनने का प्रयास किया। लेकिन ये देखकर कि सदस्यों में इस विषय पर गहरा मतभेद है, उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली। 1915 में, जो उनकी उम्मीदवारी अथवा परीक्षा का वर्ष था, गांधी जी पूरी तरह राजनीति से दूर रहे। अपने भाषणों और लेखों में उन्होंने अपने को व्यक्ति और समाज के सुधार तक सीमित रखा और भारत के राजनीतिक प्रसंगों पर उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। इस नियंत्रण का एक कारण तो स्वयं अपने ऊपर लगाया गया प्रतिबंध था और दूसरी ये बात कि वो अभी देश की राजनीतिक स्थिति का पूरा अध्ययन कर लेना चाहते थे। जबकि गांधी जी देश की राजनीतिक स्थिति पर अभी अपने विचार कायम नहीं कर पाए थे, उनकी तात्कालिक समस्या दक्षिण अफ्रीकी संघर्ष के उन साथी संबंधियों को बसाने की थी जिन्होंने अपनी हिम्मत उनके साथ जोड़ रखी थी। उन्होंने अहमदाबाद के निकट कोचरब गांव में एक आश्रम की स्थापना करने का निश्चय किया। बाद में वो आश्रम साबरमती नदी के किनारे अधिक स्थायी स्थान पर स्थापित हो गया। एक बार आश्रम की परिभाषा करते हुए गांधी जी ने उसे धार्मिक आचरण वाला सामूहिक जीवन बताया था। धार्मिक शब्द का प्रयोग वहां उसके सर्वाधिक व्यापक और उदार अर्थ में किया गया है। आश्रमवासी किसी विशेष धर्म अथवा उसके विधि विधान से बाध्य नहीं थे, लेकिन उनके लिए व्यक्तिगत आचरण के कुछ सीधे साधे नियमों का पालन अनिवार्य था। आश्रम में किए जाने वाले कुछ संकल्पों, उदाहरण के लिए सत्य, अहिंसा और पुण्यशीलता का सार्वभौमिक महात्म्य था, और कुछ जैसे अस्पृश्यता निवारण, शारीरिक श्रम और निर्भीकता उस समय के भारतीय समाज की विशिष्ट स्थिति में आवश्यक थे, क्योंकि वो समाज

जाति पाति से जर्जर था। हाथ से काम करने को अपमानजनक समझता था और विदेशी शासन से आतंकित था। वे संकल्प निरेह यांत्रिक ढंग से नहीं, बुद्धिपूर्वक रचनात्मक ढंग से पालन करने के लिए बनाए गए थे। इनका उद्देश्य नैतिक और आध्यात्मिक विकास था। ऊपर से भले ही ये घिसे पिटे मालूम होते, लेकिन इनमें निहित सत्य को पुरातन काल से मान्यता प्राप्त है, और जब तक मानव जाति इन्हें अपने दैनिक आचरण का अंग नहीं बना लेती, इनकी आवश्यकता और महत्व बने ही रहेंगे। इन संकल्पों के नामोल्लेख से ही पता चल जाता है कि आश्रमवासियों का जीवन अत्यंत संयत था। वहां का जीवन व्यस्त भी था। वहां कुछ न कुछ शारीरिक श्रम तो सभी को करना पड़ता था। कताई और बुनाई के विभाग थे, गौशाला थी और बड़े खेत थे। जूठे बर्तनों की सफाई और कपड़ों की धुलाई हर आश्रमवासी खुद करता था। नौकर वहां कोई था ही नहीं। आश्रम का वातावरण किसी महंत के मठ या अखाड़े का नहीं, किंतु कसकर काम लेने वाले दयालु कुलपति की छत्र छाया में जीवन बिताने वाले एक बड़े परिवार का सा था। गांधी जी उस परिवार के पिता या बापू थे। कस्तूरबा बा या माँ थी। उस समुदाय में सभी तरह के लोग थे। छोटे छोटे बच्चे थे तो 80-80 वर्ष के बूढ़े भी। यूरोपीय और अमरीकी विश्वविद्यालयों के स्नातक थे तो संस्कृत के प्रकांड पंडित भी। गांधी जी के कट्टर भक्त भी थे और हर बात में भीतर ही भीतर गांधी जी पर संदेह करने वाले शंकालु भी। आश्रम तो मानो एक प्रयोगशाला थी, जहां के निवासियों पर गांधी जी अपनी नैतिक और आध्यात्मिक धारणाओं का परीक्षण किया करते थे। उनके विचारों के लिए उस आश्रम का वही महत्व था जो अधिकतर लोगों के लिए परिवार का होता है। वो विश्व के तुमुल कोलाहल से उन्हें मुक्त रखने वाला आश्रय स्थल था। वो परिवार रक्त या संपत्ति के बंधनों से नहीं, समान उद्देश्यों में निष्ठा से बंधा हुआ था। गांधी जी आश्रम पर शासन करते थे, पूरे देश के समान ही आश्रम में भी उनका यह शासन केवल नैतिक था। जब कोई गलती हो जाती या कोई आश्रमवासी गंभीर अपराध कर बैठता, तो वो सारा दोष अपने सिर ले लेते और उपवास कर उसका प्रायश्चित भी करते थे। आज की ये चर्चा यहीं संपन्न होती है। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

भारत वापसी, इस विषय पर आज की गांधी चर्चा अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर। समय हो चला है फिल्म संगीत के कार्यक्रम यादों के झरोखे सुनने का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत, सुमन कल्याणपुर की मीठी आवाज में। फिल्म का नाम है शमा। कैफी आजमी की लिखी हुई ये रचना है और इस फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था गुलाम मोहम्मद ने।

कैफी आजमी की शब्द रचना गुलाम मोहम्मद का बेहतरीन संगीत शमा फिल्म से आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर की आवाज में कार्यक्रम का पहला गीत। आइए सुनते हैं अगला गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने।

माफ कीजिएगा, ये गीत आप सुनने वाले हैं मुकेश की आवाज में यहूदी फिल्म से, जिसे लिखा है शैलेंद्र ने, शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है।

0: हमराज फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए श्रोताओं सुन लेते हैं कुछ संदेश।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
3: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
2: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
3: हैं मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
2: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
4: नई चेतना आई है, बदलाव की बयार लाई है। हिंसा को ना कहें, सम्मान को हां कहें। महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी, जीरो टॉलरेंस, यही है हमारी तैयारी। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना, नया भारत।
2: समय पर बुआई।
0: आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखे से। आगे बढ़ने से पहले श्रोताओं, हम आपको याद दिला दें, आज शाम 5:05 पर अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर श्री रजनीश सिंह से बातचीत का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम में भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता होंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। इसके बाद 5:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा जगत और शाम 7:20 पर ग्राम सभा। 7:30 से फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा, जिसमें पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देंगी विशेषज्ञ डॉक्टर रंजना नंदा। आप श्रोताओं से बातचीत करेंगी फोन पर और उनके प्रश्नों के उत्तर देंगी। कार्यक्रम का संचालन करेंगे वीरू भैया। और अब बढ़ते हैं अगले गीत की ओर, जिसे हमने लिया है मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है गाइड। शैलेंद्र का लिखा हुआ यह गाना है और गाइड फिल्म के लिए संगीत निर्देशन का काम किया था एस डी बर्मन ने।

गाइड फिल्म के इस गीत के बाद कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रुस्तम सोहराब जी इस फिल्म का गीत, जिसे सुरैया ने गाया है। कमर जलालाबादी ने इस गीत को लिखा था और संगीत तैयार किया है सज्जाद हुसैन ने।

ये मीठी सी आवाज़ आप सुन रहे थे सुरैया की सज्जाद हुसैन के संगीत निर्देशन में कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना था और फिल्म का नाम रुस्तम सुहराब।

श्रोताओं, हम आपको एक सूचना दे दें। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बालक और बालिकाओं को वीरता, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में असाधारण उपलब्धियों के लिए प्रदान किए जाते हैं। इसके लिए नामांकन या अनुशंसा ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल https://awards.gov.in पर 31 जुलाई 2026 तक जमा किए जा सकते हैं।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम यादों के झरोखे से आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 8 बजने को है। कुछ ही पलों में समाचारों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए।

अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी

0: की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास

0: मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
1: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1,000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई एनआरसी की जरूरत, लोकसत्य ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, एनसीईआरटी की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named

0: श्रोताओं नमस्कार। इनसे मिलिए कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, हमारे छत्तीसगढ़ की माटी बहुत ही उपजाऊ है। इस माटी पे हम धन धान्य जैसे कई चीजों को उपजता देखते हैं। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, साथ ही हम इसे लोकगीत का भी एक बहुत मधुर केंद्र मानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से कई ऐसे कलाकारों ने जन्म लिया है जिनकी ख्याति आज छत्तीसगढ़ से बाहर भी देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। और जब हम हमारे छत्तीसगढ़ के लोकगीतों, गीत परंपरा, त्योहारों की बात करते हैं तो एक मधुरता हमारे छत्तीसगढ़ के गीतों में मिलती है। और श्रोताओं, जब हम बात करते हैं गीतों की, संगीत निर्देशन की, तो हमें आदत है ऐसे गीतों को सुनने की जिससे कि मन मुग्ध हो जाए। ऐसे ही मन मुग्ध होने वाली आवाज हमारे छत्तीसगढ़ में है और आज हमारे साथ स्टूडियो में भी है। सुनील सोनी जी का नाम आप सबने सुना है और इनके गीत आप गुनगुनाते भी हैं, हम भी गुनगुनाते हैं। कई त्योहारों, उत्सवों और सिनेमा तक में इनके गीतों की गूंज हमेशा सुनाई देती है। आज सुनील सोनी जी हमारे साथ हैं इस आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो सबसे पहले सुनील जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: आप सभी ला जय जोहार, नमस्कार और स्नेही जन सभी जन ला मोर प्रणाम है
0: जी। तो सुनील जी, आज कार्यक्रम में आप आए हैं तो हम आपसे बातें करेंगे, पर उससे पहले हम आपसे चाहेंगे कि जिस तरह आपके मधुर गीतों को सुनने की हमारी आदत है, उस आदत को हम बरकरार रखें और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके एक मधुर गीत से करें।

0: बहुत ही मधुर गीत और आपकी आवाज, वो आवाज जो हम कई सालों से सुन रहे हैं, अनवरत सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम सबसे पहले कार्यक्रम में आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ।
1: बाल मंदिर से मैं गीत गात हूँ और हिंदी फिल्म के जतका वो समय के जो बहुत प्रसिद्ध गीत रहे हैं, किशोर साहब के, रफी साहब के, लता मंगेशकर जी के, ये सब गीत से मोर शुरुआत हुए है। और अगर विधिवत शास्त्रीय संगीत के शिक्षा ले हूं तो मैं 1984 में मोर प्रथम गुरु पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जी से मैं हारमोनियम वादन और शास्त्रीय संगीत के प्रवेश का प्रथम है भातखंडे महाविद्यालय मीरज से मोर पहला परीक्षा हुई और वहां से मोर संगीत के जो सफर है वो आज 2026 में आप सबके आशीर्वाद से, श्रोताजन, स्नेहीजन और गुरुजन और माता पिता के आशीर्वाद से आज भी अनवरत चलत है, जारी है, जिला आप मन बहुत प्यार देते हो।
0: जी जी, तो सुनील जी, हम जैसा जानते हैं कि बचपन से आपने गाने की ओर अपना रुख किया और आपकी रुचि थी गानों में, तो आप बताइए कि किन मंचों पे आपने शुरुआत की, जहाँ से जो आप मानते हैं कि एक मील का पत्थर रहा हो आपके बचपन में, जहाँ से आपको गायकी का जो एक सुरूर आपको जो लगा कि मुझे इस ओर जाना चाहिए।
1: मैं छत्तीसगढ़ी मंच में सोनहा अभियान से प्रारंभ कर रहे हूँ। दाऊ महासिंह चंद्राकर जी की एक टीम रही से सोनहा अभियान और एक टीम रही से पिनका पार से दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के, और चंदेनी गोंदा में भी कुछ वर्ष मैं गुरुदेव हमारे जो खुमान साहु जी जो जिला मैं गुरुदेव मानता हूँ
0: जी जी,
1: तो उनकर सानिध्य में भी बहुत सारा संगीत के बारीकी जाने ला मिलिस
0: जी जी।
1: और शास्त्रीय संगीत की विधा में मैं पंडित जागेश्वर प्रसाद देवांगन जिनको मैं अपना पहला गुरु मानता हूँ, वो मेरे प्रथम गुरु रहे हैं और वहीं से मेरी प्रारंभिक

0: शिक्षा शास्त्रीय संगीत की प्रारंभ हुई, उसके बाद मैं सुगम संगीत और गीत भजन में और लगातार जो पब्लिक जेला पसंद करते वो सब गीत मतलब लेकर के लगातार बने रहे। हाँ, एल्बम के माध्यम से 1990 में मोर पहली एल्बम आयरिस है और वहां से मुकुंद कौशल जी जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के माने हुए कवि है, उनकर सानिध्य में हमें गुरुदेव ही माने रहे हूँ ला, तो आज तो हमारे बीच नहीं लेकिन बहुत अकन गीत मैं उखर मन के एल्बम में गाए हुए हूँ।
1: जी जी, तो सुनील जी, वो बचपन के कोई गीत है वो आपके जिससे आपको लगता हो कि इन गीतों को आज भी मैं गुनगुना दूं?
0: जय

0: बमलेश्वरी मैया के एक भजन रही से जिला लगातार मंदिर में मंदिर प्रांगण में वहां के शुरुआत रही से
1: जी।
0: और आप सबके बीच मुला बहुत सारा आशीर्वाद मिलिश
1: जी जी। तो सुनील जी, जब हम बात करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ के परंपराओं की, गीतों की, यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के लोक गीतों में आपको अगर हम गाने को कहा जाए तो आप किस ओर सबसे ज्यादा आपका रुझान होगा?
0: मोर पसंदीदा छत्तीसगढ़ी जो बोली भाखा है ओखर सबसे प्रिय मुला कर्मा अंग बहुत भात है
1: जी।
0: और कर्मा में मोर गीत मन अपन छत्तीसगढ़ के माटी एक कार्यक्रम रही से प्रहलाद सिंह कश्यप के परपोड़ी से
1: अच्छा
0: उनकर सानिध्य में मोर एक गीत रही से जिला मैं मंच में गाऊं और मैं अपन पिताजी संग जुड़े रहा और उस समय मैं कोरस भी करूं गाना
1: जी।
0: और वो गीत रही से तय है।

0: गोरी काबर मारे, गोरी काबर मारे, गोरी करे जा माला गे बान काबर मारे।
1: जी जी, बहुत खूबसूरत गीत है और आपकी आवाज ने बोल को और मधुर बना दिया है।
2: बस पिताजी लगातार मेरे संगीत के लिए लगे रहे, हमेशा गुरुजनों के पास सीखो, अपने से बड़ों से संगीत की बारीकियां जानो और लगातार अभ्यास करो। तो ये मेरे गुरु और मेरे माता पिता जो लगातार मेरे ऊपर आशीर्वाद दिए, ये उसी का परिणाम है जो मैं आप सभी को अपने संगीत से जोड़ पा रहा हूँ, अपने स्वरों को ईमानदारी से लगा पा रहा हूँ। कहीं कुछ ऐसे प्रभु इच्छा है जो आज तक आप सबके बीच बना हुआ
1: जी, जी जी सुनील जी। तो सुनील जी, कार्यक्रम में हम एक छोटा सा अंतराल लेंगे और आपसे चाहेंगे कि आपकी पसंद का कोई एक हिंदी गीत हम सुने।

0: ये बहुत ही प्रचलित हुआ
1: प्रचलित
0: गीत
1: हुआ
0: और
1: जी।
0: लोगों को बहुत पसंद आई। इसमें के सभी गाने, ये पीरित वाली रानी पिया दे मया पानी, लगे है मुरबानी तोरे चितन मा, एती तेती मा बे मतलब के वो ते बाराला बजा डारे ना।
1: जी तो सुनील जी, जब गायन की बात होती है, जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ी फिल्मों में आपको कई बार अवसर मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ी फिल्मों से आपको अवसर कब से मिलने शुरू हुए और अभी तक उन उन फिल्मों के बारे में आप बताएं जहां आपकी आवाज हम जिन फिल्मों में सुन सकते हैं।
0: जी, सन 2002 में मेरी पहली फिल्म की रिकॉर्डिंग हुई, झन भूलो माँ बापला,
1: जी
0: सतीश जैन जी की फिल्म, और वहां से प्रारंभ करते हुए आज 2026 में 100 से अधिक फिल्में हैं
1: जी
0: जिनमें मेरा संगीत और गायन है। और एल्बम अगर हम देखें तो 5,000 से ऊपर एल्बमों में मेरे गीत संगीत हैं जिनको दर्शकों का प्यार मिल रहा है, वो लगातार सुन रहे हैं अपने कार में, अपने घर में।
1: जी
0: और जब मेरी छोटी छोटी बहनें जब इन गीतों को सुनती हैं सुबह सुबह
1: जी
0: एक पारिवारिक वातावरण में, जब वो लोग अपने मेरे गीतों को बजाते हैं, तो मुझे हार्दिक खुशी मिलती है,
1: जी
0: एक सुकून मिलता है।
1: जी जी
0: और छत्तीसगढ़ी में दर्शक मल्ला गोठियाना चाहूं कि जैसे हमर बोली भाखा, हमर खान पान, हमर रहन सहन, हमर पहरावा ओढ़ावा, हमर रिश्ते नाता, हर चीज में एक आरूपन है, एक अमृतमय समा है। तो वही अमृतमय हमर गीत संगीत में भी है।
1: जी जी
0: और हमर कर्मा ददरिया, चनैनी, पंडवानी, हमर लोक पुरोधा कलाकार मन के आशीर्वाद से, जेकर माध्यम से मुला सीखे ला मिलिस,
1: जी
0: गुने ला मिलिस सुखर मन के कला ला।
1: जी
0: तो ये सब मोर आदर्श रहे हैं और ये सब गुरुजन के ही आशीर्वाद से मोर संगीत ला मैं निभा पाता हूँ।
1: जी तो ये बहुत अच्छी बात अभी आपने बताई। तो सुनील जी, एक फिल्म थी भूलन द मेज,
0: जी
1: जिसे राष्ट्रीय स्तर पर भी
0: जी
1: काफी सराहा गया,
0: जी
1: 67वें नेशनल फिल्म अवार्ड में भी
0: जी
1: इस फिल्म की चर्चा रही।
0: जी
1: तो इसमें भी आपके गाए कुछ
0: जी
1: गीत हैं।
0: मेरे संगीत भी हैं इसमें,
1: जी
0: जिसमें हम लोगों ने शीर्षक गीत को कैलाश खेरजी से गवाया।
1: जी
0: ये मनोज वर्मा जी के निर्देशन में प्रथम छत्तीसगढ़ी फिल्म है जिसको 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
1: जी
0: और इसमें मीर अली साहब का एक गीत है।
1: अच्छा।

0: इनसे मिले कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे सुनील सोनी जी से, जो छत्तीसगढ़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध गायक हैं, संगीत निर्देशन में भी इनका काफी योगदान है। तो सुनील सोनी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और कार्यक्रम में अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि गायन की ओर से हम थोड़ा सा संगीत निर्देशन की तरफ चलते हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि संगीत निर्देशन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में अभी आपकी कौन कौन से जो है कार्य किए गए हैं।
1: संगीत निर्देशन में सबसे पहला मेरा जो फिल्म था वो माया, 2005 में हम इन गीतों को रिकॉर्ड किए थे
0: जी।
1: कान

0: जी जी बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा गीत। तो इसके बारे में आप, जैसे हम भूलन द मेज फिल्म की बात हो रही है, तो जब इस फिल्म को वहाँ 67वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों के लिए जब वहाँ पे इसका नाम आया फिल्म का, छत्तीसगढ़ के लिए काफी एक गर्व का विषय था। तो इस तरह हम देखें तो आपकी जो फिल्में हैं जिसमें भूलन द मेज है, चल हट कोनो देख ली, इश्क मरीज खरे, तो ऐसी ऐसी कितनी फिल्में हैं जो अभी जिसमें आपकी आवाज हम सुन सकते हैं?
1: 100 से अधिक है
0: जी,
1: और 100 से अधिक फिल्मों में मेरा संगीत है
0: जी,
1: और यहाँ की लगभग 200 से अधिक फिल्मों में मेरा गायन है
0: जी।
1: जी अभी लेटेस्ट में मायारू भौजी, महो दिलवाला तहू दिलवाली, इसके पहले मेरी फिल्म आई थी मोर छैया भुइया पार्ट टू, मोर छैया भुइया पार्ट थ्री, सुकुआ
0: जी,
1: और अभी झनभुलो माँ बाप भाग दो में काम चल रहा है
0: जी,
1: और एक हमारी जो फिल्म है जो छत्तीसगढ़ में टॉप बिजनेस की, जिसको हम कह सकते हैं ले शुरू हो गए माया की कहानी,
0: अच्छा जी जी,
1: तो उसके भी गीत संगीत को बहुत प्रतिसाद मिला
0: जी जी। तो सुनी सुनी जब हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ आप किस तरह देखते हैं कि जो हमारा संगीत का और फिल्म निर्देशन और संगीत निर्देशन जो क्षेत्र है वो कितना अभी जो है अनुकूल है?
1: यहाँ समृद्ध है हमार कला
0: जी,
1: जी हाँ, के माटी में एक ऐसे धुन है जो बिहनिया से लेके रात्रि तक एक उत्सव के माहौल बनते हैं यहाँ के संगीत में, यहाँ के वाद्य मन में
0: जी।
1: और यहाँ के जो सरल स्वभाव है लोगन में, वो तो मैं कितों देवी देवता

0: तय है हमार,
1: जी
0: जो कहिला समूचा विश्व में हमार यहाँ का हमार जो जनता जनार्दन है ये हमार देवी देवता के बराबर है, देवता धामी के बराबर है, जैन मन हमला सुनत है और ये आशीर्वाद सदा बने रहे कि हमार छत्तीसगढ़ के गीत संगीत ला बहुत मया देते हैं
1: जी
0: और आज विश्व में भी हमार छत्तीसगढ़ के महान गायिका तीजन भाई जी के पंडवानी आज समूचा विश्व में बगरे है
1: जी
0: और उखर मन के ख्याति जो जनता सराहना मिले है तो ये बहुत बड़े बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक कला ला नवा पहचान और बहुत सारा प्यार मिले।
1: तो सुनील सोनी जी, जैसे कि हमें ज्ञात है किशोर साहू राज्य अलंकरण सम्मान और फिल्म हांडा के लिए बेस्ट सॉन्ग ऑफ द छत्तीसगढ़ पुरस्कार भी आपको प्रदान किया गया था, इसके बारे में बताएं।
0: सबसे पहले तो संगीतकार के मैं बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ जो ये फिल्म से मुला जोड़ी ओमी स्टाइलो के गीत और संगीत रही से
1: जी।
0: एक गोरीबो गोरीबो गोरीबो गोरीबो मैं मुला तोर से भारी लागे लागे लागे लागे जब ले तो ला देखे रे मैं हो गये कोट नकस जती जती मैं देखे रे तोर दिखे थोथना बस तोर दिखे थोथना बस। ये गीत बहुत ही इंटरटेनिंग है और एमा बहुत सारा मंच में जब एला हमन प्रस्तुत करथन तो एमा जो आनंद मिलते और दर्शक मन के प्यार मिलते ये बहुत ही मतलब यादगार बना देते हैं
1: जी।
0: और रही सवाल के राज्य सम्मान राज्य अलंकरण पुरस्कार किशोर साहू सम्मान जो मुला प्राप्त हुई उपराष्ट्रपति से और यहाँ के हमर मुख्यमंत्री साहब के हाथ से तो ये जो ये मुरली बहुत यादगार पल जेल में भूल नहीं सको और आज मैं सब हमर गुरुजन माता पिता और स्नेहीजन श्रोता जन मन के हृदय से आभारी हूँ कि ये जो आशीर्वाद है ये मोर कला पे बने रहे ताकि मैं अंतिम सांस तक संगीत ला निभात रहूं और पूरा हमर जो पारिवारिक जो हमारे रिश्ता नाता है छत्तीसगढ़ के जनता मन से वो सदा बने रहे उखर मन में नवा नवा गीत संगीत सृजन करके लात रहो।
1: जी जी सुनील जी, जब हम कभी हमारे छत्तीसगढ़ की जो पर्व त्योहारों का समय आता है तो उस समय भी आपके गीतों की धूम होती है। कभी हम सुनते हैं जैसे चलो चलो गिरोदपुरी धाम और आवाज जो है इन गीतों में भी सुनने को मिलता है, तो हम चाहेंगे आपसे कि कुछ इस तरह के गीत हमें।
0: अभी मोर हाल ही में पिछले वर्ष एक फिल्म आ रही से जेमा मोर परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा के एक पंथी जिला बहुत मया दुलार मिलिस।

0: जी, तो सुनील जी हमारे छत्तीसगढ़ की जो माटी है इसको जीवित रखने के लिए गीत संगीत कितना भागीदार होता है?
1: बिना साहित्य के संगीत अधूरा है
0: जी।
1: तो यहाँ के जो साहित्यकार मन है उखर मन के गीत जो हमारे माटी से जुड़े हुए है, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ के महान कवि लक्ष्मण मस्तूरिया जी
0: जी
1: और बाबूजी रामेश्वर वैष्णव जी, बद्री विशाल जी और छत्तीसगढ़ के पुरोधा खुमार लाल साव जी,
0: जी
1: दाऊ महासिंह चंद्राकर जी, दाऊ रामचंद देशमुख जी और ये जो हमारे छत्तीसगढ़ के सब पुरोधा कलाकार मन है, उखर मन के जो अपन अभ्यास रही से, उखर मन के मेहनत रही से, ओ मल्ला हमन नवा पीढ़ी ला बिल्कुल जरूरी है कि हमार नवा पीढ़ी मनोला सुने और अपन जीवन में उखर मन के प्रेरणा मान के अपन संगीत के अभ्यास में उमल्ला लगातार गुने
0: जी,
1: उखर मन के कार्य

0: चलिल अभी पकड़े हैं,
1: जी
0: ताकि हमारे छत्तीसगढ़ के माटी से हमारे नवा पीढ़ी जुड़े।
1: हम्म,
0: जैसे मोर एक गीत है जिला मैं प्रेमचंद्राकर जी के माध्यम से फिल्म में गा रहे हूँ, जिला आप मन बहुत प्यार दे।

0: इन गीतों में एक सी मिठास है जो सीधा कानों को भेदते हुए हृदय तक प्रवेश करती है। तो सुनिए जी, हर किसी के जीवन में कोई एक ऐसा क्षण होता है जो हमेशा के लिए यादगार बन जाता है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो पल, वो क्षण आपके जीवन में कोई ऐसा आया हो।
1: जी, 2004 में एक फिल्म आई थी भकला,
0: जी,
1: जिनके गीतों को संगीत दिया था कल्याण सेन जी ने,
0: जी,
1: और उसके जो निर्देशक, उसके प्रोड्यूसर रायसिंह ढिकोला जी,
0: जी,
1: जिसको बाद में रिलीज किया दिनेश पटेल जी ने, उस फिल्म में मैं अनुराधा पौडवाल जी के साथ मदन शर्मा जी का एक गीत गाया था जिसको बहुत प्यार मिला। और उस फिल्म में लता मंगेशकर जी, जो हमारे महान गायिका हैं, जिनको मैं भगवान की तरह पूजता हूँ, माँ सरस्वती कहता हूँ, और तब से लेकर आज तक मेरा कोई डीपी भी चेंज नहीं हुआ।
0: जी, जी।
1: मेरे व्हाट्सएप का डीपी भी आज वही है, माँ के साथ मेरा जो फोटो है उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए। वो पल मैं भूल नहीं पाऊंगा जब मैं स्वरलता स्टूडियो में हमारे विश्व की महान गायिका लता मंगेशकर जी का मुझे आशीर्वाद मिला, और पूरा दिन भर हमने उनके साथ गुजारा और बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं घर में
0: जी।
1: लेकिन ये पल मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा, ये मेरे लिए धन्य हो गए, बहुत कीमती हैं।
0: जी,
1: आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो मुझे बहुत याद आते हैं, और मैं अपने जीवन में उनको बहुत गुरु मानता हूँ, भगवान की तरह पूजता हूँ।
0: जी, बहुत अच्छी बात है। और छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व आपने किया और लता मंगेशकर जी से आपकी मुलाकात हुई, ये वाकई में एक सौभाग्य की बात है। जी जी, तो सुनील सोनी जी, इनसे मिलिए कार्यक्रम में, आज आप हमारे आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं से अपने अनुभव, अपनी बातें साझा की, और बेशक ही हमारे श्रोता गीतों को सुनते रहे हैं, सुनते रहेंगे, और आपके बारे में जो जानकारी आज उन्हें मालूम हुई है, आपके अनुभव जो उन्हें पता चल रहे हैं, ये बहुत खास रहेंगे। सुनील जी, आप आज आकाशवाणी आए और हमसे रूबरू हुए, हमारे श्रोताओं से रूबरू हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आकाशवाणी से जाते जाते मैं दो पंक्ति हमारे श्रोताजन को कहना चाहूंगा।
0: जी।

0: इनसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार श्री सुनील सोनी से रमाशंकर की बातचीत। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है।
1: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रम इनसे मिलिए अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। आइए अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

सिंघम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे श्रेया घोषाल और अजय गोगावले की आवाजों में। स्वानंद किरकिरे के बोल थे, अजय अतुल का संगीत था। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत

0: के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: अकेली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे गुरुशब्द सिंह और चयनिका गर्ग की आवाजों में। बोल गुरुशब्द सिंह के थे, संगीत भी इन्हीं का था। जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

थप्पड़ फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। राघव चैतन्य की आवाज में शकील आजमी के बोल थे, अनुराग साइकिया का संगीत था। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

दोस्तों विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। दोस्तों नशा केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को खोखला कर देता है। ये एक ऐसी बेड़ी है जो व्यक्ति की उड़ान और उसके सपनों को छीन लेती है। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग मस्ती या टेंशन दूर करने के लिए इसकी शुरुआत करते हैं, लेकिन ये कब एक जानलेवा लत बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज का दिन उन लाखों परिवारों के नाम है जिन्होंने अपने को इस लत के कारण खोया है। लेकिन आज का दिन सिर्फ गम मनाने का नहीं बल्कि संकल्प लेने का भी है, खुद को बचाने का और अपने परिवार को सचेत रखने का संकल्प। जो लोग इस दलदल में फंस चुके हैं उनका हाथ थामकर उन्हें सही रास्ते पर लाने का दिन भी है। दोस्तों नशीली दवाओं की अवैध तस्करी और दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में आपकी जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको अपने आसपास कुछ भी संदिग्ध लगे या अगर आपको लगता है कि कोई अपना मदद के लिए पुकार रहा है तो खामोश न रहें, मदद के लिए आगे आएं। नशा नाश की जड़ है और हमें मिलकर इस जड़ को काटना है। तो चलिए आज के इस दिन हम वादा करते हैं कि हम न सिर्फ नशा मुक्त भारत का सपना देखेंगे बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपनी छोटी छोटी कोशिश भी करेंगे। जिंदगी बहुत हसीन है दोस्तों, इसे किसी नशे की भेंट न चढ़ाएं, अपने हुनर को पहचानें, अपने सपनों को जिएं और नशे को कहें ना। आज 26 जून है और इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 7 दिसंबर 1987 को स्थापित किया गया था। आज के दिन नशा मुक्ति के लिए और इसका उद्देश्य है नशा मुक्त समाज का निर्माण करना, इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना सुनिए शिल्पा राव की आवाज में। स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, अमित त्रिवेदी का संगीत है।

0: इंग्लिश विंग्लिश फिल्म का गाना था, शिल्पा राव की आवाज, स्वानंद किरकिरे के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत था। जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। यह है प्रोग्राम का आखिरी गाना।

एनिमल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। गरिमा के बोल थे, श्रेयस पुराणिक का संगीत था। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम,

0: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाज़ें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज़ है, कब्बन मिर्ज़ा साहब। बुलाया, उनको सुना, आवाज़ तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार, खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जिंदगी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।
1: आया है राजा, लोगो रे लोगो, राजा के

0: रहता मैं झटक रहता मैं आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो
0: आया है राजा
1: लोगो रे लोगो
0: राजा के संग संग
1: चुम लो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो बन

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 बरस की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव गांव शहर शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैया राजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैया राजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

बहरहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलंथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण यह है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके

0: कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलैयाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है,

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैया राजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैया राजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

लिया राजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

आ जाए कि जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

0: यहां आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजाविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिनमें आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्मभूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैयाराजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।
1: देर से आते हैं, तेवर दिखाते हैं, करते

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिनी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये 3 बच्चे फिल्म कंपोजर

और गायक हैं। आपको बता दें कि इलैयाराजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलैयाराजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलैयाराजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलैयाराजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलैयाराजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहां इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

0: अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म में संगीत दिया।
1: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से और उसके बाद 10 बजे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से एक विशेष भेंटवार्ता हम आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित करेंगे। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से।

0: 55 मिनट होने को हैं। प्रादेशिक समाचार सुनिए।
1: यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव।

और अब पेश है आपके आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के नगरीय निकायों के लिए 200 से अधिक एल्डरमैन यानी मनोनीत पार्षदों की सूची जारी की गई है। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठक में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं, सड़क पानी सफाई जैसी नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं। एल्डरमैन जनता और निकाय के बीच सहयोगी की भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLDT लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD बसों वाली उपकरणों लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लकी ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए

जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णु देसाय और आवास मंत्री ओपी चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। आयोग ने कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जांच जरूर कर लें। आयोग ने बताया कि निजी विश्वविद्यालय अपने कैंपस के बाहर अन्य संस्थानों को संबद्धता नहीं दे सकते। पीएचडी में प्रवेश लेने वाले छात्र यूजीसी के नियमों और शोध निर्देशक की योग्यता की भी पुष्टि करें। आयोग ने छात्रों से अपील की है कि भ्रामक विज्ञापनों से बचें और प्रवेश से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें। राज्य शासन ने डोंगरगांव नगर पंचायत का नगर पालिका के रूप में उन्नयन कर दिया है। नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार डोंगरगांव नगर पंचायत की सीमाएं ही डोंगरगांव नगर पालिका की सीमाएं होंगी। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कहा है कि नगर पालिका बनने के बाद डोंगरगांव में सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छता जैसी विभिन्न आधारभूत सुविधाओं के लिए विकास को गति मिलेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण आकाशवाणी द्वारा अब से कुछ देर बाद किया जाएगा। यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से 10:25 तक प्रसारित होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा तैयार इस कार्यक्रम का प्रसारण छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की बड़ी कुर्बानी को याद करते हुए मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन आज रात किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 10 बजे हैं, अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश की आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति है।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, छत्तीसगढ़ का स्कूल शिक्षा विभाग स्कूलों की दशा के साथ ही शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अनेक पहल कर रहा है। राज्य के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने हाल ही में संभागीय संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक लेकर अनेक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। इनमें से एक दिशा निर्देश यह है कि अगले साल से स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू होगा और विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तक गणवेश भी 1 अप्रैल को ही दे दिए जाएंगे। इसके साथ ही स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी नई व्यवस्था लागू की जा रही है। श्रोताओं, इन सब विषयों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव। मंत्री जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं।
1: धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मंत्री जी, जो नया शिक्षा सत्र है वो 16 जून से शुरू हो गया है छत्तीसगढ़ में, तो अधिक से अधिक बच्चे शिक्षा से जुड़ें, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे, इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, आपके विभाग की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
1: अभी हम लोगों ने कहा है कि जो बच्चा 16 जून से हम जो प्रारंभ किए हैं और जो कंटिन्यू अब्सेंट हैं, जो बच्चे अनुपस्थित हैं, प्रधान पाठक या संस्था प्रमुख उसमें विशेष फोकस करें। 30 जून तक देखें कि कौन बच्चा सबसे ज्यादा अब्सेंट है, कौन बच्चा जो बिल्कुल नहीं आया हो, उन बच्चे को मार्क करें और हर हाल में हमको एक 30 जुलाई के पहले उस सारे बच्चों का फिर से एडमिशन कराना है। उसके लिए कल हम बैठक किए और बैठक में सारे जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि उन स्कूलों का आप चयन करें, चिन्हित करें जहाँ ड्रॉप आउट बच्चे कितने हैं, कौन बच्चे जो लगातार अनुपस्थित हैं उनको चिन्हित करें और जाके वहाँ बात करें, उनके पालकों से बात करें, बच्चों से बात करें और वापस उनको स्कूल की ओर लाए, ऐसा हम तैयारी कर रहे हैं।
0: मंत्री जी, आपने जिला शिक्षा अधिकारियों की एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक ली है और उसमें काफी अहम दिशा निर्देश भी आपने उनको दिए हैं कि अगला शिक्षा सत्र जो है 2027-28 वाला, वो 1 अप्रैल से शुरू हो, और काफी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं।
1: देखिए, अभी तक हम लोग देखते थे कि सारे जो निजी विद्यालय हैं वो 1 अप्रैल से नया सेशन चालू करते हैं और हम लोग का भी पिछले बार का जो एग्जाम है उसी पैटर्न में हुआ था, उसी तैयारी के आधार पे हम लोगों ने फरवरी में एग्जाम लिया था। और चूंकि एक 10वीं बोर्ड का एक पेपर लीक होने के कारण फिर से री एग्जाम लेना पड़ा, जिसके कारण हम थोड़ा पीछे हुए
0: जी।
1: हमारा टारगेट ये है 15 जून से स्कूल खुले। क्या होता है, 15 जून को जब स्कूल खुलता है
0: जी,
1: तो प्रवेश आते आते वो जुलाई चल देता है
0: जी।
1: और वो वास्तव में जो पढ़ाई रनअप होने की स्थिति में 15 जुलाई तक आ जाता है, तो 1-2 महीना हम ऐसे पीछे हो गए जाते हैं। 1 अप्रैल से स्कूल खुलेगा तो बच्चा मानसिक रूप से तैयार होगा, जितने उसके एडमिशन संबंधित और जितनी जो चीज है, जैसे हम यूनिफॉर्म देते हैं, साइकिल देते हैं, पुस्तक देते हैं, तो ये सब तैयारी हम 1 अप्रैल से करेंगे
0: जी।
1: तो वो अप्रैल में एडमिशन संसाधन और उपलब्धता सब होने के बाद
0: जी,
1: वो पढ़ाई का एक सेटअप प्रारंभ हो जाएगा
0: जी।
1: 16 जून को जब बच्चा आएगा तो जो पुराना सेटअप है उसमें सीधा पहले दिन से वो दौड़ना चालू होगा
0: जी।
1: तो जो 1 अप्रैल का हमको 15 दिन पूरी पढ़ाई के लिए मिलेगा और 16 जून से जो हम 15 जुलाई तक जो एडमिशन और जो काम में जो व्यस्त रहते हैं
0: जी,
1: वो पूरा 1 महीना पूरी तरह पढ़ाई में रहेगा
0: जी।
1: तो इस साल हम चूंकि अभी सेशन प्रारंभ हुआ है
0: जी,
1: हमने बैठक में कहा है कि कोर्स, सारे कोर्स हमको अनिवार्य रूप से सबको दिसंबर तक कंप्लीट करने हैं, जनवरी में रिवीजन करना है, फरवरी में एग्जाम करना है और फरवरी में एग्जाम होगा तो हम हर हाल में 15 मार्च तक रिजल्ट घोषित कर देंगे
0: जी।
1: अभी से सारे जिलों को कहा गया है कि आप अनिवार्य परीक्षा समिति बनाए ताकि परीक्षा समिति बनने से क्वेश्चन पेपर संधारण, उसके छपाई और उसके संचालन में दिक्कत ना हो
0: जी।
1: दूसरा, जब परीक्षा समिति रहती है तो क्वेश्चन पेपर ही बनता है, मार्कशीट भी इजी बन जाता है, नहीं तो ज्यादातर देखा जाता है कि वो अंकों को ही उपलब्ध नहीं करा पाते, जैसे मार्कशीट मिलने में देरी होती है। तो ये सारी तैयारी हम अभी से करेंगे
0: जी।
1: तो हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करा पाएंगे, जनवरी में उनको रिवीजन करा पाएंगे। ज्यादातर क्या होता है कि हम थोड़ा लेट चलते हैं और ऐसा होता है कि फरवरी तक हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसके कारण हमको अतिरिक्त क्लासेस लेनी पड़ती है
0: जी।
1: जब अतिरिक्त क्लासेस लेने की स्थिति में शिक्षक भी पूरी मन से तैयार नहीं हो पाता और बच्चे को भी बोझिल हो जाता है
0: जी।
1: तो हम लोगों ने तय किया है कि हर हाल में दिसंबर तक करना, जनवरी में रिजल्ट करना, जिससे एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो और जब जनवरी में हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, फरवरी में एग्जाम करेंगे, मार्च में रिजल्ट घोषित हो जाएगा तो 1 अप्रैल से आसानी से हम इसको प्रारंभ कर लेंगे।
0: मंत्री जी, हमें यह भी पता चला है कि आपने बैठक में जो है वो शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए और शिक्षा का एक न्यूनतम स्तर निर्धारित करने के लिए एक मानक भी कुछ बताए हैं कि प्राथमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, माध्यमिक स्तर के बच्चों को यहाँ तक का आना चाहिए, इसके बारे में बताएं कि वो मानक क्या हैं।
1: देखिए, वे हमारा दुर्भाग्य है, जब 2009 में सरकार थी उन्होंने शिक्षा अधिकार कानून लाया और शिक्षा अधिकार कानून

0: तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कई ऐसे चीजों को जोड़ दिया जो बच्चों की शिक्षा के स्टैंडर्ड को बढ़ाने के बजाय
1: जी
0: उसमें बच्चों की शिक्षा स्तर गिरते गया।
1: जी
0: जैसे एग्जाम नहीं लेना, बिना पढ़े पास करना, उससे जो यहाँ के जो बच्चे हैं उनका टैलेंट लगभग खत्म होने जा रहा था।
1: जी
0: तो वो हम लोगों ने ऐसा किया कि आज ये स्थिति है, शिक्षा का अधिकार लागू होने के बाद मिडिल स्कूल में जाएंगे, बच्चे को बोलते हैं कि पढ़ो तो एक
1: पढ़ नहीं
0: मतलब पढ़
1: पाता
0: नहीं पाता।
1: जी
0: हाई स्कूल में पहुंचने वाले बच्चे को आप बोलोगे, नौवीं बच्चे को इंग्लिश में कुछ लिखे तो लिख नहीं पाता।
1: जी
0: तो हमने बैठक में कहा है, पहले भी इसके पहले पिछले सत्र हम बैठक में बोले थे कि हमको हर हाल में जो मिडिल स्कूल तक के पढ़ने वाले बच्चे को उनको 20 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए,
1: जी
0: 12 खाड़ी आना चाहिए,
1: जी
0: उल्टा गिनती आना चाहिए और धारा प्रवाह हिंदी को पढ़ना आना चाहिए 5वीं तक के बच्चे को, और मिडिल स्कूल के बच्चों को, 8वीं तक के बच्चों को 25 तक का पहाड़ा कंठस्थ होना चाहिए,
1: जी
0: और धारा प्रवाह इंग्लिश के सेंटेंस को उसको पढ़ना चाहिए।
1: जी
0: और उसके लिए हमने टास्क दिया है, हिंदी पढ़ने वाले बच्चे को हर हाल में सितंबर तक धारा प्रवाह हिंदी पढ़ने को आना चाहिए, और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चों को फरवरी 2027 तक उन बच्चों को इंग्लिश धारा प्रवाह पढ़ने के लिए आना चाहिए। और हमने कहा है कि प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल को विशेष रूप से फोकस करें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि वो बेस है।
1: जी
0: अभी शिक्षा का अधिकार कानून आने से हमारा बेस लगभग उजड़ गया था,
1: जी
0: वापस हमको उसको मजबूत करना है। और जब बच्चा बेस मजबूत रहेगा तो आगे शिक्षा उसको बहुत आसानी होगी, ऐसा हमने एक टास्क दिया हुआ है।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि ये देखने में आता है कि ठीक है, सुविधाएं हम देते हैं, हम एक ढांचा खड़ा कर देते हैं, लेकिन शिक्षक ही गैर हाजिर होते हैं स्कूल से। तो अब आपने ये भी एक व्यवस्था लागू करने की कोशिश आप कर रहे हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, ऑनलाइन होगी, वीएस के ऐप के माध्यम से होगी, और यदि अवकाश भी लेना होगा शिक्षकों को तो ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके बारे में बताएं कि किस तरह से कसावट लाई जा रही है।
0: देखिए, हमने तो चूंकि छत्तीसगढ़ में माननीय विष्णु देसाई जी का सुशासन है, यहाँ पे चतुर कर्मचारी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी से लेके मुख्य सचिव तक भी अपना अटेंडेंस भरते हैं,
1: जी
0: ऑनलाइन वो अपना अटेंडेंस करते हैं, बायोमेट्रिक से करते हैं, तो हमारा शिक्षक तो पढ़ा लिखा वर्ग है, शिक्षा का उजियारा समाज को दे रहा है,
1: जी
0: तो उनको भी जब शासन सुशासन चला रही है तो उसमें उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहनी चाहिए।
1: जी
0: तो हमने कहा है कि ऑफिशियल जितने क्लर्कल स्टाफ हैं,
1: जी
0: जो बीओ ऑफिस, डीओ ऑफिस, जेडी ऑफिस, वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे,
1: जी
0: और जितने फील्ड के जो हमारे शिक्षक हैं
1: जी
0: वो वीएसके ऐप के माध्यम से अपना अटेंडेंस देंगे।
1: जी
0: उससे वीएसके ऐप, हम जानते हैं कि जो सगर जहाँ वो पढ़ाते हैं
1: जी
0: उस परिसर के 50 मीटर के अवधि पे ही वो काम करेगा।
1: जी
0: तो कब करेगा, मान लो वहाँ नेटवर्क भी नहीं है लेकिन आप उसमें अपलोड करोगे,
1: जी
0: हम करेंगे,
1: जी
0: तो वो समय भी आपको दिखाएगा कि आपने कितने बजे किया।
1: अच्छा
0: तो उसमें जो कई लोग टाइम बे टाइम जाते हैं, नहीं जाते हैं, अपसेंट मार देते हैं,
1: जी
0: उसमें कसावट आएगा।
1: जी
0: दूसरी बात ये है कि उपस्थिति 100% रहेगी।
1: बिल्कुल
0: ज्यादातर जगह शिकायत ये आती है कि शिक्षक किसी गांव का है, वो वहाँ पढ़ाने नहीं जाता,
1: जी
0: वो कहीं दूसरी जगह अटैच रहता है।
1: जी
0: अभी हमको ध्यान में आता है कि एवरेज हर जिलों में
1: जी
0: जितने पद सेटअप स्वीकृत हैं
1: जी
0: उससे डबल लोग वहाँ कार्यरत हैं।
1: अच्छा
0: ये कौन लोग हैं? ये वही शिक्षक हैं जो स्कूल नहीं जाना चाहते
1: जी
0: और ऑफिसों में अटैच हो जाते हैं, और बच्चों को जो मिलने वाली सुविधाएं हैं, जो शिक्षकों का जो लाभ मिलना चाहिए उससे वो वंचित हो जाते
1: वंचित हो
0: हैं।
1: जाते
0: तो
1: हैं
0: हमने अनिवार्य लागू किया है, जो जिस स्कूल में है वो उसी स्कूल में पढ़ाएगा।
1: जी
0: और अटैच के लिए हमने कल बहुत कड़ाई कहा है, चूंकि अब तो वीएसके ऐप में वो दिखता है कौन कहाँ से कर रहे हैं,
1: जी
0: बायोमेट्रिक्स दिखता है,
1: जी
0: तो कल सारे डीओस को अनिवार्य कहा है, और पहला और कल आखिरी वार्निंग दी गई है। इसके बाद अगर ये शिकायत आई तो
1: जी
0: संबंधित डीओस के ऊपर हम कार्रवाई करेंगे।
1: एक बात और है मंत्री जी, कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल ही में बच्चों में नैतिक मूल्य, राष्ट्रीय चेतना और भारतीय संस्कृति की समझ को विकसित करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, जैसे

0: राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और अलग अलग तरह के जो मंत्रों का स्कूलों में वाचन किया जाएगा, इसके बारे में एक शेड्यूल भी बनाया गया है, इसके बारे में भी हमें बताएं।
1: देखिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, पहले हम लोग राष्ट्रगान गाते थे,
0: जी
1: फिर राष्ट्रगीत होता था। राष्ट्रगीत में जानबूझ के पिछली गवर्नमेंट तुष्टिकरण के लिए देश के सामने वंदे मातरम पूरा लाया नहीं।
0: जी
1: अभी माननीय हमारे देश के सचिव प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जब आह्वान किया कि वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, तो सारे स्कूलों में उसे गायन होना चाहिए। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धा विष्णु देसाई जी के मार्गदर्शन में सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और इनके साथ हम तीन मंत्र दिए हैं। चूंकि सब स्कूलों हम जाते हैं, देखते हैं कि कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ होने के पहले दीप जलाते हैं, तो दीप मंत्र हम कर रहे हैं, सरस्वती मंत्र करते हैं, गुरु मंत्र करते हैं। ये तो बिना बोले भी स्कूलों में किया जाता है,
0: जी
1: लेकिन उसको हमने कंपलसरी शब्द लिखा है।
0: जी
1: उसमें दीप ज्योति परम ज्योति, बच्चों के अंदर आज जो तेजोमय होना चाहिए,
0: बिल्कुल
1: कहीं ना कहीं उसी कमी दिखती है।
0: जी
1: मैं ऐसा मानता हूँ कि ये मंत्र के प्रभाव से उनका तेजोमय बढ़ेगा,
0: जी
1: सरस्वती वंदना करने से एक अच्छा भाव आएगा, क्योंकि
0: जी
1: हम शिक्षक मंदिर में जा रहे हैं और शिक्षा की देवी साक्षात सरस्वती है,
0: जी
1: तो वो बच्चों में पढ़ाई के प्रति, पुस्तक के प्रति एक भाव अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल
1: गुरु मंत्र बोल रहे हैं, गुरु मंत्र में जो गुरु पढ़ाने जा रहे हैं, पहले एक समय था, आप सब ध्यान देंगे कि कोई गुरु जी बस से उतर के मेन रोड से जैसे वो गांव की ओर आता था,
0: जी
1: तो राहगीर जो जितने लोग राहगीर चलने वाले थे, रहते थे, चाहे खेतिहर, मजदूर, किसान, जिसके बच्चे नहीं पढ़ते थे,
0: जी
1: वो भी गुरु जी देख के उसको नमन करता था, प्रणाम करता था, नमस्कार
0: बिल्कुल
1: करता था,
0: जी
1: एक भाव था।
0: जी
1: आज वो भाव में कहीं कहीं कमी आ रही है।
0: जी
1: ये गुरु मंत्र प्रतिदिन बच्चे हाथ जोड़ के जब बोलेंगे, तो स्वाभाविक रूप से गुरु शिष्य का जो संबंध
0: जी
1: फिर से प्रगाढ़ होगा, फिर से एक भाव आएगा। आज देखिए, जब बच्चा हाथ जोड़ के गुरु मंत्र बोलेगा, तो स्वाभाविक है कि बच्चे के मन में तो अच्छा आएगा ही,
0: जी
1: उसको देख के संबंधित शिक्षकों के मन में भी एक बड़ा एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आज देखते हैं कई जगह, आप देखें कोई अश्लील कोई व्यवहार करते, एक न्यूज चैनल ने चलाया, कई जैसे क्या आता था, शिक्षक शराब पी के पहुंच जाते हैं, कई जगह शिक्षकों को हरकत तो अमानवीय रहता है।
0: जी
1: तो ये गुरु मंत्र बोलने से, सरस्वती मंत्र बोलने से, दीप मंत्र बोलने से एक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो ये हमने ऐसा किया है कि इसको प्रार्थना के साथ करना।
0: जी
1: उसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ में, देश में एक से एक महापुरुष हुए हैं जो उन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है।
0: बिल्कुल
1: हमने पूरे 12 महीने के 24 महापुरुषों का
0: जी
1: हमने चिन्हित किया है। संत रविदास जी हैं, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं, मन चंगा कठौती गंगा
0: जी
1: की बात उन्होंने कही।
0: जी
1: संत रविदास जी जीवनी हम पढ़ाएंगे, गुरु घासीदास जी की जयंती है, गहिरा गुरु हैं हमारे छत्तीसगढ़ के हैं, खूबचंद बघेल जी हैं, दाऊ कल्याण सिंह हैं जो जिन्होंने अपना सब कुछ दान दिया,
0: जी
1: भक्त माता राजिम हैं जिसको अनुयायी हमारे साहू समाज के लोग मानते हैं।
0: जी
1: ऐसे महापुरुष जो अवतरण हुए हैं, उनकी जयंती हर महीने कोई ना कोई रहती है, तो उनका हर महीने 2 महापुरुषों का बच्चे वाचन करेंगे।
0: जी
1: महापुरुषों का जीवन, जैसे बच्चा बचपन से किसी इंस्पेक्टर को देखता है
0: जी
1: तो उसके मन में आता है कि मैं आगे वाले समय में पुलिस बनूंगा, शिक्षक को देख के वो पुलिस बना, तो वैसे ही हमारे देश के अलग अलग महापुरुष हैं,
0: जी
1: उनके जीवन को जब देखेंगे तो जीवन को देख के वो कुछ प्रेरणा लेंगे।
0: जी
1: ऐसा हमने कहा है कि पढ़ाई के साथ साथ महापुरुषों का जीवन भी वाचन होगा। सांध्य बेला में जब जब छुट्टी का समय होता है, तो हमें सारे बच्चों का है राजगीत, चूंकि छत्तीसगढ़ महतारी है, धरती माता है, उनके गीत राजगीत हो, साथ ही साथ गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र का भी कुछ लोग जो विरोध करें, मैं करना चाहता हूं कि अमेरिका के हम्बर्ड जो यूनिवर्सिटी ने कहा है कि प्रति सेकंड 1,10,000 ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती है गायत्री मंत्र, और उन्होंने उसको कहा है सांध्य बेला में इसको अगर करा जाए, जो हम हिंदू संस्कृति में बोलते हैं नाद
0: जी
1: ब्रह्म जो बोलते हैं,
0: जी
1: जो संध्याकालीन जो समय होता है

0: जब पूरी तरह धूप नहीं रहती, पूरी तरह अंधेरा नहीं रहता है,
1: जी
0: सांध्य अवसर में जो अगर गायत्री मंत्र का वाचन करे तो उसका बहुत सकारात्मक प्रभाव यूनिवर्स में पड़ेगा।
1: जी
0: उस नाते जब मैं बोल रहा हूँ हम्बर्ड यूनिवर्सिटी और वहाँ के वैज्ञानिकों ने जब शोध किया है
1: जी,
0: तो जब अमेरिका इसको एक्सेप्ट कर सकता है तो हमारे देश के जो गायत्री मंत्र का भाव तो हमारे जैसी मुनियों की है, किसी धर्म का नहीं है, सनातन ये मंत्र है, वैदिक मंत्र है। और ऐसा बोलना उचित नहीं है कि सिर्फ हिंदू धर्म का है, सभी का है, कोई अच्छाई है उसको सबको ग्रह करनी चाहिए। तो उसमें एक बहुत सकारात्मक प्रभाव बच्चों के मन मस्तिष्क पड़ेगा। फिर पूरे विश्व में आज भारत ही है जो पूरे विश्व के सुख और शांति कल्पना करती है, इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का हम उसमें वो मंत्र बोला है। तो बोले हेतु ये है, बचपन से बाल अवस्था से
1: जी,
0: अगर हम बच्चों को मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से हम उनको तैयार करेंगे, जब वो युवा बनेगा तो बहुत मजबूत रहेगा। हमारा प्लान ये है, पढ़ाई में फोकस करना है, पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी रहे, शिक्षा भी रहे, और जिस धरती में वो जन्म लिए उस धरती के प्रति प्रेम भी रहे
1: जी।
0: तो ये सारे चीजों को समायोजन हमने हमारे प्रदेश के मुख्य माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशन में हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पढ़ा अच्छा बच्चा अच्छा इंग्लिश बोले, अच्छा मैथ्स भी आए, उल्टा गिनती आए, सीधा गिनती आए, और साथ साथ कुछ मंत्रों का भी उनको ज्ञान रहे। आज मैं देखा हूँ एक इंटरव्यू में रामायण के किसी पार्ट को अगर दिल्ली की यूनिवर्सिटी के बच्चों पूछते हैं तो उनको मालूम नहीं रहता है कुछ मंत्रों के बारे में, उनको मालूम नहीं रहता। तो मेरा ऐसा कहने है कि अगर हम पॉजिटिव चीजें लें तो उसका एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और बीच में हम भोजन मंत्र भी हमने जोड़ा है उससे मध्याह्न में
1: जी।
0: उसका हेतु है, हम सब देखते हैं आज बच्चों में अनाज के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं रहता। पहले हम जब भोजन करते थे तो प्रणाम करके भोजन करते थे, जिस थाली में हम भोजन करते थे उसमें हाथ नहीं धोते थे कि इसको हमने प्रणाम किया। आज बच्चे हम आप देखते हैं शादी पार्टी में जाते हैं, लोग भर थाली खाना लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं। जब वो मध्याह्न भोजन में हाथ जोड़ के जब वो सनावतु मंत्र बोलेगा तो उस बच्चों के मन में भोजन का भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, भोजन के प्रति, अन्न के प्रति उसमें एक अच्छा ये रहेगा, उसका दुरुपयोग नहीं होगा
1: जी।
0: ये भाव हमारे अंदर है शिक्षक साथ, संस्कार भी हो, संस्कार के लिए हम लोग कुछ वैदिक मंत्रों को, हम किसी धर्म पंथ के हिसाब से नहीं, जो अनिवार्य आवश्यक है उसके हिसाब से हम उसको कर रहे हैं।
2: मंत्री जी एक बात और है कि आपने ये कोशिश की है कि स्कूलों में जो है शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो, लेकिन हम जैसा जानते हैं कि कई बार ये भी देखने में आता है कि जो स्कूल भवन है उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती, और मानसून का आगमन हो गया है, मीडिया में भी खबरें आती हैं कि स्कूल जो है उसमें पानी टपक रहा है। तो जो स्कूलों की स्थिति है, जो स्कूल भवनों की जो स्थिति है, उनको सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?
0: अभी हमने पहली बार स्कूल खुलने के 15 दिन पहले सारे जिलों को हमने 20 करोड़ की राशि मरम्मत के लिए जारी किया है। उसको इस संबंध में डीओ को निर्देशित किया गया है कि जो पैसा मरम्मत के लायक है उसका उपयोग आप मरम्मत में करें
1: जी।
0: उसका उपयोग हो और सकारात्मक उपयोग हो। उसके अलावा अभी हम लोग इस बार भी 1300 स्कूल नए बिल्डिंग बनाने वाले हैं। अभी एक लिस्ट हम मंगाए हैं, संबंधित विधायक हैं, जनप्रतिनिधि है, उनके अनुशंसा पे आने वाले समय में जहाँ जहाँ अति आवश्यक है उन सारे भवनों को, अभी पिछले साल भी हमने लगभग 300 भवन दिया, इस साल भी हम नया भवन दे रहे हैं, और आने वाले समय में कितने भी स्कूल ऐसे हैं जहाँ टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट को चिन्हित करके कहाँ कौन सी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को ध्यान में रख के आने वाले समय में धीरे धीरे करके जितनी भी समस्याएं हैं हम उसको दूर करने का प्रयास करेंगे।
2: एक सवाल और कि बच्चों को भी काफी सुविधाएं शासन की ओर से दी जा रही हैं, जैसे निशुल्क गणवेश है, पाठ्यपुस्तकें हैं, ये समय पर उपलब्ध हो, गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए क्या कोशिश है?
0: देखिए अभी मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, स्कूल 16 जून को खुला है, पूरे प्रदेश में यूनिफॉर्म पहुंच गया है।
1: अच्छा।
0: माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के निर्देश पे इस बार हम लोगों

0: स्कूल खुलते ही बच्चों को यूनिफॉर्म हमने अनिवार्य दे दिया। कई जगह दोनों सेट दे दिए, कई जगह एक सेट दिए हैं, लेकिन पहले दिन उन बच्चों को यूनिफॉर्म मिला है। बुक भी सरकारी स्कूल का बुक हर हाल में 30 जुलाई तक पूरे शासकीय स्कूलों का बुक हम पहले दे देंगे। और साइकिल की बात है तो साइकिल सभी बच्चों को नहीं देते, कुछ अनुसूचित जाति के बच्चों को हम देते हैं, तो वो भी साइकिल वितरण काम भी हम जुलाई में कर लेंगे। इनके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म साइकिल तो हम दे ही रहे हैं।
1: जी
0: माननीय मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में पहली बार हम पूरे प्रदेश के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को स्मार्ट स्कूल में कन्वर्ट कर रहे
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल
0: आईसीटी क्लास लैब हम बना रहे हैं,
1: जी
0: 22,000 कंप्यूटर लैब हम इस साल दे रहे हैं,
1: जी
0: और इस साल दिसंबर तक सारे स्कूलों को कम्प्लीट हो जाएगा।
1: जी
0: उसका लाभ ये होगा जो आपने वीएसके सिर्फ हम ऑनलाइन अटेंडेंट के लिए नहीं है,
1: जी
0: आने वाले समय में वीएसके अभी भी डाइट से जुड़ा है, सभी स्कूलों से ये जुड़ जाएगा, भी नेटवर्किंग जुड़ जाएगा, तो आने
1: जी
0: वाले समय में सब जगह स्मार्ट क्लास एलईडी लगा हुआ है।
1: जी
0: किसी स्कूल में मान लो सब्जेक्ट वाइज कोई टीचर नहीं पहुंच पाया,
1: जी
0: बच्चे खाली बैठे हैं, तो उनका जो जैसे केमिस्ट्री क्लास है तो केमिस्ट्री क्लास को ऑनलाइन के रूप में वो बच्चों को जो स्मार्ट क्लासेस हैं उसमें उस पढ़ाई उसमें चलेगी। ये सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसी के आने या नहीं आने से बच्चों के पढ़ाई में कोई भी प्रकार का प्रभाव दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, पढ़ाई निर्बाध रूप से चलेगी। इसकी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी चल रहा है, इस दिसंबर तक कंप्लीट करने का हमारा प्रयास है। आने वाले समय में बहुत बेहतर शिक्षा व्यवस्था हम करेंगे।
1: एक अंतिम प्रश्न, जो शिक्षा का अधिकार है उसमें यह भी है कि जो गरीब पृष्ठभूमि के बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में भी, मतलब उनको भी पढ़ने का अवसर मिले। छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में वो होता है, अभी पहला चरण हो गया है, दूसरा चरण होने वाला है। ये पारदर्शी तरीके से हो, प्रभावी ढंग से ये सब चीज़ें हों, तो वो गरीब बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
0: अब इसमें तो सीधा लॉटरी सिस्टम है, जो एप्लीकेंट रहता है वैलिड एप्लीकेंट रहता है वो जांच होता है कौन सही है गलत है, अगर उनका ये सही आता है फॉर्म सही भरा रहता है तो उनकी लॉटरी लगती है, और जिसका भाग्य भाग्य के ऊपर है लॉटरी, जिसको मिल गया वो उसमें शामिल हो जाता है।
1: मंत्री जी, हम जानते हैं कि बड़ा व्यस्त आपका समय रहता है, लेकिन उसके बावजूद आपने हमें खूब वक्त दिया, बहुत विस्तार से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और सारे विषयों पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।
0: धन्यवाद जी।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव से हमारी यह बातचीत। अब हम आपसे विदा लेते हैं, नमस्कार।

0: अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से ली गई विशेष भेंट वार्ता। ये प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर की प्रस्तुति थी। मीडियम वेव एफएम बैंक पर आकाशवाणी का रायपुर सरायपाली केंद्र है।
1: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव से विशेष भेंटवार्ता आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बिलासपुर को। 10:25 हुए हैं। थोड़ी देर में हम लेकर आएंगे कार्यक्रम आपकी पसंद।

बातचीत। ग्राम सभा कार्यक्रम में बदलत पर्यावरण और हमर जीवन संग खेती में प्रभाव विषय पर गोठबात होगी। इसके बाद फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

श्रोताओं, आज शाम 5:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा जगत, जिसमें बातचीत होगी जल संरक्षण और हमारे दायित्व के बारे में। साथ ही क्रम होगा मेरा शहर का, एक भेंटवार्ता भी प्रसारित की जाएगी। छत्तीसगढ़ पीएससी से महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी पद पर चयनित आर्यन राठौर से श्रुति साहू की

हमारे केंद्र से शाम 5 बजे आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। इसके बाद 5:05 पर आज एक विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह से डॉ सुप्रिया भारतीन की बातचीत आप सुन पाएंगे।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं का। शुरू करते हैं जल्दी से सिलसिला आपके फरमाइशी गीतों का और आपके भेजे हुए पत्रों का। कार्यक्रम का पहला गीत रॉक स्टार फिल्म से सुनना चाहते हैं हमारे श्रोता, जिसे मोहित चौहान, जावेद अली, एआर रहमान और साथियों ने आवाज़ें दी हैं और इरशाद कामिल ने इसे लिखा है। फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की है। कतियापारा जुना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश देवांगन, लोकेश, आशीष, रवि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन के साथ बमहर चाटी डी से गंगा देवी, पूनम देवांगन, धनेश्वरी, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन। जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख, शबाना आलम, चांदनी नाज के साथ सीरजपुर गणेशपुर से वकील राही, फिरोज, आलम नाज और प्रवीण के साथ अर्श बाबू। रिंगनी छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा की। ग्राम दरचूरा से इस गीत को सुनना चाहते हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी और प्रीतम कुमार। भाटापारा से इस गीत को पसंद करते हैं बच कामल, मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु, विनय।

ठाकुर, चौवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदुलेख, राम राधेश्याम, जितेंद्र साहू के साथ मारवाड़ी कुमार भाटापारा से सिया राम, अश्विनी पांडे, सोनाडी से आपके साथ सुब्रत चौधरी, बेबी अनीशा और रायपुर से हैं नीलू मेघ।

कुन फाया कुन यानी होगा ज़रूर होगा। जी हाँ श्रोताओं, जब हम सच्चे दिल से कोई मुराद मांगते हैं तो कभी ना कभी वो ज़रूर पूरी होती है, और जब आप हमें चिट्ठियाँ लिखकर भेजते हैं तो हम कोशिश करते हैं आपकी फरमाइशें पूरी करने के लिए। ईमेल करें गीत सुने या फिर हमें चिट्ठी लिखिए अपनी फरमाइशी गीतों के साथ, अपने नाम के साथ, अपने पते के साथ। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बिलासपुर छत्तीसगढ़, और पिन कोड है 495006। अगला गीत आप सुनेंगे बजरंगी भाईजान फिल्म से, कव्वाली है ये अदनान सामी और साथियों की आवाजों में। कौसर मुनीर की लिखी हुई कव्वाली है, प्रीतम ने संगीत निर्देशन दिया है। सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत कवाड़कर राही, श्रीमती सरिता प्रिंस एकांश, श्रीमती वैशाली, शैलेश, श्वेता, सुमित और कुमारी ध्वनि कम्हाड़कर। इनके साथ बदलापुर मुंबई से सिद्धांत और प्रणीता भी हैं। राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा, मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा, पीहू और उनका पूरा परिवार शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से इस गीत को पसंद करता है। एक और चिट्ठी आई है संभाजी नगर महाराष्ट्र से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश भी इस गीत को पसंद करते हैं। देवरी भाटापारा से गन्नूला रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मिस्त्री, मयाराम रजक, पुनेश्वर रजक, फानेश्वर, मुकेश, हाव्या, टानिया और उनका पूरा परिवार इस गीत को सुनना चाहता है। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से चिट्ठी आई है रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल और आपके साथ डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, बेबी अनिष्का, राधिका के साथ बागबहरा, भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कुशाल, कौशल, खुशबू और यमतमाल, विदर्भ से संतोष खड़से, विनोद खड़से।

0: सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: किधर है?
3: बेटी का नया अकाउंट और मेरा केवाईसी अपडेट,
2: ये तो झटपट काम है।
3: कैसे?
2: अगर केवाईसी डिटेल्स में चेंज नहीं या सिर्फ एड्रेस बदला है तो रजिस्टर्ड ईमेल, मोबाइल, ऑनलाइन या लेटर से सेल्फ डिक्लेरेशन दे दो।
3: और बाकी चेंजेस?
2: घर बैठे वीडियो केवाईसी या आधार ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी से, सिर्फ बैंक ऑथराइज्ड चैनल से। ये नूडल्स बनाने जितना आसान है।
4: RBI कहता है,
5: केवाईसी सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम।
6: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, और अगला गीत सुनना चाहते हैं फिल्म द डर्टी पिक्चर से सुनिधि चौहान की आवाज में हमारे ये श्रोता साथी नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज। आप लुतरा खमरिया से हमें चिट्ठी भेज रहे हैं। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया, रिंकू, सन्नी, कोमल यादव। नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र और योगेश यादव। बंगला मटिया बालौद से शिव कुमार अंगारे, अंजनी, त्रयंबिका, लीना, अंशु, आशुतोष अंगारे भी इस गीत को पसंद करते हैं। और ग्राम पंचायत बठेना बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा के साथ सारा गांव चटौदा से सुजान वर्मा, सहुद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा भी इस गीत को सुनना चाहते हैं। तो चलिए, आप सबकी पसंद पर विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में रजत अरोड़ा का लिखा हुआ गाना सुनिधि चौहान की आवाज में फिल्म द डर्टी पिक्चर से मिलकर सुनते हैं।

0: सुनिधि चौहान और साथियों की आवाजों में इस गीत की बाद समय हो रहा है आज की ट्रैफिक अपडेट सुनने का, जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
1: नमस्कार श्रोता साथियों, इस समय आप सुन रहे हैं ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था उमाशंकर पांडे से। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सभी स्थानों के साथ साथ आज बिलासपुर में भी मुहर्रम का पर्व हमेशा की तरह आपसी भाईचारे एवं सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर आज शाम 5 बजे इमाम बाड़ों से सवारियां एवं ताजिया के साथ जुलूस निकाला जाएगा, जो नगर भ्रमण करते हुए देर रात्रि विसर्जन किया जाएगा, जिसे देखने बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। इस दौरान ताजिए की संख्या के अनुसार कुछ स्थानों में सुगम यातायात के आशय से यातायात की दिशा आवश्यकता अनुसार क्षणिक परिवर्तित की जा सकती है। सभी वाहन चालकों से अनुरोध है ऐसे स्थानों में अपने वाहनों की गति कम से कम रखें, पूरी सावधानी के साथ चलें। शहर की तरह मुहर्रम की झलक शहर से बाहर रतनपुर, कोटा, सीपत, तखतपुर, बिल्हा, बोदरी आदि जगह भी होगी। यहाँ भी सभी से अनुरोध है परंपरा के अनुसार आपसी सौहार्द एवं आम यातायात व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही शहर के साथ साथ संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, जैसा कि हम आपको हमेशा यह बताते आ रहे हैं और आप देखते भी आ रहे हैं कि लगातार विकास कार्य बिलासपुर जिले में होते आ रहे हैं। विगत कुछ दिनों से पूरे शहर की हर चौड़ी सड़क में पूर्व से बने छोटे आकार के रोड डिवाइडरों को तोड़कर नए और बड़े आकार के रोड डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। इसी क्रम में इस समय शहर के पुराना बस स्टैंड और सबसे अधिक व्यस्त मार्ग तेलीपारा मार्ग में यह कार्य प्रगति पर है। यहाँ पुराने डिवाइडर को तोड़ने से मलवा बीच सड़क में काफी देर तक रखा रहता है तथा इस कार्य में लगा वाहन जेसीबी भी यही सड़क पर होता है और मजदूरों के साथ साथ

0: निर्माण सामग्री भी सड़क में ही होती है, इसलिए ऐसे समय में पूरी सावधानी बरतें, धीरे चलें। थोड़ी भी चूक या लापरवाही का परिणाम घातक हो सकता है, इस आशंका से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ट्रैफिक अपडेट्स के बाद आइए जल्दी से सुन लेते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत। लता मंगेशकर की आवाज में हमारे इन श्रोताओं की फरमाइश पर हथकेरा भाटापारा से पंचू यादव, दादू यादव, बावली से कमलेश, हारेंद्र सुशील बिलसपुरिया और जहांगीर मेहंदा से राम नारायण कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी के साथ पेंड्रा धनगवा बरपारा से कैलाश चंद्रवती, सुरेश सुरेंद्र, संजना, श्याम शंकर काशीपुरी, मोनू कोटवार के साथ प्यारेलाल सोनवानी और दुर्गेश मनीषा, रुआबांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना जैन, श्रेया जैन, सौरभ जैन और शौर्य जैन के साथ सुनना चाहते हैं इस गीत को शुभम। और भाटापारा से चिट्ठी आई है मिलावदास कुलदीप, संतोष, संदीप, अजीत दास, कुलदीप, बिरजना, बिरजा और संजना के साथ लक्की।

लता मंगेशकर की मीठी आवाज में इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। 11 बजे हैं, समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी सुनने का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिन

0: हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट हैंगर भी कहते हैं। चूना पत्थर के ये हॉल नुमा कक्ष देखने में एयरक्राफ्ट हैंगर की तरह दिखाई पड़ते हैं। ये प्रकृति प्रेमियों को बहुत आकर्षित करते हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं में विविध प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियां और जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये गुफाएं लगभग 40 करोड़ साल पुरानी हैं। इन गुफाओं में वैज्ञानिकों को कई विलुप्त जीव प्रजातियों के जीवाश्म भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि आज से लाखों साल पहले का जीव जगत कैसा था। एक और रोचक बात मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि इन गुफाओं को बैट केव्स या चमगादड़ों की गुफाएं भी कहते हैं, क्योंकि यहां घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवा कोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।

0: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
1: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी एल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
0: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
1: उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
0: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया। प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
2: <दभी। laughs>

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम

0: करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
1: नहीं नहीं,
0: देखिए आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
1: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे 50 साल और जीऊंगा।
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हां में हां मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
0: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुश दिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। उन्नीस सौ 85 में उनकी आवाज खो गई।

0: अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
1: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
1: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
2: प्रोफेसर डेनिस
3: जी,
2: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
3: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
2: ओह।
3: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
2: ग्रेट, धन्यवाद सर, ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
3: जी।
2: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
3: तो लीजिए, सुनिए।
4: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
1: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
0: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
1: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
0: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
1: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
0: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं, जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।

0: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
1: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
2: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
3: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
0: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
2: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
0: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद आप सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
5: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
5: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
5: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
8: बहुत आसान पूछते हो।
5: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
8: अगली बार में बहुत मुश्किल।
5: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
5: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
8: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
5: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
9: वो तारा होता है।
5: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
10: वो रात और दिन भी बनाता है।
5: एकदम सही, एकदम सही।
9: वो हमें धूप भी देता है।
5: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
8: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
5: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
8: विटामिन डी।
5: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश बहुत
9: और
5: अच्छे।
9: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता। हाँ
5: बिल्कुल,
8: पेड़ों को खाना भी देता है।
5: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
8: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
5: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है

0: ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
1: हाँ,
2: जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर,
1: हाँ,
0: इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है,
1: मौसी,
0: धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी
1: हाँ,
0: कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं, लगता है ना।
1: वो तेज चलती है
3: और
1: तो
3: जब
1: ऐसा
3: हम लोग
1: लगता है वो
3: चल
1: भी तेज चल रही है।
3: और जब हम
0: हाँ
3: लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा
0: है
3: है। गर्मी में तो
0: ना।
3: मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना,
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है
0: बहुत बड़ा होता है,
3: पर हमें छोटा लगता है आसमान
0: हम
3: दूर
0: क्योंकि
3: से देखे
1: वो दूर
3: ना।
1: होता है इसलिए।
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है, और कभी कभी मन करता है कि शायद
1: और
0: इसको छू के
1: तारे
0: देख लें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगते हैं क्योंकि वो बहुत दूर है,
0: हाँ,
4: वो
0: क्या बात,
4: चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहां गर्मी होती है, और जो दूर वहां
5: सर्दी।
0: ओह, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ,
3: और
0: शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है।
3: स्कूल जाने का मन भी नहीं करता।
0: सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है,
5: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके,
5: धरती काटे चक्कर इसके,
0: लगे ये चलता जाता है,
5: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे,
5: सर्दी गर्मी बनते इससे,
0: ये दिन रात बनाता है,
5: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
0: सूरज ये
5: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, एक और पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
3: जल्दी जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई, मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ।
1: वो भी दस पूछेंगे,
0: दस
1: सब
0: दस
1: सब।
0: पहेलियाँ। अच्छा, चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना।
1: मौसी
0: डर जाती
1: है। और आपके कुल मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे,
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
6: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
7: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया जा रहा था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:31 हो चुके हैं। आइए जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा से।

0: FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रायपुर से और 12 बजे से संध्या 5 बजे तक विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम हम रिले करेंगे। आइए पहले जुड़ते हैं आकाशवाणी रायपुर से।
1: मीडियम और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। इस तरह से पश्चिम एशिया संकट से पूर्व की आपूर्ति स्थिति बहाल कर दी गई है। इसके अलावा एलपीजी की विशाल आपूर्ति जिसे संकट की शुरुआत में निलंबित कर दिया गया था को संकट पूर्व खपत स्तरों के 50% तक बहाल किया गया है। यह बहाली हाल ही में एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से प्रभावी होंगी। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में वृद्धि की गई है। छत्तीसगढ़ में नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग द्वारा सरगुजा और रायपुर संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। छत्तीसगढ़ में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य किया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला के अंतर्गत लक्की ड्रॉ के विजेता हितग्राहियों को आज रायपुर में आयोजित एक समारोह में पुरस्कार दिए जाएंगे। इस समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और आवास मंत्री OP चौधरी मौजूद रहेंगे। इस मौके पर मंडल द्वारा आयोजित नवीन लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के विजेता रचनाकार को 2.5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी प्रदान की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निजी विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने विद्यार्थियों और अभिभावकों से कहा है कि दाखिले से पहले विश्वविद्यालय की मान्यता, राजपत्र में प्रकाशन, संबद्धता और पाठ्यक्रम की मंजूरी की जाँच अवश्य कर ले। रेलवे द्वारा भुवनेश्वर और मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन के बीच एक फेरे के लिए आज स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। यह ट्रेन आज भुवनेश्वर से रवाना होगी जो 28 जून को लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पहुंचेगी।

0: पहुंचेगी। इस ट्रेन का स्टॉपेज रायपुर और दुर्ग स्टेशन में दिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने बिलासपुर के रतनपुर तहसील के लालपुर हल्का के पटवारी को 25,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पटवारी नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत मांग रहा था। इसके अलावा बिलासपुर के ही मस्तूरी में ही एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर बिजली विभाग के क्लर्क को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते पकड़ा है। आरोप है कि यह क्लर्क बिजली का खंभा लगाने के लिए रिश्वत मांग रहा था। आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। इस मौके पर ताजिया निकाले जाते हैं और करबला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान की याद में मजलिसों का आयोजन किया जाता है। इधर छत्तीसगढ़ में भी मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित कई शहरों में ताजिए निकाले जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की आपूर्ति पर लगे सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध को हटा दिया है। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। मीडियम वेव 305.1 मीटर यानी 981 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये रायपुर और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये सरायपाली केंद्र है। ये प्रसारण आप मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी सुन रहे हैं। 12 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: जुलाई से लागू होगा। भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम 2026 में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के विदेश मंत्री जेकब हलबर्ग ने कहा कि AI अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने AI युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक हुई। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि देश में मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा हो रही है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई में लगे लोगों के प्रयासों की सराहना की है।

0: अवसर पर श्री शाह ने कहा कि भारत ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग के वैश्विक चुनौती के खिलाफ सबसे मजबूत लड़ाई लड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के गिरोहों को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, यादों की महफिल।

तेरा ना मेरा, कुछ तेरा ना मेरा, मुसाफिर।

शैलेंद्र के बोल थे एसडी बर्मन की तर्ज फिल्म का नाम गाइड। यादों की महफिल विविध भारती से। अगला गाना आनंद बख्शी की आवाज में, उन्हीं की रचना है, फिल्म का नाम बालिका वधू।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल। अशोक भोसले, दिलराज कौर और साथियों की आवाजें, गुलचन बावरा, राहुल देव बर्मन, सत्ते पे सत्ता।

आनंद बख्शी के बोल थे रेशमा की आवाज, फिल्म का नाम था हीरो। जावेद अख्तर की बोली, अमिताभ बच्चन की आवाज शिवहरी की तरह से, फिल्म का नाम सिलसिला।

इसी के साथ अब आज का यादों की महफिल कार्यक्रम खत्म होता है। ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। थोड़ी ही देर में सुनिए सुरीला सफर।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में हम एक इबारत, एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और वो टेक्स्ट कार्यक्रम के काफी पहले पोस्ट कर दी जाती है, आज भी कर दी गई है। तो आज की इबारत आपको बता दें, बदरा की गागरी में ढेर सारा पानी, मन को रंगीला करे बारिश की कहानी, इन हवाओं में चलो उड़ चले कहीं, ना आसमां का पता हो ना दिखे जमी, ऐसे मौसम में जाने क्या क्या याद आए, कभी मन मुस्कुराए कभी आंख भर जाए, दिन में एक बजे जब मिलेंगे हम, गीतों का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे हम। भाई, इस टेक्स्ट को पढ़कर बहुत सारे श्रोताओं के रिएक्शंस हमारे पास आ गए हैं और इन तमाम रिएक्शंस को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश भी करेंगे। तो एक दूसरे के साथ इस कार्यक्रम का सफर हमें आगे तय करना है। एक श्रोता है जिन्होंने कविता का जवाब कविता से दिया है। वो लिखते हैं, इबारत की इजाद वाले स्वयं पधारे हैं, आज सफरे कारवां के भाग्य न्यारे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो लिख रहे हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के सुरीले सफर में गानों की बौछार होने लगी है, जो बारिश की बूंदों की तरह टिप टिप कानों में एक मधुर आवाज घोल रही है। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट। एक श्रोता है जिनका अंदाजा है कि आज तो गागरी वाला मशहूर गाना बजेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि और कोई गीत हो ना हो लेकिन ये गाना जरूर होना चाहिए कि रिमझिम के तराने लेके

बरसात, याद आई किसी से वो पहली मुलाकात, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, फिर से आई यो बदरा विदेशी और जब जब बहार आई। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज फिर बारिश की कहानी में पानी, कैसा है आपका रंग जिंदगी का शोर, बारिश के तारों पर आई बारिश, याद है वो कागज की नाव, वो बारिश का पानी। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने बाकायदा प्रॉपर लिस्ट भेजी है, यानी इस इबारत में जितने शब्द हैं उन शब्दों पर गाने, और कमाल की बात यह है कि ज्यादातर गाने मैच कर रहे हैं। जो शब्द इन्होंने चुने हैं, बदरा, गागरी, पानी, मन, रंगीला, बारिश, हवा, उड़, आसमान, जमीन, ओ हो हो, 20 शब्द चुन लिए हैं। क्या बात है, क्या मेहनत है, सलाम। और भी बहुत सारे श्रोता हैं जिन्होंने अलग अलग शब्दों पर अपनी बातें कही हैं। आप सभी श्रोताओं के कमेंट शामिल करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी इस गाने के साथ कार्यक्रम का आगाज। क्या आपका गाना हमारे गाने से मैच किया? पर हां, एक और बात, आपके शहर में बादल सिर्फ छाए हैं या बरस भी रहे हैं? और जब छाते हैं बदरा, आपके मन में आती हैं कौन सी बातें? जल्दी से विविध भारती के फेसबुक पोस्ट पर जाइए और कीजिए कमेंट। विविध भारती का फेसबुक पोस्ट खोजने के लिए फेसबुक पर सर्च बॉक्स में लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, फिर पहुंचिए सुरीला सफर की पोस्ट पर। देखिए बादल छा गए हैं, कचरा घुलने लगा है, घटाएं बरसने लगी हैं। इस गाने में महिला स्वर किस गायिका का है ये बताइए।

ये सुदास के साथ हेमांती शुक्ला की आवाज बहुत सारे श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है और ये खुशी की बात है क्योंकि कम चर्चित गायिका को अगर आपने पहचान लिया इसका मतलब आप फिल्म संगीत के सही कदरदान हैं। पहला ही गीत बहुत खूबसूरत है, ये हमारी एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने ये रिपोर्ट की है कि यहां सिर्फ बादल छाए हैं, बारिश का इंतजार है। इसके अलावा एक और श्रोता का जवाब है कि आपका गाना क्या है, कहां से छाए बदरा, हमें मालूम है समुद्र से आए बदरा। एक और श्रोता है जो कहते हैं, कविता में कहती हैं, बादल के छोटे छोटे टुकड़े घूम रहे हैं हमारे शहर के आसमान में, जाने कब एक होकर बरसे, जाने कब प्यास बुझे सूखे अरमान की। भाई कविता करने की इन्होंने कोशिश की। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि मुझे पता था कि ये गाना बजेगा, ये मेरा पसंदीदा गाना है। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं, सफेद बादल छाए हैं बिना पानी वाले, जाने कब होगी बरसात। एक और श्रोता है जिन्होंने कविता लिख भेजी है, अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर

की बचपन की यादें ताजा हो गई हैं। कई श्रोताओं के कमेंट आ रहे हैं और वो सभी अपने बचपन को याद कर रहे हैं। एक श्रोता लिखती हैं, बरखा रानी जरा जम के बरसो हमारे ग्वालियर में भी। इसका मतलब उनके शहर में भी बारिश नहीं हुई है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने अनवर को याद किया है, जिनकी आवाज में ये गाना था मौसम मौसम लवली मौसम। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है सचिन और पद्मिनी कोल्हापुरे की आवाजें। और इसके अलावा एक श्रोता है जो कहते हैं कि हमारे जहन में गूंज रहा है गाना छतरी न खोल बरसात में। और इसके अलावा थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये गाना था, ये भी बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है। एक श्रोता को ये कन्फ्यूजन हुआ कि ये त्रिशूल फिल्म का गाना है, जो कि गलत जवाब है। उसके अलावा एक श्रोता ये हैं जिनका कहना है कि इस तरह के गानों को सुनकर मौसम अपने आप ही लवली हो जाता है। गीतकार का नाम है गुलजार, संगीतकार का नाम है खयाम साहब। तो फिर

इसके अलावा कुछ और श्रोताओं की कमेंट है। एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मांझे पर हम चावल के आटे का घोल लगाते थे, मराठी में खड़ कहते हैं। इसमें कांच को कूट कर उसमें पाउडर मिलाते थे ताकि पतंग फटाफट काटी जाए। इसके अलावा एक श्रोता ये लिख कहते हैं कि कहाँ गया ये कमेंट। एक श्रोता कहते हैं कि विविध भारती के सुबह से गाने सुने तो जो गाना सुबह सुनाई देता है वही जहन में गूंजने लगता है। एक श्रोता लिखते हैं कि पतंगबाजी के कार्यक्रम के बाद खाने की सामग्रियां खाई जाती हैं, ये शायद संक्रांति को याद कर रहे हैं, तिल के लड्डू और अलग अलग तरह की मिठाइयां, ये सारी चीजें याद की हैं। और इसके अलावा जो बहुत नीचे के कमेंट्स हैं जिनकी तरफ मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए, तो उनमें कई श्रोता ऐसे हैं जिन्होंने, अब जैसे ये श्रोता है, इन्होंने कहा है कि हमारे पिताजी बहन भाइयों को पतंग बांट कर देते थे, खरीद कर देते थे, और मेरे बड़े भाई थोड़ी सी चीज की लालच देकर मेरी सारी पतंगें अपने कब्जे में कर लिया करते थे। ये बचपन की याद उनको आ गई है। और इसके अलावा कुछ और श्रोता है, एक श्रोता है जो लिखते हैं कि ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में बहुत पतंगें उड़ाई हैं और 15 फीट ऊंची छत से गिरकर बगैर चोट खाए खड़े भी हो गए। ओ हो, खतरनाक बात है भाई। एक श्रोता लिख रहे हैं कि 67 साल से ज्यादा की उम्र है और 15 से 20 पतंग और चरखियां एक समय में मेरे घर पर हमेशा होती हैं। आसपास कोई उड़ाता तो नहीं है, लेकिन मैं काफी ऊंची पतंग 1 घंटे तक उड़ाता हूं। ये बहुत ही अच्छा व्यायाम भी है। ओ भाई, ये श्रोताओं की बातें। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, तो चलिए देखते हैं कि क्या यही कैफियत आपकी है जो इन साहिबा की है। बारिश का इंतजार है और तमाम बातें हो रही हैं, तो बारिश में की गई किसी रेल यात्रा की यादें हमारे साथ साझा कीजिए।

कुछ और श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि छुट्टियों के बाद नानी के घर से वापस आते समय पक्का बारिश होती थी, बस या ट्रेन से देखते थे, बहुत सुंदर दृश्य, पेड़ पौधे, धान रोपते किसान, बहुत सुंदर लगता था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं, बचपन में हम 12 सदस्यों का परिवार, पैसेंजर ट्रेन का लंबा सफर, बारिश में खिड़की के पास बैठने नहीं दिया जाता था क्योंकि उस समय खिड़कियों में कांच नहीं हुआ करते थे, टीन वाला शटर डाल दिया जाता था। एक श्रोता और हैं जो लिखते हैं कि कुछ दिन पहले दिल्ली गए थे, बारिश में भीग कर ट्रेन पकड़ी और टाइम से पहुंचे तब मिली। इसके अलावा एक और श्रोता है, उन्होंने भी इसी तरह से बारिश के एक सफर की याद की है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिख रहे हैं कि रेखा और विनोद मेहरा पर फिल्माएगा ये गाना बहुत ही बढ़िया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लखनऊ में पतंगबाजी को याद किया है और वो ये लिख रहे हैं कि जब मैं पतंग उड़ाती थी तो लड़की होने की वजह से वो लड़का मुझे डराता था, मैंने उससे पेंच लड़ाया और पता नहीं कैसे मैंने उसकी पतंग काट दी, फिर उसने भैया से शिकायत की। ये तमाम यादें देखिए, पतंग के बहाने कितने सारे श्रोताओं की यादें ताजा हो गई हैं। अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। किस फिल्म का है ये गाना, ये

भाई ये गाना खत्म हुआ और कार्यक्रम के आखिरी मकाम तक हम आ चुके हैं। हमारे एक श्रोता का कमेंट आया जिसमें उन्होंने एक सुंदर कविता लिखी है, फटाफट पढ़ देते हैं। रिमझिम बूंदों का खिड़की को खटखटाना, लगता है आया है गुजरा हुआ जमाना, कागज की कश्तियों का वो पुराना, वो दौर पुराना, छत से वो गिरते हुए पानी को चुराना, वो सौंधी सी मिट्टी की खुशबू का आना, बचपन की वो यादें फिर से बुलाएं, कभी मन मुस्काए कभी आंख भर जाए, खिड़की पे बैठकर चाय का प्याला, यादों ने फिर कोई किस्सा निकाला, भीगा है मंजर ये दिल भी है गीला, मौसम ने पहना है ये रंग सुरीला। सुंदर कविता है और आप सभी ने जिस तरह की सुंदर यादें बांटी हैं, कुछ बारिश वाले रेल के सफर की यादें हैं जो कार्यक्रम में शामिल हम भले नहीं कर पाए हों, लेकिन हम इन सभी यादों को आराम से बैठकर पढ़ेंगे और आप सभी के की इन यादों के साथ एक पुराने जमाने का लुत्फ उठाने की कोशिश करेंगे। आपने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया और इतने सारे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 34वीं कड़ी।

बारिसाल जैसी घटनाएं बंगाल में बार बार घटने लगी। वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों का विरोध करना आम लोगों की नजर में एक रोजमर्रा की बात बन गई। यह विरोध अब और अधिक संगठित रूप से होने लगा। बंगाल में ऐसी घटनाएं जगह जगह होने लगी। पुलिस का डर ही नहीं बचा। यह लहर मजदूर वर्ग में भी

0: 1906 में राष्ट्रीय सभा का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन के लिए भगिनी निवेदिता कार्यरत थी। सुप्रसिद्ध तमिल कवि सुब्रमण्य भारती इस अधिवेशन में पत्रकार के रूप में उपस्थित थे। भगिनी निवेदिता के साथ हुई चर्चा के कारण सुब्रमण्य भारती के लेखन और विचारों को एक दिशा मिली। सुब्रमण्य भारती ने उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु माना था।
1: हिंदुस्तान मतलब जंजीरों से जकड़ी हुई दुखी माँ है, ऐसा भगिनी निवेदिता कहा करती थी। सुब्रमण्यम भारती पर भगिनी निवेदिता के शब्दों का गहरा प्रभाव पड़ा।

0: वंदे मातरम शब्दों का उपयोग करते हुए एक ओर उन्होंने भारत के वैभव, इतिहास, संस्कृति का गौरव किया, तो दूसरी ओर जातिवाद जैसी अनिष्ट प्रथाओं पर भी उन्होंने कड़ा प्रहार किया। उन्होंने लिखा,
1: भले हो यहाँ हजारों जातियां, पर न हो विदेशियों को यहां स्थान। एक माता के पुत्र हम चाहे लड़ें जितने, हैं फिर भी एक दूसरे के बंधु ही।

0: इंसान सुन, यहां आ, यहां कोई ऊंच नीच नहीं है। सुब्रमण्य भारती की ये क्रांतिकारी कविता है। इसमें वो इंसान को पुकार कर कहते हैं कि इस दुनिया में कोई छोटा या बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। जाति धर्म ऊंच नीच का भेदभाव गलत है।
1: भारत वंदना इस प्रसिद्ध कविता में सुब्रमण्यम भारती लिखते हैं,
2: हमारी भारतीय माताएं बचपन में विवाहित होकर अपना घर बसाती थीं। यहीं उन्हें एहसास होता था मातृत्व के आनंद का, संतान प्राप्ति के गर्व का। जगह जगह स्थापित हमारे मंदिरों ने बड़ों को आत्मा के सत्य की अनुभूति करा दी। काल प्रवाह में उनके विलीन होने पर उनकी संतानों ने वेदी की उनकी जगह ले ली। सत्य की उस स्मृति को मैं वंदन करता हूं। वंदे मातरम, वंदे मातरम।
1: सुब्रमण्यम भारती ने तमिल भाषा में जो वंदे मातरम के दो अनुवाद किए वे इस प्रकार हैं।

तमिल के जैसे ही दक्षिण की तेलुगु भाषा में भी वंदे मातरम का अनुवाद हुआ। अनुवादक कवि थे लक्ष्मी नरसिंह पंतलु। आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्री में एक बड़ी सभा में बिपिन चंद्र पाल के सम्मुख वंदे मातरम तेलुगु भाषा में गाया गया। वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, मंद मंद मलयानिल जागृत निर्मल जीवन मधुर फलामृत, शस्य श्यामल कोमल गात्रा वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, श्यामल नीवे सरलवु नीवे धरणिवि भरणिवि सर्वमु नीवे, प्राण तुलीवे जननी भारतवनी वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा, नीवे विदयक नीवे धर्मक नीवे हृदयक नीवे मर्मक, नीवे प्राणमु नीवे देहमु नीवे प्रेममु नीवे श्रेयमु, वंदन मम्मा भारत माता वंदन मम्मा।

वंदे मातरम ये शब्द अब प्रत्येक भारतीय के हृदय में विराजमान हो गए थे। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 34वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद, संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
2: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन,
3: कौन लाया, कौन लाया।
4: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
5: खून से है क्यों भीगा जिसम ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
4: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
6: एक टुकड़ा धूप का।
4: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
5: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।

0: जानी मानी फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं, ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान, कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
1: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT के सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधीय सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की

0: वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी दो दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business,
4: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
4: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों के

0: समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIANewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया।

अपने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।

राजा मेहदी अली खां के बोल थे, मदन मोहन की तर्ज थी और उन्हीं की आवाज साथ में लता मंगेशकर की आवाज, वो कौन थी फिल्म के गाने का ये एक विशेष संस्करण था। इससे पहले कोहरा फिल्म का गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, संगीत हेमंत कुमार का था।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में ये गोदान फिल्म का गाना था। अनजान के बोल थे, संगीत पंडित रविशंकर का था। इसी के साथ अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम खत्म होता है। एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है।

0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों नमस्कार। इंतजार ऐसी खामोश कविता होती है जिसे हर दिल हर पल बिना शब्दों के लिखता रहता है। ये वो दीप होता है जो विरह की रातों में आशा की लौ जलाए रहता है। इंतजार वो फूल है जो खिलने से पहले ही खुशबू का एहसास कराता है। किसी अपने की राह देखता हुआ मन मानो समय की दहलीज पर उम्मीदों के दीप सजाकर बैठा रहता है। इंतजार वो एहसास होता है जहाँ मिलने की खुशी से पहले यादों की महक दिल के आंगन को महका देती है। चिलचिलाती गर्मी से राहत के लिए हम सभी को झमाझम बारिश का इंतजार है, तो फिलहाल मुझे इंतजार है आपके फोन कॉल्स का। देखते हैं किन किन सहेलियों से आज बातें होगी। और हमारा इंतजार हुआ खत्म और ये आ गया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमारी?
1: शीला सहनी, दिल्ली से।
0: शीला जी, क्या हाल चाल है?
1: हाँ,
0: शीला जी
1: अपना सही है, आप बताओ अपना हाल चाल।
0: जी, हमारे भी हाल चाल बहुत अच्छे हैं। बताइए आप क्या करती हैं?
1: जूते लन का काम यहाँ होता है दिल्ली में, वही सब कर रही हूँ ऐसे फैक्ट्री में।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप व्यस्त रहती हैं, काम करती रहती हैं। मुझे एक बात
1: हाँ
0: बताइए,
1: मैम, हाँ
0: दिल्ली
1: काम
0: के क्या
1: करती हूँ।
0: हाल चाल हैं?
1: दिल्ली में तो अभी थोड़ा गर्मी है और बाकी सब तो वैसे मौसम के हिसाब से चलते ही रहता।
0: गर्मी से तो सभी परेशान हैं, पर मुझे एक बात बताइए कि गर्मी से राहत के लिए आप कौन से उपाय करती हैं? किस तरह से ऐसा कुछ करते हैं जिससे गर्मी कम लगे?
1: गर्मी के लिए क्या करेंगे, अपना सेहत पे ध्यान रखे हैं, धूप धूप का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें खूब पानी पीना है और बाहर
1: हाँ,
0: निकलते वक्त छाता
1: पानी
0: लेके
1: पी
0: चलना।
1: लो, ठंडा पी लो, जिसका होता है वो लस्सी पी लेते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। और ये बताइए कि आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: मैम, नीलकमल फिल्म का कोई सा सुना दीजिए।
0: सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: मैं निशा पाठक एयरपोर्ट रोड इंदौर से लगाया है।
0: निशा जी, क्या हाल चाल है
1: हाँ
0: आपके?
1: जी, मैं बहुत अच्छी हूँ। बस ये मैं बताना चाहती हूँ आपको कि मैं आपकी बहुत बहुत बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ, विविध
0: क्या बात है, शुक्रिया
1: भारती की खास तौर पर।
0: जी
1: और
0: जी
1: मैं सालों से, आप समझ लीजिए, बचपन से विविध भारती सुनती चली आ रही हूँ, और हेलो सहेली भी हमेशा सुनती हूँ। सखी सहेली तो फेवरेट है ही मेरा
0: अच्छा जी, निशा जी, आपके बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: जी। मैं सीनियर सिटीजन हूँ और दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, दो पोते हैं, उन्हीं के साथ मैं रहती हूँ
0: यानी जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं आप, है ना?
1: जी। हाँ, ये समझ लीजिए कि रिटायरशिप मैं कर रही हूँ अब
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। हाल ही में
1: जी
0: हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, तो क्या आप
1: जी
0: योगा करती हैं? योग से जुड़ी
1: जी
0: हुई हैं?
1: हाँ, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि मैं करीब 2010 से मैंने योगा को अपनाया है और मुझे उस योगा से बहुत बहुत फायदा मिला है।
0: किस तरह से फायदा है वो भी थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मुझे कमर में तकलीफ हो गई थी और मुझे थोड़ा वो भी है, ब्लॉकेज में भी थोड़ी है दिक्कत, तो उस वजह से फिर मैंने प्राणायाम भी शुरू करा और तीन चार आसन जो मेरे कमर से और स्पॉन्डिलाइटिस से संबंधित हैं वो आसन भी मैं करती हूँ। तो उन सब आसन और प्राणायाम से मुझे बहुत लाभ मिला, तो मेरी दवाइयाँ करीब करीब आप जो चल रही थी सिर्फ वो ही चल रही हैं, उसके आगे नहीं बढ़ी।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यानी आप जिंदगी का लुत्फ उठा रही हैं, साथ साथ अपना भी ध्यान रख रही हैं और पूरे परिवार
1: जी
0: के साथ
1: हाँ,
0: खुशहाल हैं।
1: सारी महिला समाज से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप घर गृहस्थी में भी ध्यान दीजिए, किंतु अपनी तरफ भी ध्यान दीजिए और अपने जो आपके शौक रह गए हों उन्हें आप सीनियर सिटीजन जब आप बन जाती हैं तो आप कम से कम उन शौक को इस समय में आप पूरा कीजिए।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश दिया है। और बताइए, कौन सा

0: संगीत आप सुनना चाहती हैं?
1: बंदिनी फिल्म का है, जिसको सुनकर मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। अब के बरस भेज भैया को बागुल, सावन में लीजो बुलाए।
0: क्या बात है, बहुत ही सुंदर गीत आपने चुना है और हम
1: जी
0: सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो मैम, नमस्कार। पूनम
0: नमस्कार। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: यादव लुधियाना से। हाँ
0: पूनम यादव लुधियाना से।
1: जी मैम, जी
0: पूनम जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं तो मतलब बस हाउस वाइफ है मैडम जी।
0: हाउस वाइफ होना भी बहुत बड़ी बात है ना पूनम जी, पूरे परिवार का
1: हाँ
0: ख्याल रखती हैं आप, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी मैडम जी।
0: और कौन से शौक है आपके?
1: हमारे शौक तो मैडम जी बस सिलाई कढ़ाई।
0: क्या बात है, तो बहुत अच्छा शौक है ना, सिलाई करना,
1: हाँ
0: कढ़ाई करना, बुनाई करना। ये तो महिलाओं को इन्हें बचपन से सिखाया ही जाता था पुराने जमाने में, और ये कला जो
1: हाँ
0: होती है ना, अद्भुत है
1: जी,
0: ये कला, हर कोई नहीं सीख सकता ये, है ना? और अभी
1: हाँ
0: लुधियाना
1: जी,
0: की क्या हालचाल है?
1: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब तो बारिश होके आती है, थोड़ा गर्माई, थोड़ा हवा, थोड़ा मौसम बहुत अच्छा है यहाँ का।
0: यानी अभी आप मौसम का लुत्फ उठा रही हैं।
1: सारे मौसम आने बहुत ही जरूरी है मैडम जी। जिंदगी में हर मौसम अगर नहीं आएगा तो हमारी जिंदगी नहीं चलनी है।
0: क्या बात है। तो चलिए बताइए, कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: एक बरसात फिल्म का गाना है, बॉबी देओल का। मतलब नहीं हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए, तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए।
0: बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते दी। मैं
0: नमस्ते। कहाँ से फोन लगाया और कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें?
1: जी, मैं श्वेता भारती, जिला इंडिया, ग्राम हिंसा से बोल रही हूँ
0: क्या
1: जी।
0: हालचाल है आपके?
1: बढ़िया है दीदी, आप बताओ कैसी हो।
0: जी हम भी मजे में हैं, और आपसे बात करके और भी हम मजे में हो गए, और भी खुश हो गए, है ना?
1: हम भी बहुत खुश हो गए, कॉल लग गया।
0: वैसे आप बताइए कि
1: पर
0: आप करती क्या है जिंदगी में?
1: जी, घर पे रहते, घर के काम करते हैं
0: ये तो बहुत अच्छी बात
1: जी।
0: है। और घर के काम करते करते खुद के लिए कभी वक्त निकालते हैं कि नहीं? एक अपने खुद के लिए कभी कभी ऐसा लगता है ना, ये काम करने में मुझे ज्यादा आनंद मिलता है, यानी मुझे सिलाई करने में ज्यादा आनंद मिलता है, या फिर मुझे गीत गाने में आनंद मिलता है, या फिर रेडियो
1: नहीं,
0: सुनने में।
1: मुझे मुझे गाने में आनंद मिलता है। मैं रेडियो सुनती हूँ, विविध
0: गाती भी है।
1: भारती बहुत ज्यादा सुनती हूँ। बहुत
0: विविध
1: खुश हूँ विविध भारती से जी दीदी।
0: जी, और गाती भी हैं आप
1: जी दीदी, गाती हूँ। अच्छा,
0: तो गुनगुना के बताइए।
1: गुनगुना के भी सुनाओ। देवी
0: सुनाइए।
1: जी के मंदिर में लट से बहारी आई, देवी जी के मंदिर में लट से बहारी आई, लट से बहारी आई, बरदाने मांगी आई।

0: रहिए और विविध भारती सुनते रहिए।
1: जी। सुरजीत
0: और आपकी पसंद का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: फिल्म का सुना दीजिए दीदी। कोई
0: तो जीत फिल्म का कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: भी सुना दीजिए।
0: जी ठीक है, जीत फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: मांगी आई देवी जी की मंदिर में लट सेवा आई।
1: क्या बात है, कितना सुंदर भजन सुनाया आपने। तो ऐसे ही गाते
0: दे दे।
1: गुनगुनाते रहिए, खुश

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली,
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सई देशपांडे बोल रही हूँ, नागपुर महाराष्ट्र से।
0: सही जी, अपने बारे में बताइए।
1: मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, स्केचिंग, पेंटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब करती हूँ और पब्लिशर भी हूँ। पुस्तकें पब्लिश हुई हैं हमारी। और पहले तो वैसे मैं हाउसवाइफ थी, बट मैंने हॉबीज अपनी डेवलप की और लेखन भी किया, तो लेखिका, कवयित्री, गायिका भी हूँ। और मेरा मेन प्रोफेशन अभी फिलहाल ये है कि मैं पेंटिंग और स्केचिंग करती हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप ऑलराउंडर हैं, सारी कलाओं
1: जी
0: में आप निपुण हैं, है ना?
1: जी जी
0: और आपने संगीत कहा कि आप संगीत सीखी हुई हैं, तो कौन सा संगीत का प्रकार है? यानी आप शास्त्रीय संगीत सीखी हैं या सुगम संगीत, किस तरह के गाने आप गाती हैं?
1: जी मैं शास्त्रीय संगीत सीखी हुई हूँ, बट अभी फिलहाल मैं सुगम संगीत गाती हूँ और सेमी क्लासिकल गाती हूँ।
0: और जैसे आपने कहा कि पहले आप हाउसवाइफ थी, तो ऐसा होता है ना कि आमतौर पर महिलाओं को ऐसा लगता है कि हाउसवाइफ है, हम तो सिर्फ हाउसवाइफ हैं, पर घर संभालते हुए अपने हॉबी के लिए वक्त निकालना

0: और आगे चल के उसी का प्रोफेशन चुन लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसी दौर से गुजरी हुई हैं कि आप पहले हाउसवाइफ थी, उसके बाद में आपने धीरे धीरे सारी कलाओं को सीख कर उसमें पारंगत हो गई हैं और आप अब प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं। तो हमारी जो सखियां हैं, अन्य सखियां, उन्हें भी आपके बारे में सुनकर अच्छा लगेगा। तो अपने बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जब मैं हाउसवाइफ थी तो तब मेरे एक्चुअली सास ससुर भी थोड़े एजेड थे और बच्चे भी छोटे थे, तो मैं पूरी तरह से परिवार की सेवा कर रही थी, यानी उनकी तरफ पूरा ध्यान देना। और मेरे हस्बैंड भी आउट ऑफ स्टेशन रहते थे, तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी मुझ पे थी। इसलिए मैंने उस वक्त घर के अंदर रहकर ही जो कुछ मैं कर सकती थी उतना किया, अपनी हॉबीज को डेवलप करती रही, टैलेंट्स को, यानी जैसे स्केचिंग है तो उसमें मैं खुद को डेवलप करती रही। और फिर आगे जाके मुझे उसमें फिर अपॉर्चुनिटीज मिली, बच्चे भी बड़े हो गए और घर से भी सपोर्ट था ही, यानी जहाँ जहाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी मैं करती थी। और अब तो मुझे ऑर्डर्स भी अच्छे आने लगे हैं और काफी प्रसिद्धि मिल चुकी है। तो मेरा ये कहना है सभी सखियों से कि अगर आप हाउसवाइफ भी हैं तो भी कुछ समय अपने लिए, खुद के लिए अवश्य निकालें, और जो कुछ भी आप में टैलेंट है उसको आप डेवलप करते रहें। भले ही उस वक्त आप बाहर ना भी जा पाए तो भी कम से कम 1-2 घंटा अपने लिए, खुद के टैलेंट्स के लिए निकालें और उसको डेवलप करते रहें, तो आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलती हैं।
0: ये तो बहुत अच्छा संदेश सारी सखियों के लिए आपने दिया। और एक सवाल आपसे कि ये सब काम करते हुए परिवार का आपको कितना सहयोग मिला?
1: जी, ये जब मैं कर रही थी तो घर में, जब मैं, जैसे अब बहुत से काम हमको करने पड़ते हैं तो घर के सदस्यों ने घर के कामों में थोड़ी मदद अगर की तो हमको खुद के लिए भी टाइम निकालना पॉसिबल होता है। तो ये मेरे घर के सब सदस्य मुझे ये मदद करते हैं। और जब मैं बाहर जाती हूँ या मुझे कुछ ऑर्डर्स रहते हैं या गाने का कार्यक्रम होता है तो भी मुझे घर से बहुत सपोर्ट, मेरे हस्बैंड स्पेशली और बच्चे बहुत सपोर्टिव हैं। तो घर के लोगों ने भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब घर की महिला उसके अंदर का टैलेंट अगर वो डेवलप कर रही है तो उसको आप लोग सपोर्ट करें ताकि वो खुश रहे। फाइनेंशियली भी वो अगर इंडिपेंडेंट रहती है तो भी घर वालों को भी हेल्प उसकी होती ही है ना, तो घर वालों ने भी उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे और अपनी हॉबीज को वो अगर प्रोफेशन में लेके आ रही है तो वो खुश भी रहेगी, तो वो नेचुरली परिवार को भी खुश रखेगी।
0: ये
1: ऐसा
0: बहुत
1: मेरा
0: सही
1: मानना।
0: बात आपने कही कि अगर एक महिला खुश रहती है तो पूरा परिवार खुश रहता है, और महिला को आगे बढ़ने में परिवार का सहयोग कितना महत्वपूर्ण है। तो ये हर, अगर स्त्री को, हर नारी को ऐसा सहयोग मिलता रहे तो हर नारी कुछ न कुछ आगे जाके बहुत अच्छा काम कर सकती है। और सई जी, जैसा आपने बताया कि आप गाती भी हैं, तो हम आपसे कुछ लाइनें सुनना चाहेंगे।
1: जी, एक छोटे नवाब फिल्म का गीत है, लता जी ने गाया हुआ, आर डी बर्मन का संगीत है वो, मैं आपको सुनाती हूँ।

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुरीली आपकी आवाज है और बहुत सुर में आप गाती हैं, तो ऐसे ही गाते
1: धन्यवाद
0: गुनगुनाते रहिए। और यही
1: धन्यवाद
0: गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, यही गीत सुनना चाहती हूँ।
0: तो आपकी पसंद का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मेरा नाम जयश्री है।
0: कहाँ से फोन लगाया आपने?
1: मैंने लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा से फोन लगाया है।
0: अच्छा, ये कहाँ पर स्थित है, थोड़ा सा विस्तार में बताइए इस बारे में।
1: जी, ये महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में है और ये आपने सुना ही होगा डॉक्टर प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे के बारे में। तो उनका जो लोक बिरादरी प्रकल्प हेमलकसा में है, वहां पे मैं काम करती हूँ।
0: क्या
1: और
0: बात है,
1: हाँ,
0: ये तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। ये हमने पढ़ा भी है उस बारे में और सुना भी है, और हमने उन उनके जीवन पर आधारित फिल्म भी देखी है।
1: जी,
0: आप क्या काम करती है वहां पर?
1: यहाँ मुझे जो प्राथमिक कक्षा की जो शिक्षिकाएं होती है उनके साथ मुझे सहायक शिक्षिका करके काम करने का अवसर मिला है। हाँ,
0: वहां जाने की इच्छा कैसे जागृत हुई आपके मन में?
1: पहले तो मैंने ये लोक बिरादरी के प्रकल्प के बारे में बहुत कुछ सुना था, बहुत कुछ मुझे पता था और पढ़ा भी था मैंने। ने प्रकाश बाबा आमटे ये फिल्म भी देखी थी जिसने मेरे मन पर गहरा प्रभाव डाला, और तभी से मेरे मन में बहुत इच्छा थी कि मुझे कुछ समय यहाँ आकर काम करने का अवसर मिले। तो मैंने उनसे पूछताछ की तो मुझे ये अवसर अभी मिला है।
0: तो कैसा लग रहा
1: और
0: है
1: यह
0: आपको वहां जाकर?
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का वातावरण बहुत शांत है और प्रकृति के करीब है। मुझे यहाँ बहुत कुछ सीखने का अवसर मिल रहा है और यहाँ का सेवा भाव और सादगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मूल्यवान है।

0: तो इसलिए मैं यहाँ बहुत खुश हूँ यहाँ आकर।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
0: जी
1: जब हम अपनी खुशी से जीते हैं, यानी अपने खुशी का
0: जी
1: काम करते हैं, तो उसमें हमें अलग ही आनंद मिलता है, और आज वो खुशी आपको महसूस हो रही है। तो यहाँ की
0: जी
1: शिक्षा के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे आप कि किस तरह से शिक्षा दी जाती है बच्चों को?
0: हाँ हाँ मैं जरूर दूंगी। मेरे विचार से यहाँ पे यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है और यहाँ पे बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है, ये वो केवल पुस्तकी ज्ञान नहीं होता है बल्कि बच्चों में आत्मविश्वास, स्वावलंबन और सामाजिक संवेदनशीलता निर्माण करना, ये भी यहाँ यही की शिक्षा का एक उद्देश्य है। तो यहाँ जीवनोपयोगी शिक्षा पर ज्यादा ये दिया जाता है, वो शिक्षा ज्यादा दी जाती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, ये प्रकृति के सानिध्य में बसा हुआ है, तो बच्चों को बहुत करीब से प्रकृति से जुड़ने का मौका मिलता है, नई नई चीजें सीखने का मौका मिलता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, और आपको भी वहां पर बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताइए, रेडियो कब सुनती हैं आप?
0: रेडियो में अच्छे, मैं यहाँ आई तब यहाँ पे टीवी वगैरह कुछ है नहीं, तो ज्यादातर मैं रेडियो सुनती हूँ और सखी सहेली ये कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी न्यूज भी सुनती हूँ, तो विविध भारती पुराने गाने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो रेडियो तो मैं सुनती रहती हूँ।
1: तो बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सारी जानकारी सुन के। तो बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: हमको मन की शक्ति देना, यह प्रार्थना गीत बहुत पसंद है और यह गीत फिल्म गुड्डी का है जिसमें जया बच्चन जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। गीत इसलिए पसंद है क्योंकि यह गीत हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।
1: तो यानी हमें मन से समृद्ध बनाता है ये गाना, तो मन के
0: या
1: हारे हार है, मन के जीते जीत, तो हमारे
0: हाँ
1: मन को हमेशा हमें मजबूत बनाए रखना है। तो चलिए
0: जी
1: जयश्री जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, तो सुनवाते हैं
0: हाँ
1: आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कल्पना ठाकरे बात कर रही थी।
0: कहाँ से फोन लगाया?
1: मैं तहसील जुन्नार देव, जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं पार्षद रह चुकी हूँ, मेरा पार्लर भी चलता है और महिला मोर्चा अध्यक्ष रह चुकी हूँ।
0: क्या बात है, यानी आप व्यस्त और स्वस्थ रहती है ना?
1: जी हाँ, जी।
0: और आज आपकी आवाज में खुशी झलक रही है। क्या पहली बार फोन लगाया आपका विविध भारती में?
1: हाँ, पहली बार ही फोन लगाया है और बहुत पहले से मैं प्रयास कर रही थी, लेकिन आज मेरा कॉल लगा। बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके।
0: चलिए, ये मैंने कहा ना, आपकी खुशी आपके आवाज में झलक रही है। वैसे कल्पना
1: हाँ
0: जी,
1: जी
0: हर किसी की खुशी की एक अलग परिभाषा होती है। तो यानी
1: जी
0: किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है, किसी को किसी चीज में खुशी मिलती है। तो आपकी खुशी की क्या परिभाषा है?
1: देखिए, खुद की खुशी के लिए तो हर कोई तत्पर रहता है। मुझे ऐसा लगता है मेरे कारण लोगों के जीवन में खुशियों के पल आए, इसलिए मैं आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए हर संभव काम करती हूँ। जानकारी देती हूँ उनको, उनके फॉर्म भरना, बैंक के काम कैसे करना उन्हें बताती हूँ।
0: ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात लगी आपकी कि आप दूसरों के चेहरे पर खुशियाँ लाने की कोशिश करती हो, जिसमें आप हर संभव प्रयत्न करती हैं कि उन्हें हर तरह से मदद मिले। तो इस बारे में
1: जी
0: हर कोई नहीं सोचता है, ये आपकी सोच बहुत अच्छी है और इसी सोच के साथ आप खूब आगे बढ़िए। अब बताइए, कौन सा गीत आप
1: जी
0: सुनना चाहती हैं?
1: संगीत का पहले से ही काफी शौक रहा है और यहाँ छोटे मोटे फंक्शन में भी मैं गा लिया करती हूँ। मैं अपनी एक खास सहेली के साथ अपने कॉलेज के दिनों में एक गाना गाया करती थी जो मेरी पुरानी यादों को ताजा कर देती है। मैं वही गाना सुनना चाहती हूँ, हंसता हुआ नूरानी चेहरा।
0: तो ये गाना
1: जी
0: गुनगुना के बताइए आप।
1: जी जी

0: तोबारे
1: ये गाना लता जी और कमल बारोट का गाया हुआ गीत है। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, कैसे हो? मंजू,
0: कौन सी सहेली ने फोन लगाया है हमें? मंजू जी, कहाँ से लगाया फोन?
1: हाँ जी, हरियाणा हिसार से।
0: हिसार हरियाणा से मंजू जी से बात हो रही है। बताइए मंजू
1: हाँ
0: जी,
1: जी,
0: क्या करती हैं आप?
1: मेरा सिलाई का काम है। हाँ
0: सिलाई का काम करती है, और सिलाई करते
1: जी,
0: करते रेडियो सुनती है।
1: हाँ जी, विविध
0: कौन से कार्यक्रम सबसे अच्छे लगते हैं आपको?
1: भारती के सुबह से लेकर शाम तक के चलते ही रहते हैं, सारे ही अच्छे लगते हैं।
0: सारे कार्यक्रम पसंद है। और जैसे कि महिलाएं दिन रात काम करती हैं, खुद की ओर ध्यान नहीं दे पाती। 21 तारीख को सभी ने विश्व योगा दिवस मनाया, विश्व संगीत दिवस हम सभी ने मनाया। तो आप योग
1: हाँ जी,
0: करती हैं, व्यायाम करती हैं?
1: थोड़ा बहुत बस घर के कर लेते हैं सुबह। ये
0: बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: कन्यादान पिक्चर का है, लिखे जो खत तुझे वो फूल बन गई।
0: जी, सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, बिहार
0: हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: पटना से इंदु चौबे।
0: इंदु जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: बढ़िया। या
0: बताइए, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: तो बहुत कुछ सुना लीजिए, पर अब तो निश्चिंत की जिंदगी है, जिम्मेवारी कुछ भी नहीं है, बस आराम से मजे से देश भारती सुनना, कुछ कुछ अपना किताबें पढ़ना, अपना दिनचर्या मेंटेन करना, लोगों से मिलना जुलना, बस ऐसी ही जिंदगी।
0: बहुत सुंदर जिंदगी जी रही हैं, यानी यूं कह लीजिए कि जिंदगी का बड़ी खूबसूरती के साथ लुत्फ उठा रही हैं, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ। और विविध भारती सुनती हैं आप?
1: बहुत बचपन से, जब
0: बचपन।
1: से मतलब गानों के प्रति शौक हुआ किशोरावस्था से, तब से।
0: और ये बताइए कि अभी हाल ही में हम सभी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, साथ ही संगीत दिवस मनाया, तो योग और संगीत का आपके जीवन में क्या महत्व है?
1: संगीत तो रच बस गया है, योग भी मैं करीब 10 साल से कभी कंटिन्यू, ऐसे तो मैं 20 साल से कर रही हूँ। मुझे साइटिका का अटैक हुआ तब से, मुझे उस समय योग नहीं करके एक्सरसाइज ही सिखाया गया, और मैंने 3 महीना उस तक कोर्स किया, और तब से मैं नियमित रूप से घर में या बाहर कहीं भी रहूं मैं जरूर करती हूँ।
0: ये बहुत अच्छी
1: और
0: बात आपने कही।
1: हाँ, प्राणायाम, अनुलोम विलोम, और आपको तो सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि मैं 10 साल से थायराइड से पीड़ित थी, और इधर 2 साल से मैं कोई थायराइड का दवा नहीं ले रही हूँ, मेरा वजन भी कम हो गया, और मैं अपना जो दिनचर्या है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उम्र के साथ तो आता ही है, लेकिन मैं आराम से डेली 20 मिनट वॉक करती हूँ।
0: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि योग ने आपके जीवन में कितने सारे बदलाव
1: हाँ
0: लाए, सकारात्मक बदलाव लाए, जिसके
1: जी जी
0: बदौलत
1: जी
0: आप तंदुरुस्त जीवन जी रही है। तो हर महिला
1: मुझे
0: को ऐसे ही करना चाहिए कि कितनी भी व्यस्त जिंदगी क्यों ना हो, योग को महत्व देना है, अपनी सेहत का हमें ध्यान रखना है। अगर हम अपना सेहत का ध्यान रखते हैं तो हमारा परिवार भी तंदुरुस्त रहेगा, और जब
1: जी जी
0: हम योग
1: बिल्कुल
0: करते हैं ना तो हमारा देखा सीखी बच्चे भी करते हैं, हमारे इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो भी तंदुरुस्त रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, और बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी। तो लंबे हाथ का प्यार की राह दिखा दुनिया में, रफी जी की आवाज में।
0: जी, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये
1: जी
0: गीत।

0: दुनिया को।
1: सखियों, आपकी बातचीत, आपके अनुभव दिल को छू गए। आपसे अगली मुलाकात होगी अगले मंगलवार सुबह 11 बजे से। तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस प्रकार हैं, 400-24662, फिर से 400-24662, दूसरा नंबर है 2867-0288, फिर से 2867-0288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 022। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि जिन सखियों के कॉल लग चुके हैं वे कृपया 2 महीने तक कॉल ना करें, ताकि अन्य सखियों को भी हमसे जुड़ने का मौका मिले। साथ ही सभी पुरुष श्रोताओं से एक नम्र विनती है कि आप हेलो सहेली में कॉल ना लगाएं। आपके कॉल के कारण फोन एंगेज हो जाता है और बहुत सारे सखियों के फोन नहीं लग पाते। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर है अनुश्री गुप्ता, संपादन नम्रता टिकोड़े का, हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता है अनुश्री पाठक। तो चलते चलते सखियों से कहेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए और विविध भारती सुनते रहिए। इसी के साथ आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार
2: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।

ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था। रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी। उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था, दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया कि कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थीं पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सोने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

सुंदर सांवली सलोनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़बुन में, इस असमंजस में,

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि 100 राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्क संगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थीं कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

करार था मेरे हाथों तू तू मैं हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमाल मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे तैसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे। उसके

0: लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं हुआ है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बना लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: ऐसी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती है, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल सुनो।
2: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, साही

0: डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर, सूरजपुर और रामानुजनगर में हाथियों की कुल संख्या 8 है। ये सरहरी, करंजवार, सिंगरा, कैराडांड, गणेशपुर, कल्याणपुर, कोटबहरा, घाघी टिकरा, सलका, मुड़गांव, शिवनगर, जनार्दनपुर, मेंढरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर, रघुनाथ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 6 है। ये चिनिया, महावीरगंज, कनकपुर, टकिया, शिवपुर, पेंडारी, कोटराही, कोल्हुआ, नवापारा, सोनहत, नवगई, गैना, अखोरा, कुंदीकला, जामदोहर, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के अंबिकापुर, लुंड्रा, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 11 है। ये कालो, किशुनपुर, घंघरी, कुल्हाड़ी, पड़ौली, जमीरा, मसगा, डांडपारा, चाउरपानी, बांसाझाल, आमापानी, घोघरा, मानपुर, दांतीढाब, गढ़गांव, बैगहवा, चोरकी पानी, कंडराजा, नर्मदापुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव, बगीचा और तपकरा में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, बिलासपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ामाचा, राजा आमा, महेशपुर, बालाझर, सोनगिरसा, बीजाघाट, सारूढाब, तेलाइन, माटी पहाड़, कोल्हेन, झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 108 है। ये कुड़ेकेला, पुरुंगा, छाल, बोजिया, औरानारा, बेहरामार, लोटान, कोयलार, सागरपुर, ढोढ़ा गांव, केदा टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के केंदई, जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर, कोयलार गढ़रा, परला, चोटिया, कापानवापारा, घुचापुर, बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, उकरी कादर, मड़ई, कोदवारी, कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बंगूरसिया, सपनई, जोबी, बरगढ़, नागदरहा, पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये गुड़ागढ़, फुरफुंदी, तालदादर, अचानकपुर, नवागांव, पकरीत, तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़, अमलोर, ताराजह, डडई पानी, बुडार, सिंहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: हमर हाथी हमर गोट, ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक बिलासपुर श्री रजनेश सिंह से की गई बातचीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं। भेंटकर्ता और प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन।

0: आज की इस विशेष भेंटवार्ता में श्रोताओं आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि नशा नाश की जड़ है। हमें पता है कि नशे से सर्वनाश शुरू होता है और धीरे धीरे परिवार, समाज और पूरे देश को ले डूबता है। लेकिन उसके बाद भी हमें कहीं से तो ऐसा लगता है कि हमारी किसी समस्या का समाधान नशे से हो सकता है, और इसी गलत फहमी में जब हम डूब जाते हैं नशे में, तब पता चलता है कि नशा समस्याओं को दूर नहीं करता बल्कि ढेर सारी समस्याओं को लेकर आता है। और यही सब सोचते हुए, पूरे विश्व की समस्याओं को देखते हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व मादक द्रव्य निरोध और अवैध तस्करी निरोध दिवस का आयोजन पूरे विश्व में हो रहा है, किया जा रहा है। लेकिन इस संदर्भ में हमारे अंचल के लिए और हमारे अंचल में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हम अपने अंचल में जो घट रहा है उससे निजात पाएं, लोगों को नशे से मुक्त कर सकें, एक जागरूकता ला सकें, इसीलिए आकाशवाणी बिलासपुर ने आज इस संदर्भ में यहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रजनीश सिंह जी को स्टूडियो में आमंत्रित किया है। सर, आज आप यहाँ हैं, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सुप्रिया जी।
0: सबसे पहले तो प्रश्न यही उठता है कि इस नशे के संदर्भ में ऐसी कौन सी बात हो गई है जिसने पूरे विश्व को हर साल एक दिवस या पखवाड़ा या सप्ताह के रूप में इसे जागरूकता अभियान के रूप में लेने के लिए बाध्य किया है।
1: देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं और देख रहे हैं कि नशा जो है वो समाज में, चाहे पूरे विश्व में अगर उसको देख लिया जाए, तो नशा एक गहरी पैठ बना चुका है
0: जी
1: लोगों में, विशेष तौर पर युवाओं में। और विभिन्न प्रकार के नशे पूरे विश्व में अलग अलग जगहों पर इस तरह से समाज को बर्बाद कर रहे हैं, तो इसी कारण से पूरे विश्व स्तर पर ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे के रूप में 26 जून को मनाया जा रहा है
0: जी।
1: जिससे कि लोगों को अवेयर किया जा सके। भारत सरकार ने भी 17 जून से लेकर 26 जून तक विश्व मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर एक नशा मुक्त अभियान ये चलाने का निर्णय लिया है। तो हम लोग भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि समाज में कैसे अवेयरनेस लाई जाए और कैसे नशे के खिलाफ लोग खड़े हो सकें। और वास्तव में नशा हर एक अपराध की भी जड़ है और पारिवारिक फैमिली में भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लाता है, तो निश्चित रूप से नशे का केवल और केवल नेगेटिव ही एस्पेक्ट है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सर। और कई प्रकार के नशे आज समाज में हो रहे हैं। हम जब मादक द्रव्यों की बात करते हैं तो वो एक अलग तरह की बात है, सिंथेटिक ड्रग्स हैं। हमारे यहाँ पारंपरिक नशे के बड़े सारे साधन उपलब्ध हैं, तो इनको हम कैसे समझें, नशे के ये सारे जो माध्यम हमारे पास उपलब्ध हैं और उसमें क्या खतरनाक इतना है, क्योंकि परंपरागत रूप से कई समुदाय, कई लोग कई प्रकार का नशा करते आ रहे हैं और उन्हें नहीं लगता कि वो कुछ खास गलत कर रहे हैं।
1: बिल्कुल सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। तो एक तो मोटी भाषा में हम समझ सकते हैं कि एक गीला नशा होता है, एक ड्राई नशा होता है। तो गीले नशे में आप सभी जान ही रहे हैं कि शराब है और भी चीज़ें हैं, बियर है और कई चीज़ें हैं। और ड्राई नशे में आपके सिंथेटिक ड्रग्स आती हैं, प्रेस्क्राइब ड्रग्स होती हैं और केमिकल कॉम्पोजिशन से बनाई हुई ड्रग्स हैं जिसमें MDMA वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं
0: जी।
1: बट साइंटिफिकली और मेडिकली हम देखें तो मैं आपको उसका टाइप बताना चाहता हूँ कि एक जैसे स्टिमुलेंट होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अपने प्रभाव डालते हैं, जिसमें कि कोकीन और एम्फेटामिन होता है, और ये व्यक्ति की ऊर्जा और सतर्कता में एक्साइटमेंट बढ़ाता है वो। और इसी तरीके से डिप्रेसेंट होते हैं, ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा कर देता है। और यहाँ पर आपके आप हम सभी जानते हैं जैसा कि प्रचलित नशा है, अल्कोहल है और नींद की गोलियां हैं
0: जी जी,
1: है ना, जो नाइट्रा और ये सब चीजें आती हैं। फिर आता है ओपियोइड्स आता है, ये पेन किलर होते हैं
0: जी।
1: इसको बच्चे ले रहे हैं, यूथ ले रहा है, जिसमें कि हीरोइन है, मॉर्फिन है, अफीम है, ये सब चीजें मेडिकल साइंस में पेशेंट्स के लिए, है ना, बीमारों के लिए बनाई जाती हैं। इसी प्रकार से एक होता है हेलुसिनोजेंस होता है, जो मतिभ्रम पैदा करता है। ये दवाएं व्यक्ति की धारणा है, मनोदशा है, उसको चेंज, उसमें चेंज ला देते हैं, मूड स्विंग कर देती हैं। तो जिस मनस्थिति में व्यक्ति होता है वो बढ़ती जाती है। अगर हंसता है, खुश है तो खुश हो जाएगा
0: जी,
1: और
0: जी, जी।
1: अगर डिप्रेस है तो डिप्रेस होता चला जाएगा
0: जी, जी, जी।
1: तो ये इस तरीके से होता है। कैनाबिनॉइड्स हैं, जो कि आप इनका इस्तेमाल भी मानसिक बदलाव का इसमें अनुभव होता है। तो इस तरह से जिसमें गांजा है, मारीजुआना है, कैनाबिस है, भांग है। फिर आता है इनहेलेंट, ये आसानी से मेडिकल और उसमें उपलब्ध हो जाता है, और ये रसायन होते हैं

0: जिसको कि आप देखते होंगे कि एडेसिव होते हैं, जो
1: जी जी जी
0: जिसको कि सूंघ कर
1: बिल्कुल
0: एंजॉय करते हैं
1: छोटे
0: लड़के,
1: छोटे
0: हाँ
1: बच्चों
0: छोटे
1: को
0: छोटे बच्चे
1: देखा
0: वो करते हैं।
1: जी
0: तो इस प्रकार से नशे के बहुत सारे आइटम हैं जो कि किसी उपयोग के लिए बनाए गए, उसका उपयोग नशे में किया जाने लगा,
1: दुरुपयोग हो रहा है,
0: दुरुपयोग करने लगे।
1: बहुत सही सर आपने बताया। और कौन सी एज ग्रुप है जो इस प्रकार के सारे नशों के लिए सबसे अधिक वल्नरेबल होती है, प्रोन होती है?
0: देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश के दुश्मन हैं, अर्थात कि मैं उन सबको दुश्मन मानता हूं कि जो नशे के सप्लायर हैं,
1: जी
0: जो ऐसे एज ग्रुप को टारगेट करते हैं, जो बच्चा अभी क्लास 9th 10th उस इस एज का टीनेज का है बिल्कुल अभी, और वो उस समय उसका माइंड ग्रो कर रहा होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, अगर वो पॉजिटिव की तरफ जाता तो पढ़ लिख के बहुत अच्छा होता,
1: बिल्कुल
0: उस समय उसके ब्रेन को डाइवर्ट किया जाता है, उसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट पैदा की जाती है और फिर वो धीरे धीरे नशा हो जाता है। तो ऐसे एज ग्रुप है जो कि 15 साल से लेके 25 के बीच वाले, और इसके बाद कई लोग जो हैं जो कामकाजी हैं उनको भी होटलों में, और अपने जब कामकाज से छूटते हैं फिर ऐसी जगह पार्टियों में जाते हैं फिर वहां पर ये लोग नशा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे कई इस प्रकार के एज ग्रुप हैं। तो मान लीजिए कि एक 15 से लेके 35 का एज ग्रुप जो है वो नशे में पूरा डूबा हुआ रहता है, और इस पे कंट्रोल होना बड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए काफ़ी कुछ रिहेबिलिटेशन सेंटर्स भी शासन
1: जी जी
0: बना
1: जी
0: रहा है,
1: जी
0: और डी एडिक्शन सेंटर भी हमारे यहाँ पे, यहाँ भी बिलासपुर में भी है।
1: सर ये कानून की बात करें, क्योंकि कानून व्यवस्था नशे को कंट्रोल करने के लिए काफी प्रभावी साबित हो रही है, लेकिन फिर भी समाज और परिवार और जो अन्य संस्थाएं उनके सहयोग से ही हम इस नशा मुक्ति अभियान को एक अंजाम दे सकते हैं, इसमें कोई
0: बिल्कुल
1: संदेह नहीं। तो एक जो एक्ट एनडीपीएस एक्ट है जो 1985 के करीब में आया था, ये एक्ट वाकई में क्या आज भी प्रभावी है? क्या इसके द्वारा जो आपका काम है इन रैकेट्स को तोड़ने का वो पर्याप्त हो पाता है?
0: बिल्कुल, ये बहुत प्रभावी एक्ट है, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस
1: जी
0: एक्ट है, 1985 में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया था। इसमें इसमें बहुत कड़ी सजा है,
1: जी
0: आपको मैं बताऊं कि इसमें इसमें अलग अलग क्वांटिटी के अगर सीजर होते हैं, तो जैसे कि कमर्शियल क्वांटिटी में यदि सीजर होता है तो उसमें 20-20 साल तक की सजा है,
1: मतलब आजीवन
0: तो
1: कारावास।
0: आजीवन कारावास है, और हैवी फाइन भी है, पेनल्टी भी है।
1: जी
0: तो निश्चित रूप से इस एक्ट में इतने कड़े प्रावधान हैं कि पुलिस को सिलसिलेवार जो कार्रवाइयां करना होता है बिल्कुल ओरिजिनल सही अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है उसके अनुसार कार्रवाई करना होता है, और बहुत सिंपल उसमें, जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सेक्शन 41 से लेके 46 तक और 52A
1: जी
0: एक और धारा उसमें जोड़ी गई है, तो उसके तहत हमें ये पूरी कार्रवाइयां करना होता है। और उसमें अभी हमारे जिले में करीब 22 से 23 ऐसे कल्प्रिट्स को 20-20 साल की सजा हमने 2 साल में दिला दी है
1: क्या
0: फर्स्ट
1: बात
0: ट्रायल
1: है।
0: में। हाँ
1: जी,
0: तो उसका प्रभाव तो अपराधियों में पड़ा है, और साथ ही साथ में हमने जो नशे की जड़ हैं जो सप्लायर्स हैं, इसमें दो चीजें हैं, देखिए एक सप्लाई चेन है और एक डिमांड चेन है।
1: जी
0: तो डिमांड रहेगी तो सप्लाई, तो पहले सप्लायर डिमांड क्रिएट करते हैं जो मैंने बता दिया एज
1: जी
0: ग्रुप
1: जी
0: को, फिर ये सप्लाई करते हैं। तो इसमें हो क्या रहा था कि शुरुआती दौर में हम लोग कार्रवाई उनको करते थे जो डिमांड वाले लेवल पे हैं,
1: जी
0: वो
1: जी
0: यूज कर रहे हैं और थोड़े थोड़े सामान को बेच रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी। लेकिन असली जो सप्लायर जो बाहर बैठे हैं, जो दूसरी जगहों पे बैठे हैं या थोक में कर रहे हैं या बड़े लोग हैं,
1: जी
0: उनके खिलाफ नहीं हो रही थी। तो हमने अभी इस पूरे नेक्सेस को तोड़ा है और उसमें सप्लायर्स के खिलाफ कार्रवाई की है, और उनको भी सजा हुई है। वो जो मैं सजा बता रहा हूँ उसमें 8-9 लोग वो भी हैं,
1: क्या
0: और
1: बात है।
0: करीब करीब 8.5 करोड़ की प्रॉपर्टी एनडीपीएस के तहत ही, एनडीपीएस की सेक्शन 68F2 में
1: जी
0: प्रॉपर्टी फ्रीज करा दी है, जब्त करा दी है कोर्ट से।
1: बहुत सही सर, और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये इस हमारे पुलिस प्रशासन के लिए यहाँ पर बिलासपुर में खासकर। और एक और बात जो है कि छत्तीसगढ़ अपने आप में बहुत सारे राज्यों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पहले छत्तीसगढ़ में इतना नशीली वस्तुओं के संदर्भ में सुनाई नहीं देता था, लेकिन अभी स्कूल के बच्चे हों, जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ड्रॉप आउट्स बच्चे हैं, जो ऐसी कॉलोनियों में रहते हैं जहां उन्हें कोई सुविधा उपलब्ध नहीं, वहां पर इस तरह के नशीले पदार्थों का कारोबार बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि किस तरह की जागरूकता या किस तरह का सहयोग समाज के सभी पक्षों की तरफ से आना चाहिए ताकि हम इस पर कंट्रोल कर सकें।
0: दो प्रश्न आपने इसमें किए हैं, एक तो हमारा स्टेट, हमारा

0: डिस्ट्रिक्ट जो है और स्टेट जो है वो
1: जी
0: सराउंडिंग में कई स्टेट से जुड़ा हुआ है, करीब
1: जी
0: सात छः सात स्टेट से जुड़ा है,
1: जी
0: जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है और कि ओडिशा जो कैनाबिस है, जो गांजा है, वो ज़्यादातर उड़ीसा से ट्रांसपोर्ट होता है। और जैसे किसी भी स्टेट में कहीं मंगाया जा रहा है, जो स्मगलर इसके लेके जा रहे हैं, तो वो ट्रांजिट रूट के रूप में हमारा उपयोग करते हैं बिलासपुर जिले का।
1: जी जी।
0: तो उस ट्रांजिट रूट पे हमने पकड़ा है अपने सूचनाओं के आधार पर, प्लस यहाँ जिन्होंने सप्लाई किया उनको पकड़ा है। तो निश्चित रूप से रूट का और स्टेट का जो हमें नेटवर्क पता चला है उसमें हम सब ने उड़ीसा में जहां से सप्लाई हुआ उनको एंड टू एंड कार्रवाई करके उनको भी इसमें बुक किया है।
1: बहुत बढ़िया।
0: तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने कहा कि जो एज ग्रुप है, जो बच्चों को, तो ये लोग ऐसे सॉफ्ट टारगेट ढूंढते हैं कि जैसे कॉलेज के पास में वो पता कर लेंगे कि किन बच्चे का क्या प्रॉब्लम चल रहा है। ये हर स्कूल हर कॉलेज में कुछ ना कुछ अपने आदमी बना के रखते हैं। और वो आदमी कैसे बनते हैं, क्योंकि पहले उनको नशे की भूख लगाई जाती है, फिर वो नशा पाने के लिए अपने दूसरे आदमी को ढूंढता है,
1: फंसाते हैं,
0: और फिर वो फंसाता है कि हाँ इसको प्रॉब्लम है, इसके इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, या पढ़ने में उतना स्ट्रांग नहीं है, या किसी यूथ जो फंस जा रहा है,
1: बिल्कुल
0: है ना, लिव इन में है, इसमें है, उसमें। तो ऐसे लोगों को टारगेट करते करते करते बहुत सारा एक नेटवर्क बना लेते हैं। तो इस तरीके से ये लोग समाज को, समाज
1: में बच्चों को, बिल्कुल सही। और ये जो सोशल मीडिया अभी है या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, कैसे ये एक्ट कर रहा है इसको बढ़ाने में, नशे की जो गतिविधियां उसको बढ़ाने
0: बिल्कुल
1: में।
0: इनके आप देखते होंगे कि सोशल मीडिया में एक से एक इनके ग्रुप हैं यूथ के, जिसमें कि वो बड़ी ही उत्सृंखलता दिखाते हैं और उनका पूरा नेटवर्क उससे चल रहा है। और फिर तो अभी तो डार्क वेब का जमाना है, डार्क वेब में आपको सारी चीजें आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पहुंच जाता है। अभी एक घटना हुई है यहाँ पर, जिसमें एक लड़के ने सोडियम साइनाइड मंगा लिया
1: जी जी।
0: भाई वो जो कि HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का, उसके राइटिंग से और उसके लेटर हेड पे मंगाया जाता है, और उसने मंगा लिया और उसको लेके सुसाइड कर लिया। तो ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए इजीली अवेलेबल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इनके जो सप्लायर हैं या जो जो तस्कर हैं ये लोग उसके माध्यम से भी ये करते हैं। तो मैं इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा बताना चाहूंगा, बोलना चाहूंगा कि अब हम लोगों को बहुत जरूरी है, और ये ऐसा समय आ गया है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। और जिस भी सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो एक तो पेरेंट्स उनकी जरूरतों के बारे में थोड़ा देखें। ऐसा नहीं कि वो कुछ भी मांग रहे हैं या कुछ भी उनकी डिमांड है तो तुरंत आपने पूरी कर दी, तो उनके अंदर एक आदत सी आ जाती है कि यार मेरे पापा या मेरे मम्मा जो है वो हम जो भी मांगेंगे तो कर देंगे
1: जी।
0: इसका परिणाम ये होता है कि फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे पैसों की मांग करते, क्योंकि अब वो कहीं ना कहीं वो पैसे खर्च होते हैं, इसमें मोटी रकम खर्च होती है
1: जी।
0: तो हमें ये देखना चाहिए कि उसकी छोटी छोटी भी डिमांड जो है उसको बड़ी कसौटी पे करके उसको पूरी करना चाहिए। तो एक तो ब्रेक वहां लगाया जा सकता है। तो थोड़ा सा बच्चों के साथ कम्युनिकेशन जरूरी है कि प्रतिदिन कम से कम एक टाइम जरूर उनसे बातचीत करें, जिससे कि उनकी इमोशनल जो थिंकिंग है या जो उनका मेंटल हेल्थ जो है वो स्ट्रांग रहे।
1: बिल्कुल,
0: उसी से हम लोग बच्चों को और स्ट्रांग कर सकते हैं या यूथ को कर सकते हैं।
1: बहुत सही सर। और अभी अभी आपने बहुत सारे अपराधियों को संगठित रूप से पकड़कर चेतावनी दी है, उसमें से 75% से भी ज्यादा लोग नशे में लिप्त लोग हैं, तो नशा किस प्रकार से अपराधों से जाकर जुड़ जाता है?
0: बिल्कुल, जैसा मैंने आपको बताया अभी कि नशे का जो हमारे शारीरिक और मानसिक प्रभाव होता है
1: जी,
0: उसके अनुसार वो व्यक्ति अब रिएक्ट करने लगता है, उसका अपने पे नियंत्रण नहीं रहता। जो उस नशे का प्रभाव है यदि उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बहुत एक्टिवेट कर देगा, तो वो उस उत्तेजना में अगर छोटा सा गुस्सा करता है वो, तो वो गुस्से का स्वरूप बहुत बड़ा हो जाएगा और बड़े होने पर वो कुछ भी कर सकता है, उसी में हत्याएं होती हैं। तो हमने तो एक लड़के को जब पकड़ा था जो कि इस तरीके का नशा करता था, ये उत्तेजक स्टिमुलेंट जो है
1: जी जी,
0: तो उससे जब हमने पूछा कि तुम ये नशा करते हो तो कैसा लगता है, मर्डर किया हुआ था उसने, तो बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रक से टकरा जाऊंगा तो ट्रक दो टुकड़े हो जाएगा मेरे से टकरा के। सोचिए तो कितनी बड़ी चीज उसके। हाँ, तो ऐसी उत्तेजना है। तो इसका इस कारण से नशा जो है अपराध से जुड़ जाता है। और जो लड़के जिन्होंने क्राइम कर रखे हैं उनको हमने थोड़ा समझाने की भी कोशिश की, और उनके पेरेंट्स को भी मैं ये मैसेज देना चाहता था, आपने ये जो चीजें नहीं की हैं हमारे काम तो कानून का पालन करना है, करवाना
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन फिर भी हमने थोड़ा सा उनको ह्यूमन

0: टच की दिया कि आप देखो जो भी आज जिस स्थिति में हो वो सिर्फ नशे के कारण है, और नशा छोड़ोगे तो निश्चित रूप से ये स्थिति आपकी बदलेगी, और उसमें मैं मदद करूंगा, मैं आपको रिहैबिलिटेट कराऊंगा, आपके नशे को छोड़ने के लिए आपको ऐसे सेंटर्स पे हम लोग भिजवाने का कोशिश करेंगे, और हमारे यहाँ बिलासपुर में भी अवेलेबल है। तो इस तरीके से प्रयास हमको हर स्तर पर करना है, और अगर मान लीजिए कि 5% 2% भी छूटता है तो हमारी सफलता है उसमें।
1: बहुत बड़ी बात है सर। और अभी आपने जैसा रिहैबिलिटेशन की बात की, मैं अगला प्रश्न वही पूछना चाह रही थी कि एक बार नशे की गिरफ्त में आने के बाद, जैसा आपने बताया कि उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता, जो कुछ भी है वो नशा ही चढ़कर सिर से बोलता रहता है, तो ऐसे बच्चे अपराधी कम बल्कि बीमार ज्यादा माने जा सकते हैं, या उस उम्र के लोगों के लिए एक सजा देने बस से तो उसका समाधान नहीं हो सकता, तो उनके लिए समाज, परिवार और हम सबको मिलकर किस प्रकार के प्रयास करने चाहिए?
0: उसमें सबको आना चाहिए, पेरेंट्स को तैयार होना चाहिए, सोसाइटी को तैयार होना चाहिए कि सोसाइटी या पेरेंट्स अपना हाथ पल्ला झाड़ दे कि नहीं यार अब तो ये सुधर ही नहीं सकता
1: जी,
0: तो उससे बात नहीं बनेगी। उसका इलाज भी कराना है, उसकी काउंसलिंग भी कराना है, हर स्तर पर उसको हमको देखना होगा। ऐसे लोग जो चूंकि वो अपने से नहीं कर पाते हैं, इसलिए क्योंकि वो मानसिक रूप से वो कमजोर हो जाते हैं
1: जी जी,
0: तो जब भी उन्हें नशा छोड़ने के लिए ऐसा ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वहां पर कोई ना कोई एक्सपर्ट होना चाहिए, कोई ना कोई काउंसलर होना चाहिए, क्योंकि उस नशे को छोड़ने से उनके मानसिक और शरीर पर भी फिर से प्रभाव पड़ता है बड़ा, और उसकी क्रेविंग होती है, और उसके कारण से फिर वो नशा चाहते हैं, तो उसके एंटीडोट्स जो होते हैं उसको देने पड़ते हैं, और इस तरीके से मेडिकली उनको तैयार किया जाता है, और साइकोलॉजिकली और फिजिकली दोनों उनके अंदर इम्प्रूवमेंट हुई चाहिए होता है।
1: बहुत सही, मतलब कुल मिलाकर अभिभावकों से शुरू होती है बात, अपने बच्चों को सही ढंग से परवरिश करना है, उनके ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि नया जमाना बहुत अलग है, इतना कुछ एक्सपोजर है बच्चों के सामने। बहुत सारी बातें आज आपसे की, बहुत कुछ बचा भी रह गया, लेकिन फिर भी इन सारी बातों को समेटते हुए आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: निश्चित रूप से मैं सबसे पहले आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि नशा बुराइयों की जड़ है, और न केवल पहले तो बुराई कहा जाता था, आज वही बुराई आज समाज का सबसे बड़ा कलंक बन गई है। हर व्यक्ति, हर बच्चा छोटे बच्चे के रूप में पैदा होता है, और उसी में से एक साइंटिस्ट बनता है, उसी में से एक अपराधी बन जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो उसके पीछे यदि जड़ ज्यादातर नशा दिख रही है, तो हम सबको इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए कि समाज में हम नशा नहीं होने देंगे, समाज में हम किसी भी प्रकार का नशा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ये तभी जाकर हम सोसाइटी में एक शांति व्यवस्था, पूर्ण रूप से बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे।
1: बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें आज आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंची हैं, और वाकई में यदि परिवार, समाज और हम सब मिलकर ये निर्णय ले लें कि हम नशे की इस प्रवृत्ति पर रोक लगाएंगे और नशा मुक्ति के इस अभियान में अपना पूरा सहयोग देंगे, तो ये जागरूकता आएगी और हम अपने बच्चों को एक अच्छा देश, एक अच्छा भविष्य दे पाएंगे, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। आज बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और DIG साहब श्री रजनीश सिंह जी आकाशवाणी बिलासपुर में इस विषय पर बातचीत करने के लिए मौजूद थे। आपने अपना समय हमारे कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
2: अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य और अवैध तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर आपने सुनी बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप महानिरीक्षक श्री रजनेश सिंह से ली गई विशेष भेंटवार्ता। भेंटकर्ता और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय संध्या के 5:25 हुए हैं। पेश है चित्रपट संगीत।

चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आपने सुना फिल्म दयावान का ये गीत। आवाजें थी अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की। अजीज क्वैसी ने गीत लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कार्यक्रम में आगे अब सुनते हैं लता मंगेशकर के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, आर डी बर्मन का संगीतबद्ध किया बेमिसाल फिल्म का ये गीत।

बेमिसाल फिल्म के इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम युवा जगत।

हेलो नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति साहू। दोस्तों, जून अपनी डायरी का आखिरी पन्ना पलटने ही वाला है।

और अभी आसमान में छाए बादल मानो ऐसा कह रहे हों, चलो कुछ पुरानी यादों से फिर मुलाकात कर लेते हैं। पहली बारिश की हर बूंद अपने साथ कोई न कोई कहानी, प्यारी मुस्कुराहट या किसी अपने की याद जरूर ले आती है। मिट्टी की वो भीनी सी खुशबू, बारिश में भीगती गलियां, गर्मा गर्म चाय और बचपन की वो कागज की नाव। हाय, कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हर बरसात के साथ फिर से जी उठती हैं। लेकिन ये खूबसूरत एहसास और बारिश हमें सिर्फ यादें ही नहीं, एक जिम्मेदारी भी सौंपती है। हर बरस गिरने वाली ये अनमोल बूंदें हमें याद दिलाती हैं कि अगर आज हमने पानी को सहेजना नहीं सीखा, तो आने वाली पीढ़ियां शायद इन फुहारों का सुख, नाव को पानी में बहाकर छपाक करने की खुशी उतनी सहजता से महसूस नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमने किया है। तो ये जिम्मेदारी तो सबकी है, और जब युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं तो वे सिर्फ अपने सपनों को ही नहीं, समाज के भविष्य को भी नई दिशा देते हैं। तो दोस्तों, आगे हम और भी बातें करेंगे, आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और उदित जी के आवाज़ों में फिल्म दिल तो पागल है का गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है उत्तम सिंह जी ने।

दोस्तों, हर किसी की ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ ज़रूर आता है जहाँ परीक्षा होती है उसके सपनों की, हौसलों की और धैर्य की भी। कुछ लोग मंजिल तक पहुँचने से पहले हार

लेते हैं और कुछ चुनौती को अपनी ताकत बना लेते हैं। इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं क्रम मेरी बारी में CGPSC में रैंक 51 हासिल कर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पर चयनित आर्यन राठौर जी से उनकी तैयारी, स्ट्रैटेजी और अनुभवों के बारे में हुई रोचक बातचीत।

0: दोस्तों, क्रम मेरी बारी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, क्रम मेरी बारी में हम बात करते हैं उन युवाओं से जो अपने मेहनत, जुनून और लगन से अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ मौजूद हैं आर्यन राठौर, CGPSC रैंक 51 होल्डर। आइए जानते हैं उनकी सफलता की जर्नी, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, उनका एक्सपीरियंस कि किस तरीके से उन्होंने काम किया, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की और अभी वो किस जगह पर हैं। तो चलिए बिना देरी किए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार।
1: नमस्कार मैम।
0: तो आर्यन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे साथियों को अपने बारे में बताइए।
1: सबसे पहले सभी लिसनर्स को नमस्कार। मेरा नाम आर्यन राठौर है। मैं जांजगीर चांपा जिले के तहसील सारा गांव का निवासी हूं। मैंने अपनी स्कूली जो पढ़ाई है वो जांजगीर चांपा जिले के मैंने पूरी की। फिर मेरी ग्रेजुएशन जो है वो लॉ में BA LLB मैंने गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से कंप्लीट की, बिलासपुर से। उसके बाद फिर 2023 से मैंने CGPSC की तैयारी शुरू की, जो कि मेरे लिए बहुत एक नया अनुभव था। तैयारी करते करते जो 23 का CGPSC का एग्जाम था उसमें मैंने अपना पहला प्रयास दिया, जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ पर कुछ नंबरों से मेरा मेंस रह गया। फिर दूसरा प्रयास दिया मैंने 2024 PSC में, जिसे मेरी सिलेक्शन हो गई और 51वां रैंक मुझे हासिल।
0: आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो।
1: धन्यवाद मैम।
0: तो आप भी ये बताइए कि आपको CGPSC के फील्ड में जाने की प्रेरणा कहाँ से मिली, मतलब आपको ऐसा कभी लगा कि हाँ मुझे यही करना है?
1: CGPSC स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो CGPSC के बारे में मुझे कोई खास बहुत जानकारी थी नहीं, जब मैं खास करके जब मैं अपने स्कूल डेज में था। मैं अपने ग्रैंडफादर के साथ काफी अटैच था, बचपन से उनके साथ रहा और वो रिटायर्ड रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक थे, राजस्व विभाग में ही थे। तो वो अक्सर बताया करते थे कि उनके सीनियर नायब तहसीलदार होते हैं, उनके सीनियर तहसीलदार होते हैं, डिप्टी कलेक्टर SDM के बारे में बताया करते थे, उनके पावर्स के बारे में बताया करते थे। स्पेशली जब उनको वो साहब करके मेंशन करते थे तो काफी एक अट्रैक्शन होता था कि ऐसे भी कौन से दायित्व हैं जिनको, मतलब मैं जिनको दादाजी बोल रहा हूँ वो उनको साहब बोल रहे हैं। तो काफी फैसिनेटिंग लगता था कि क्यों ना इसी को ट्राई किया जाए। 11th 12th में मैंने कॉमर्स लिया। स्कूल लाइफ में भी अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो पढ़ाई में थोड़ी रुचि कम होने के कारण थोड़े नंबर कम आते थे, 10th में थोड़े कम थे, 12th में भी थोड़े कम थे बोर्ड्स में। घर वालों ने ये सोचा कि अगर पढ़ाई ठीक नहीं है तो कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे मिनिमम तो चल ही जाए। उसके बाद फिर जब कॉलेज की बारी आई तो मेरे फादर एडवोकेट हैं, वकील हैं वो, तो उन्होंने बोला कि अब मैं वकील हूं तो लॉ कर लो, मेरे अंडर ही तुम प्रैक्टिस कर लेना। तो ये सोच के मैंने BLLB किया। 5 साल का जो मेरा BLLB था वो एक हिसाब से मेरे लाइफ का थोड़ा टर्निंग पॉइंट था, जहां पर काफी बाहर के एक्सपोजर मिले मुझे। उन 5 सालों में काफी अलग अलग ऑफिसर्स के साथ इंटरेक्शन हुआ, चाहे कॉलेज से हो या कॉलेज से बाहर हो। ग्रुप्स ऐसे बने जिसमें कुछ कुछ ऑफिसर्स और कुछ CGPSC एस्पिरेंट्स भी इन्वॉल्व थे, जिनके माध्यम से मुझे CGPSC के बारे में पता चला। इसके पहले मुझे सिर्फ और सिर्फ UPSC के बारे में पता था। हालांकि पोस्ट मुझे पता थे कि तहसीलदार होता है, नायब तहसीलदार, लेकिन एग्जामिनेशन जो है वो उसकी उतनी खास जानकारी नहीं थी। जब जानकारी मिली CGPSC के बारे में तो जो कॉलेज का मेरा 5 साल था वो तो कोरोना का लॉकडाउन भी आ गया, तो उस कारण से कुछ खास पढ़ाई कॉलेज में नहीं हो पाई और साथ ही साथ तैयारी भी नहीं हो पाई। कॉलेज खत्म होने से कुछ टाइम पहले एक दो जो टीचर्स थे ऑनलाइन जो पढ़ाते थे उनका मैंने वीडियोस देखा और कोशिश किया कि किसी एक ऐसे इंसान से मिलूं जो थोड़ा गाइड कर दे इस फील्ड में। तो लकीली एक दो टीचर्स ऐसे मिले और एक दो सीनियर्स ऐसे मिले जो इस फील्ड में थे, तो उन्होंने इसके बारे में बताया कि बहुत अच्छा मौका है CGPSC जो देता है और इससे हम राज्य प्रशासनिक सेवा में एंटर कर सकते हैं।
0: ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग आपकी कहानी और जर्नी रही है। जैसे हम स्कूल में कैसे रहते हैं, फिर ग्रेजुएशन में, फिर ग्रेजुएशन के बाद, हर फेज अलग होता है और हर फेज में हम क्या सीख रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। तो आर्यन जी, आप ये बताइए कि आपने ग्रेजुएशन लॉ से किया है तो उस पे सिविल जज का तैयारी ना करके आपने फिर सिविल सर्विसेज क्यों चुना?
1: दरअसल अगर देखा जाए तो मेरे पिताजी की काफी इच्छा थी कि मैं सिविल जज की तैयारी करूं, क्योंकि वो भी वकील हैं और कॉलेज के आखिरी आखिरी टाइम के आते तक ऐसा हो गया था कि मैं पढ़ने लग गया था, एक छोटी सी उम्मीद उनके में आ गई थी कि कुछ तो कर लेगा। तो उन्होंने काफी इंसिस्ट किया था कि सिविल जज की तैयारी कर ले, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगा, काफी लोग हो सकता है इसमें बिलीव ना करें, लेकिन मुझे ऐसा बिलीव हुआ कि सिविल जज का जो काम होता है वो काफी मोनोटोनस होता है, एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को या एक ही एरिया में ज्यादा होता है, चाहे वो जस्टिस प्रोवाइड करना हो, ऑल्दो बहुत नोबल काम है, उससे बड़ा मैं मानता हूं कि कोई काम हो नहीं सकता अगर कोई किसी इंसान को न्याय दे रहा है। मेरा इंटरेस्ट जो है वो पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन और थोड़ा डायनेमिक था कि मुझे फील्ड

0: सिर्फ ज्यादा पसंद थे, रेदर देन मैं कोर्ट रूम में बैठ के फैसले दूं, तो फील्ड में जाके पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करना और लोगों से डायरेक्ट इंटरेक्ट करना। तो मेरा ये मानना था कि मैं जितना हो सके लोगों से ज्यादा मिल सकूं। काफी इंटरेक्टिव रहा है मेरा बिहेवियर शुरू से ही, खास करके बहुत अच्छा विभाग मिला जिसमें बच्चे और जो अंडर प्रिविलेज्ड औरतें हैं उनकी मैं सहायता कर सकता हूँ। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती कि जो मैं चाहता था वो मुझे मिल गया। तो यही मेरा इंटेंशन था कि डायरेक्ट सोसाइटी में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो अपने स्तर पर जो मैं योगदान दे सकता हूँ वो मुझे देना था, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को ऑप्ट किया।
1: काफी अच्छा सोचा है।

0: डायरेक्ट सोसाइटी में मैं कंट्रीब्यूट कर सकूं, तो अपने स्तर पे जो मैं योगदान दे सकता हूँ वो मुझे देना था, तो इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को ऑप्ट किया।
1: काफी अच्छा सोचा है आपने और सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आप ये बताइए कि आपने CGPSC में कैसे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाई, क्या डिसिप्लिन फॉलो किया?
0: मैं मानता हूँ मैम कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, तो शुरू से जैसे ही मैंने तैयारी शुरू की थी तभी से एट्रीब्यूट्स अपने अंदर लाने शुरू किए कि अगर मैं कल ऑफिसर बन जाता हूँ तो मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मुझे कैसे लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए। अब बीइंग अ कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट हमको उतने फॉर्मल वेज पे बात करना उतना खास नहीं आता, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये थोड़े एट्रीब्यूट्स और थोड़े हैबिट्स अपने अंदर लाना जिससे हम अपने आप को प्रेजेंटेबल बना सकें, तो वही एक डिसिप्लिन का माध्यम साबित हुआ। और बस ये कि रोज़ सुबह उसके टारगेट बनाता था कि आज इतने सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं और कोशिश करता था कि वो कंप्लीट हो, यही एक डिसिप्लिन का माध्यम रहा। पहला अटेम्प्ट मेरा 2023 में जो हुआ था उसमें प्रिलिम्स मैंने निकाला था और काफ़ी अच्छे नंबर से निकल गया था, तो एक कॉन्फिडेंस आ गया था कि शायद मेंस भी हो जाए। इस गलती में कुछ सब्जेक्ट्स मेरे से इग्नोर हो गए जिसमें से एक साइंस भी है, तो मैंने बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे तैसे तैयारी की, तो उस साल का मेंस मेरा रह गया। नेक्स्ट ईयर मैंने थोड़ा साइंस को ब्रशअप किया और उसके बाद फिर दूसरे अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया।
1: तो जैसे आप बता रहे हैं कि आपका पक्का था कि मेंस हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, तो जब नहीं हुआ तब मेंटल स्ट्रेस आया होगा, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया?
0: काफ़ी मेंटल ब्रेकडाउन पीरियड होता है ये, अपने लिए भी और परिवार के लिए भी। फैमिली पहली बार मुझे इतना पढ़ते हुए देख रही थी और 12-12 घंटे पढ़ना, लाइब्रेरी मैं इनफैक्ट गर्मी के दिनों में लाइब्रेरी में ही गद्दे डाल के सो जाते थे हम लोग, तो दिन भर लाइब्रेरी में रहना, रात में लाइब्रेरी में ही सो जाना, डेस्क पे ही सो जाना बैठे बैठे, तो घर वाले भी परेशान होते थे कई बार कि इतना ज़्यादा मत कर, थोड़ा रूम में रह लिया कर, एटलीस्ट सोने के लिए तो रूम चल दिया कर। घर वालों को भी काफ़ी उम्मीद थी इस चीज़ को लेके कि इतना अगर पढ़ रहे तो हो तो जाना चाहिए, क्योंकि घर वालों ने मेरा ये रूप कभी नहीं देखा था कि मैं इतना भी पढ़ सकता हूँ, मैं अपने पोटेंशियल को इतना एक्सटेंड कर सकता हूँ। तो जब नहीं हुआ तो उनको भी काफी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ, उनको भी बुरा लगा और मुझे तो बुरा लगा ही था क्योंकि मैं तो सबसे करीब से देख रहा था। लेकिन फिर भी मेरा मानना यह था कि बुरा लगना कोई सॉल्यूशन नहीं है, कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं ये सोचते रह जाऊंगा कि नहीं हुआ नहीं हुआ, तो अगले साल भी शायद नहीं होगा। अगले दिन सुबह मैं लाइब्रेरी गया, लाइब्रेरी जाके सबसे पहला काम मैंने ये किया कि मैं कॉपी पेन लेके बैठा, ब्लैंक पेपर और पेन, और मैंने फाइंड आउट किया कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। लकीली मुझे 2-3 प्रॉब्लम्स मिले और मेरे कुछ सीनियर्स भी थे, प्रीवियस ईयर टॉपर्स भी थे CGPSC के, उन्होंने भी काफ़ी गाइड किया, उनको मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो उन्होंने भी बताया कि ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम्स है और इसको ओवरकम किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता चल रहा है कि आपके में प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्रॉब्लम्स ढूंढ नहीं पाते और वो उसी लूप में फंस जाते हैं। मुझे प्रॉब्लम्स पता चली फिर वही कि ब्रेकडाउन का जो पीरियड था वो इतना जल्दी स्किप हुआ क्योंकि मुझे मेरे प्रॉब्लम्स मिल गया और मैंने उसके लिए वर्क करना स्टार्ट कर दिया, और ऊपर से अगले प्रीलिम्स के लिए टाइम भी बहुत कम था, तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं उदास रहूंगा तो शायद ये प्रीलिम्स भी अटक जाए, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके फिर वही साइंस वगैरह मैंने कवर किया और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया।
1: ना मेंटली स्ट्रांग होना कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपनी गलतियों को ढूंढें फिर उसे सुधार के तुरंत काम करें, तो हम उसे ओवरकम भी कर सकते हैं। आप बताइए कि आपने कोचिंग किया या सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान दिया?
0: जैसा मैंने बताया कि कोचिंग शुरू में कुछ दिनों के लिए मैंने किया था क्योंकि मेरे आसपास उस समय शुरू के समय में मेरा कोई एनवायरमेंट ऐसा नहीं था जिसमें PSC से रिलेटेड कोई लोग रहे, गिने चुने लोग थे लेकिन वो भी अपने काम में व्यस्त थे, और कोचिंग मेरे लिए इसलिए थोड़ा जरूरी था शुरू में क्योंकि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स को जैसे जो वेग सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको एक लिमिट में पढ़ना होता है, और साथ ही साथ सिलेबस हमारा इतना बड़ा है कि उसको खुद से कवर कर पाना ये थोड़ा मुश्किल है, तो कोचिंग एक ऐसा माध्यम बनता है जो आपको एक सीमित रूप में पढ़ने के आपको तरीके बताता है। शुरू में मैंने ज्वाइन किया था कुछ महीने और उसके बाद फिर जैसे ही समझ में आया कि इन सब्जेक्ट्स को इतना पढ़ना है, एक बार एक बेसिक नोट्स बन गए, उसके बाद फिर कोचिंग की वैसी कुछ खास जरूरत महसूस नहीं हुई, उसके बाद फिर मैंने खुद से ही तैयारी की रूम में रह के और लाइब्रेरी जाके।
1: अभी जो हमारे युवा साथी हमें सुन रहे हैं, तो आप उसे ऐसा बता सकते हैं कि कोचिंग एकदम मैंडेटरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो खुद सेल्फ प्रिपेयर करके भी कर सकते हैं।
0: हाँ बिल्कुल, कोचिंग की ऐसी कोई खासा आवश्यकता होती नहीं है, अगर आप चाहें तो आजकल तो मैम फ्री में इतना कुछ अवेलेबल है, आप यूट्यूब देख लीजिए, आपको ऑनलाइन कंटेंट मिल जाएगा, हर चीज मिल जाएगी आपको, तो कोचिंग की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है।
1: तो जैसे आप बता रहे हैं आपका बैकग्राउंड रहा है, आपने स्कूलिंग कॉमर्स किया, फिर ग्रेजुएशन भी लॉ से पढ़ाई की है, फिर CGPSC में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो आर्ट्स का तो कोचिंग के थ्रू आइडिया मिल गया, जैसा आपने बताया फर्स्ट अटेम्प्ट में साइंस के कारण ही ब्रेकडाउन हुआ था, तो फिर अपने सेकेंड अटेम्प्ट में कैसे उसे ओवरकम किया?
0: वही मैं जो आपको बताया कि प्रॉब्लम फिगर आउट करना सबसे जरूरी होता है, तो वही जब मैं प्रॉब्लम अपनी फिगर आउट करने लेके बैठा तो समझ में आया कि साइंस एक काफी बड़ा हर्डल था मेरे लिए, क्योंकि शुरू में भी जो मेरे मैंने बताया नंबर मेरे जो कम आते थे वो साइंस के कारण ही आते थे, तो साइंस और मैथ्स ये दोनों मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट था। मैंने नोटिस किया कि इन पे फाउंडेशन लेवल पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। एक दिन कैजुअली लाइब्रेरी से निकला तो सामने एक पोस्टर दिखा, सर है प्राइवेट ट्यूटर है, बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल वाले, तो उनका मैंने नंबर निकाला, मैंने उनको बताया अपने कंसर्न, तो

0: बोला कि आके मिलो मुझसे, तो मैं गया उनसे मिलने। तो मैंने उनसे बहुत इंसिस्ट किया कि सर मेरी जो प्रॉब्लम है वो फाउंडेशनल लेवल पे है। अगर बायो की टर्मिनोलॉजी में बोलूँ तो सेल बस पता था, सेल के अंदर क्या होता है, सेल के बाहर क्या होता है, ये सब की कोई जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे कि अच्छा चलो ये बताओ क्या होता है, ये बताओ क्या होता है। तो एक दो क्वेश्चन मुझे पता थे जिसके मैंने आंसर लिख के दिया, तो उन्होंने उनको लगा कि तुम आंसर तो लिख ले रहे हो अच्छा, बस तुमको कंटेंट की जरूरत है, कंटेंट के लिए तुमको पढ़ना तो पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि एक सीट खाली है। अब वो एक बैच था जिसमें क्लास 5th और क्लास 6th के बच्चे आते थे, उनका जॉइंट बैच था वो। तो बच्चे पहले सुन के मुझे आइडिया नहीं था कि वो पांचवी और छठवीं की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला बच्चों की एक बैच खाली है जिसमें तुम आ सकते हो। तो मैं बोला बिल्कुल सर, आप जब बोले मैं तब आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला अगर तुमको झिझक ना हो तब तुम आना। तो मैं बोला सर इसमें ऐसी झिझक वाली क्या बात है, पढ़ाई करना है। तो पांचवी और छठवीं के क्लास के बच्चों के साथ मैंने बैठ के पढ़ना चालू किया। दो तीन लोग वहां भी मेरे दोस्त बन गए, छोटे छोटे बच्चे, उनके साथ बैठ के पढ़ता था डायग्राम। एक बच्चे ने मुझे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनाना सिखाया था, वो 7th का था शायद, 7 या 8th का। स्टोमेटा का डायग्राम बनाना सिखाया था उसने मुझे। तो वहां भी इनफैक्ट मैं सिलेक्शन के बाद उन बच्चों के पास भी गया था, वो लोग भी काफी खुश थे। उनका कहना यह था कि हमारे बैच से कोई अधिकारी बन गया, हमारे बैच से मतलब 6th क्लास के बैच में बैठ के। वो लोग मेरे को आश्चर्य भरी नजरों से देखते थे कि भैया आप क्यों पढ़ रहे हो, आपको क्या जरूरत है। वो भी एक अच्छा अनुभव था जिससे साइंस मेरा काफी बिल्डअप हुआ। और नेक्स्ट ईयर साइंस में 86 नंबर आए जो मेरे हिसाब से ठीक थे, और उस साल का पेपर भी थोड़ा अनकन्वेंशनल था, तो इस हिसाब से ठीक नंबर आ गए।
1: जी, काफी मजेदार थी आपकी ये जर्नी, और कितना इंस्पायरिंग है उन बच्चों के लिए जो आपके साथ बैठ के पढ़ रहे थे, नहीं सॉरी, आप उनके साथ बैठ के पढ़ रहे थे।
0: काफी खुश हुए थे इस स्तर पे, अगर तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो मेरे स्तर पे तुमको यहाँ नहीं आना पड़ेगा। और मैंने सुना कि अच्छे रिजल्ट भी आए उनके, तो हो सकता है उनके अच्छे रिजल्ट में मेरा भी 1% कंट्रीब्यूशन हो।
1: सही है, फिर वो आगे मेहनत करेंगे। अब आप बताइए कि आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ तो करते रहे होंगे शांति के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो इसके बारे में बताइए।
0: मेरा जो ट्रांजिशन था वो बहुत क्विक था। 2023 तक मैं कॉलेज का लड़का था, अचानक से मैंने स्विच करके अपने पूरे कॉलेज और अपने पूरे करियर से अलग एक कॉन्ट्रास्टिंग करियर पाथ है वो मैंने ऑप्ट किया। तो हॉबी डेवलप करने का ऐसा कोई टाइम नहीं मिला, फिर भी पॉडकास्ट सुनना मुझे अच्छा लगता था, काफी नॉलेजेबल थिंग्स वो बताते हैं जो इनडायरेक्टली आपके आंसर राइटिंग मेन समझो आंसर लिखते हैं उसमें भी काफी कुछ उसका हेल्प होता है। तो पॉडकास्ट सुनना हो गया, या ट्रैवलिंग वीडियोस देखना मुझे बहुत पसंद था। मतलब ऐसा होता था कि जब पढ़ते पढ़ते जब एक थ्रेशोल्ड टच कर देते थे, एक फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, तो उसके बाद फिर उसे काफी रिलैक्सिंग फील होता था।
1: तो ट्रैवलिंग का वीडियोस देखते ही हैं कि ट्रैवलिंग का शौक भी है?
0: शौक तो काफी है मैम ट्रैवल करने का, लेकिन तैयारी के दौरान समय मिल नहीं पाया। उस समय संसाधन भी नहीं थे और समय भी नहीं था। अब शायद संसाधन आ जाए तो समय ना मिल पाए, फिर भी कोशिश करेंगे सैटरडे संडे वीकेंड जब भी हो।
1: अभी तक आपने ये सब किया है, मतलब आपने सारी चीजों को मैनेज करना सीख लिया, तो आप आगे कर ही लेंगे। तो प्रिपरेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शंस हुए होंगे, जैसे अभी के यूथ में है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा उनके लिए डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं भी उन्हीं यूथ में से था, सोशली मैं बहुत ज्यादा एक्टिव था, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ऐसा कोई शायद सोशल मीडिया ना हो जिसमें मेरे अकाउंट्स ना हो। वही मैं जो आपको बताया कि आइडेंटिफाई करना अपनी वीकनेसेस क्या क्या है। 21 मई शायद वो डेट था, 21 मई 2023, जिस दिन मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर सब अनइंस्टॉल किया था, और दोबारा मैंने इंस्टॉल किया 21 नवंबर 2025। दो साल तीन साल तक लगभग मेरे सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स बंद थे, लगभग ढाई साल तक। लास्ट पोस्ट जो मेरा था वो खुटाघाट डैम का था। तो उसके बाद मैं ये सोचता था कि अगला फोटो जो है वो सीधा आयोग की बिल्डिंग के सामने कहीं होना चाहिए इस बीच में, और कैप्शन भी मेरा रेडी था कि क्या कैप्शन डालना है, वर्थ 3 years ऑफ डिसअपीयरेंस ऐसा करके। तो वो सब चीज रेडी था, वो भी एक काइंड ऑफ मोटिवेशन था कि जिस दिन सिलेक्शन होगा उस दिन सोशल मीडिया एक्टिवेट करूंगा। तो मेरे लिए तो वो डिस्ट्रैक्शन ही एक मोटिवेशन बन गया, काइंड ऑफ ऐसा बोल सकते।
1: जी बहुत अच्छा है, ये सुन के हमारे युवा साथी इंस्पायर हो रहे होंगे, थोड़ा सोच रहे होंगे अरे अब थोड़ा मोबाइल कम स्क्रॉल करते हैं। तो आर्यन जी, आप ये बताइए कि सीजीपीएससी का वास्ट सिलेबस है, इसके साथ साथ करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज ये सब लेना होता है, तो आपने इसका प्रिपरेशन कैसे किया? क्योंकि अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो हम कंफ्यूज होंगे कि हमें किससे पढ़ना है या क्या करना है, तो इसके बारे में कुछ बताइए।
0: डिजिटल जो है सर्विसेज जैसे यूट्यूब हो गई या कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म्स है, वो कहीं ना कहीं वरदान भी साबित हो रही है, और उसके साथ साथ वो लोगों को कंफ्यूज भी करती है क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। इस बीच में आपको ऑथेंटिक कंटेंट सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके लिए मैंने AIR जो ऑल इंडिया रेडियो है उसके जो इन्फोग्राफिक्स होते थे उसमें करंट अफेयर्स वो डालते रहते हैं जो रिसेंट इंसिडेंट्स हैं, उसको मैंने काफी फॉलो किया क्योंकि वो एक ऑथेंटिक सोर्स होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश हो रहा है तो उसमें कोई फैक्चुअल एरर नहीं होता, उनको मैंने फॉलो किया। इसके अलावा जो कन्वेंशनल तरीके हैं, मैगजीन्स जो आते हैं मार्केट में एग्जाम के पहले, वो और न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा रोल था मेरी इंग्लिश न्यूज़पेपर, उससे मेरे आंसर राइटिंग भी सुधरे, वोकैबुलरी में भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ और ऐसे राइटिंग में भी काफी हेल्प हुआ। इंग्लिश जो कम सेंटेंस में या कम वर्ड्स में कितने अच्छे से प्रेजेंट किया जा सकता है किसी बात को, वो मैंने सीखा। तो करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर और डिजिटल मीडिया के जितने भी इन्फोग्राफिक्स है, चाहे वो CMO हो, चाहे आकाशवाणी हो, चाहे AIR ऑल इंडिया रेडियो के नेटवर्क्स हो, और मैगजीन्स फिर लास्ट में रिविजन के लिए, ये मैंने यूज किया।
1: ओके, तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो काफी हेल्पफुल होगी अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो

0: अभी आप बताइए कि आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं और अभी आपकी पोस्टिंग कब होगी और उसके क्या-क्या दायित्व हैं।
1: मेरा सिलेक्शन चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के तौर पे हुआ है। ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। हमारा मेन वर्क प्रोफाइल जो होता है वो ICDS जो स्कीम होती है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है, और बच्चों के लिए जो 6 साल से कम के जो उम्र के बच्चे होते हैं, और महिलाओं के लिए जितनी योजनाएं हैं वो सबके क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व परियोजना स्तर पर। परियोजना का मतलब होता है विकासखंड। विकासखंड स्तर पर जो उनका क्रियान्वयन होता है वो जिम्मेदारी, और उसकी सुपरविजन और उसको ऑब्जर्व करना ये हमारी जिम्मेदारी होती है।
0: आपसे बात करके मुझे ये तो लग रहा है कि हाँ बहुत ही अच्छे और कूल प्रोजेक्ट ऑफिसर मिल रहे हैं लोगों को। ओके, तो एक सवाल आपसे ये कि जिस दिन रिजल्ट आया, आपने बताया रात को आया, तो कैसा महसूस हुआ फिर उस दिन आपको?
1: मेरी लाइफ का अगर मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था वो, सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और घर वालों को हालांकि उम्मीद थी कि हो सकता है इस बार हो जाए क्योंकि इंटरव्यू दे के आया है। मुझे याद भी आ जाए 20 नवंबर को मैं बिलासपुर में था, तो चर्चाएं चालू हो गई थी कि कल आने वाला है, कल आने वाला है। तो मैं काफी मेंटली एग्जॉस्ट हो गया था कि हर कोई बोल रहा है कल आएगा कल आएगा, ना नींद आ रही थी ना कुछ। तो मैं घर में मम्मी से बात किया, बोला मम्मी ऐसी ऐसी बात है। तो मेरी मम्मी बोली कि एक काम कर घर आ जा। पहले भी जब मैं तैयारी शुरू किया था तो भी जब मैं आंख बंद करता था सोचता था सिलेक्शन के बाद का सिनेरियो क्या होगा, तो यही सोचता था कि मैं मेरे कमरे में देखा रिजल्ट आया और मैं चिल्लाते हुए बाहर निकला, मम्मी पापा को बताया। बिल्कुल सेम वैसा ही दृश्य था। रात को लगभग 11:30-12 के आसपास रिजल्ट आया मेरे घर में। मम्मी पापा लगभग 10 बजे तक सो जाते हैं, और उस दिन रात को 11:30-12 के आसपास रिजल्ट आया मेरे घर में। रात को 12 बजे दिवाली मनी, मतलब बहुत खुश, लगातार फोन आने चालू हो गए। पापा बहुत से लोगों को सामने से फोन करके बताया कि हो गया, काफी खुशी का माहौल था। अगले दिन मेरे लाइफ में कभी भी मेरे साथ शुभ होता है तो मैं सबसे पहले रतनपुर मामा हमाया के दरबार में जाता हूँ। अगले दिन सुबह होते ही सबसे पहले मैं रतनपुर गया। इनफैक्ट शायद मैं अपने गांव में पहला CGPSC सिलेक्टेड अधिकारी बना, तो गांव वालों के भी लिए काफी ये अच्छा मोमेंट था, फैमिली के लिए भी काफी अच्छा मोमेंट था, और बहुत प्राउड फील हुआ घर वालों को भी और मुझे भी।
0: जी, और अभी हमसे बात करके हमें भी बहुत प्राउड फील हो रहा है।
1: जी, बहुत पहले मैंने कहीं पढ़ा था लाइफ में 30 साल की उम्र तक सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना चाहिए, और जो इंसान 30 साल की उम्र तक सिर्फ मेहनत कर लिया दूसरे किसी चीज को ना सोचते हुए, सिर्फ अपने आर्ट पे जो भी वो कर रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो एक्टिंग हो, किसी भी चीज पे जो भी क्राफ्ट वो सीख रहा है, उस क्राफ्ट पे अगर वो सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक अपने मेहनत कर लेता है तो वो 100% उस चीज को एक्सेल कर लेता है। तो आधा रास्ता तो पूरा हो चुका है, अब आधा रास्ता अगर और पूरा हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, और बड़े स्तर पर मैं सरकार को कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा अपने स्तर पर।
0: तो अब आप हमारे युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे?
1: मैं हर जगह मैम एक ही बात बोलता हूँ कि मैं मानता हूँ CGPSC और UPSC जैसे सिविल सर्विसेज जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पढ़ाई और जो ज्ञान है उसके माध्यम से उसको रोजगार प्रोवाइड कराता है, जिससे उसका फाइनेंशियल हो या उसका सोशल हो, हर प्रकार से उसका डेवलपमेंट होता है। मैं तो बोलता हूँ कि चाहे वो कोई भी हो, एक बार उसको एटलीस्ट 1 साल अपनी लाइफ का सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि इसमें इतने सब्जेक्ट्स हैं, 21 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, 22 बल्कि ज्यादा ही सब्जेक्ट्स हैं, सारे अलग अलग डायमेंशन के हैं। तो नौकरी लगे ना लगे पर आपका एक जो 360 डायमेंशन का जो डेवलपमेंट है, आप किसी भी चीज को सोचने से पहले, किसी भी विचार को करने से पहले, आप उसको अलग अलग एंगल से सोचने के तथ्यात्मक तरीके से जो आप सीखेंगे वो काफी मेंटल डेवलपमेंट करता है ये। तो बिल्कुल बहुत अच्छा माध्यम है।
0: काफी अच्छी बात कही आपने कि एटलीस्ट एक बार तो प्रिपरेशन करें ताकि हमें खुद पता रहे कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं और वो उसके पीछे क्या नियम बने हुए हैं और हमें क्या फॉलो करना है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक
1: थैंक यू सो मच मैम।
0: यू दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम मेरी बारी में CGPSC रैंक 51 भावी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी आर्यन राठौर जी से उनके सफर, तैयारी, उनके अनुभव के बारे में हुई रोचक बातचीत।
2: Hey girls!
3: Hi! Congratulations!
2: आज तो पार्टी चाहिए।
4: पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे।
5: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
2: पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
5: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
2: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं। नो शेयरिंग।
5: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने

0: एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, कार्यक्रम के शुरुआत में हम बात कर रहे थे पहली बारिश यादें और उसकी प्रति हमारी जिम्मेदारियों के बारे में। आज तो फिलहाल बारिश की उतनी कमी नहीं, लेकिन बारिश के पानी को बचाने की कमी ज़रूर है। यही वजह है कि बरसात के कुछ महीनों बाद ही कई जगहों पर बारिश की किल्लत शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना, पानी की कीमत उससे पूछिए जिसे एक एक बूंद के लिए मीलों चलना पड़ता है। ज़रा एक सवाल का जवाब आप अपने मन में दीजिए। अगर कल सुबह उठें और नल खोलें लेकिन एक बूंद भी पानी ना आए, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अरे, पानी चला गया क्या? सच कहें तो पानी की कीमत हमें तब समझ आती है जब वो हमारे पास नहीं होती। ज़रा याद कीजिए, ब्रश करते समय नल खुला छोड़ना, गाड़ी धोने में बहता पानी, या फिर छोटी सी लीकेज जिसे हम कहते हैं अरे बाद में ठीक करवा लेंगे, यहीं से शुरू होती है पानी की बर्बादी। और मज़े की बात तो ये है कि एक एक बूंद बचाने की बात तो सब करते हैं, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करना चाहता। और अब एक सवाल और, अगर आपके मोबाइल की बैटरी 5% रह जाए तो क्या करेंगे आप? चार्जर ढूंढेंगे, है ना? लेकिन धरती का सबसे बड़ा चार्जर यानी पानी जब कम हो रहा है तो क्या हम उतनी ही चिंता कर रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर। जल संरक्षण कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है, बस छोटी छोटी आदतें अपनानी है। जितनी ज़रूरत हो उतनी ही पानी इस्तेमाल करें, घर में कहीं लीकेज हो तो तुरंत ठीक कराएं, बारिश के पानी को सहेजने की कोशिश करें, और सबसे ज़रूरी, बच्चों से लेकर बड़ों तक पानी को बचाने की आदत को एक संस्कार बनाएं। तो ठीक है दोस्तों, अब वक्त होने को है, आपसे फिर मुलाकात होगी, और इसी उम्मीद के साथ कि हर बूंद की कद्र होगी और हर जिम्मेदारी निभाई जाएगी। मैं हूँ आपकी अपनी श्रुति साहू। तो तब तक नल को बंद रखिए, पानी की फिजूल खर्ची बंद रखिए, और हंसते मुस्कुराते हमेशा अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय जोहार।

युवा जगत, ये कार्यक्रम अभी प्रसारित किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:20 पर और फिर 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा 7:20 पर। इसमें बेरा के गोठ का विषय होगा बदलत पर्यावरण और हमर जीवन संग खेती में प्रभाव। साथ ही फोन इन कार्यक्रम में पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देंगे डॉक्टर रंजना नंदा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ बरतोरी विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर के। कार्यक्रम संचालन होगा वीरेंद्र निर्मलकर का। साथ ही मंडी और मौसम पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा। कलाकार होंगे मेहंदी हसन।

रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 पर, विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 9:15 से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी दे दें कल के प्रमुख कार्यक्रमों की। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित होगा। खेती की बात कार्यक्रम का सुनिएगा कल सुबह 6:30 पर, इसमें पशुपालन और वर्षाकालीन पशु स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। चिंतन ये कार्यक्रम प्रसारित होगा कल सुबह 6:45 पर, इसमें कल का विषय होगा उपनिषदों की शिक्षा, आलेख सुश्री अंजलि मुखर्जी का होगा। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह प्रसारित होगा रोज ही की तरह सुबह 7:05 पर, और समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह सुनिएगा सुबह 8:30 पर, इसे हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। सुबह 9:00 कार्यक्रम बातों बातों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 9:30 से और फिर 11:00 से। अमराई कार्यक्रम का प्रसारण समय है सुबह 10:00। कलाकार होंगे साखन सिंह मरावी और नवलदास मानिकपुरी, अनसुईया मानिकपुरी और साथी। नए तराने कार्यक्रम का प्रसारण समय है 10:30। कल संध्या 5:00 प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:35 पर और 6:20 पर, और फिर 7:00 से। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:20 पर, इसमें बेरा के गोट का विषय होगा योग से जुड़ें और मधुमेह का प्रबंधन करें। किसान वाणी कार्यक्रम सुनिएगा 7:30 पर, श्वेत बचाओ अभियान के तहत प्राकृतिक खेती अपनाना, इस विषय पर हम आपको सुनवाएंगे श्री छत्रपति महिलांगे ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी तखतपुर से ली गई भेंटवार्ता, भेंटकर्ता होंगे पंचू भैया। साथ ही सुनिएगा मंडी और मौसम पर जानकारी और सामयिक सुझाव। कल रात्रि 8:00 सुगम संगीत प्रसारित होगा, कलाकार होंगे अलीशा चीनाए, और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम रजनीगंधा प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:10 होने को हैं, कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनो आज के प्रमुख समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करें। मुख्यमंत्री ह आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगो के विमोचन करें और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। अब समाचार विस्तार ले। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होके लड़े के आह्वान करिन है। उमन किहिन के मादक पदार्थ के कारोबार देश के सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हित और युवा मन के भविष्य पर खतरा है। उमन आध्यात्मिक नेता युवा और महिला मन ले ए अभियान में मिलके भाग ले के अपील करिन है। श्री शाह ये बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेटर सेंटर यानी NCORD के 10वां शीर्ष स्तरीय बैठकाला संबोधित करत किहिन। गृहमंत्री है किहिन के नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हा मादक पदार्थ ले जुड़े अपराध के जानकारी बेरा मा साझा करे बर कई ठिन ऑनलाइन पोर्टल शुरू करे है। ओमन जम्मू राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक मनला ए पोर्टल मा नशा ले जुड़े मामला के जानकारी तय समय सीमा के अंदर अपलोड करे बर किहिन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीस

0: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगो के विमोचन करें। ए मौका में बछर 2021 के आवास मेला में मकान बुक करैया हितग्राही मनला लकी ड्रा के माध्यम ले पुरस्कार माटे गिस। ए मौका में मुख्यमंत्री हा लोगो तैयार करने वाला अंशुल कश्यप ला घलो प्रतियोगिता के पुरस्कार राशि के रूप में 2.5 लाख रुपया के चेक दें। मुख्यमंत्री हा उम्मीद जतायन कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में घलो महत्वपूर्ण भूमिका निभाही जेखर ले प्रदेश के विकास ला नवा गति मिलही। ओमन बताइन के पाछू 2 बछर में मंडल हा लगभग 7388 संपत्ति के विक्रय करके 1532 करोड़ रुपया के राजस्व अर्जित करी से। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी है बताइन कि अब कोनो भी नवा आवासीय परियोजना के निर्माण तभे शुरू हो ही जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाही, जेखर ले अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम ले बांचे जा सकी। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव है बताइन कि भविष्य में मांग आधारित गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप ले व्यावहारिक परियोजना ऊपर विशेष जोर दे जाही। प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बर परिवहन विभाग जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दे है। परिवहन सचिव है बस संचालक मल्ला 15 दिन के भीतर बिना VLTD वाला बस में उपकरण लगाए और बंद उपकरण मल्ला चालू करे के निर्देश दिन है। नियम के पालन नहीं करैया वाला संचालक मन ऊपर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई करे जाही। केंद्र सरकार है औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ता मल्ला बड़का राहत देवत गैर घरेलू पैक्ड LPG के आपूर्ति में जम्मू क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दे है। ऐसन में अब पश्चिम एशिया संकट ले पहली के जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दे गए है। ये बहाली हाले में LPG आपूर्ति के स्थिति में होवत सुधार ल देखत करे गए है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी है युवा मन ला आह्वान करीन है कि ओमन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और नवा तकनीक ले डरे के बजाय ओला अपन भविष्य के निर्माण के सबले बड़का अवसर माने। श्री चौधरी है ये बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज डहरले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौती और भविष्य के प्रभाव विषय में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में किहिन। उमन किहिन कि आज पूरा दुनिया तेजी ले ज्ञान तकनीक और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को तिबाढ़त है। एकरे सेती युवा मनला बेरा रहत तकनीकी परिवर्तन ला समझ के खुद ला ओखर अनुरूप तैयार करना होही। उमन किहिन कि जौन AI ला अपना ही उही भविष्य के अगुवाई करही। श्री चौधरी हा युवा मनले आग्रह करीन कि उमन केवल नौकरी ढूंढे तक सीमित झन रहे बल्कि नवाचार और उद्यमिता के दिशा में घलो आगू बढ़े। संग्रा विश्व स्तरीय स्टार्टअप और तकनीकी कंपनी बनाए के लक्ष्य रखें। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कोती। सरकार हा पासपोर्ट आवेदन शुल्क मा बढ़ोतरी कर दे है। आवेदक मल्ला नवा पासपोर्ट या नवीनीकरण करे बर अब 2500 रुपया शुल्क देना होही। नवा दर 1 जुलाई ले लागू होही। नवा शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाला नवा पासपोर्ट या पासपोर्ट ला फेर जारी करे के लागत 5000 रुपया होही। पासपोर्ट के दूसर श्रेणी में घलो शुल्क में बढ़ोतरी करे गए है। प्रदेश ले माओवाद के समस्या सिराए के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादी मन को तिले लुकाए गए जीनीस के बरामदगी में लगे हुए हैं। यही कड़ी में नारायणपुर जिला में टेकला के जंगल ले इंसास SLR 303 राइफल समेत बड़का मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक जीनीस बरामद करे गए है। एकर अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी ले घलो माओवादी को तिले लुकाए गए 24 लाख रुपया नगद राशि बरामद करे गए है। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इधरी 1 जुलाई ले लागू हो गया VBG रामजी योजना ऊपर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 27

0: उनके आकाशवाणी केन्द्र रायपुर डहर ले एफएम और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ह बेमेतरा जिला के थान कमरिया थाना के प्रधान आरक्षक अजय लहरेला 15,000 रुपया के रिश्वत लेवत रंगे हाथ गिरफ्तार करे है। ACB के टीम आरोपी ले पूछताछ करके मामला के जांच में लगे है। उन्हें ACB के टीम है बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लालपुर हल्का के पटवारी लघलो 25,000 रुपया रिश्वत लेवत गिरफ्तार करे है। पटवारी ऊपर नक्शा बटांकन पर रिश्वत लेके आरोप है। आज छत्तीसगढ़ समेत देश के आने आने जगह में मोहर्रम श्रद्धा और आस्था के संग मनाए जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है मोहर्रम में संदेश जारी करके हजरत इमाम हुसैन के बलिदान के श्रोता करीन है। उमन किहिन कि हजरत इमाम हुसैन के बलिदान सच और न्याय के रद्दा में अटिक रहे के प्रेरणा दे थे। मोहर्रम के मौका में राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई थीन शहर में ताजिया निकाले जाते। रायपुर के करबला में घलो हजरत हुसैन के कुर्बानी ला सुरता करत आज रतिहा मजलिस यानी धार्मिक बैठक के आयोजन करे जाही। और अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के अनुसार अवैया 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सा में आगू बढ़े पर अनुकूल परिस्थिति बने हुए है। उन्हें काली 27 जून ले राज्य में मानसून के गतिविधि बढ़े के संभावना है। मौसम विभाग अवैया 7 दिन तक प्रदेश के कुछ एक इलाका मन में गाज गिरे के चेतावनी घलो दे है। यही बीच बलरामपुर जिला के कंदरे गांव में गाज के चपेट में आए ले 2 युवक के मौत हो गए। बरसाले बचे खातिर ये युवक मन रुख के नीचे खड़े रहें। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग प्रदेश के आने आने नगरीय निकाय पर एल्डरमैन के नियुक्ति करे है। विभाग को तिले रायपुर और सरगुजा संभाग के 9 जिला के 62 नगरीय निकाय में 252 एल्डरमैन नियुक्त करे गए है। नगरीय निकाय में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में काम करते। उमन निकाय के बैठक में भाग लेके स्थानीय समस्या और विकास कार्य ऊपर सुझाव देते। और अब थोरकुन समाचार सार में। शक्ति जिला के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात मनखे मन एक युवती ले गोली मार दीन जेखर ले ओखर मौत हो गए। घटना के बाद आरोपी फरार हो गिन। पुलिस हा मामला के जांच शुरू कर दे है। बताया जाते कि दोनों युवक मोटरसाइकिल में पहुंचे रहीन और पता पूछे के बहाना युवती ऊपर हमला कर दिस। सुशासन तिहार के दौरान मिले शिकायत ऊपर कार्रवाई करत सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर है पटवारी बद्री प्रसाद साहूला निलंबित कर दे है। धमतरी जिला के मगलोर थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तरिया में नहाए के दौरान डूबे ले 2 नोनी के मौत हो गए। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र डहरले काली 27 जून के अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेला के आयोजन करे जाही। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फेर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नशा के खिलाफ एकजुट होकर लड़े के आह्वान करीन। मुख्यमंत्री है आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवा लोगों के विमोचन करीन। और प्रदेश में यात्री बस के सुरक्षा व्यवस्था ला मजबूत करे बस जम्मू बस में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 6:20 हुए हैं। पेश है ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में गीत सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र जोई, यामिनी उमा तिवारी रायगढ़ से, हांसी से राजू मिगलानी, बब्बू डब्बू, बबीता, सुभाष योगी, संबलपुर कांकेर से फागुराम, ज्योति ओजस्वी यादव, मंडी डबवाली से राजेंद्र, अंजू मोहित, तानिया नारंग, भाटापारा दुर्राबांधा से प्रमोद साहू, देव नवीन, युवराज साहू, बुलंदशहर से सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार, दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, रजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, आप सभी पानीपत से, निजामाबाद तेलंगाना से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश, कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, वडशिंगी महाराष्ट्र से अमोल, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार मानकर, जमशेदपुर से अपूर्व, अनुपम, राकेश कुमार, लघान पंडरिया से उत्तम कुमार, रुक्मिनी

भारति बघेल, राजस्थान भोपालगढ़ से धर्मेंद्र कपिल पूजा परिहार, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे ललिता गणेश कार्तिक परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी कुमारी देवी चौधरी और मालती चौधरी, भाटापारा से बचकमल मोतीलाल यादव सियाराम चोवाराम सूरज बोरकर नारायण यदु भुवन कामरी, रसेरा से मुरलीधर साहू लक्ष्मी देवी योगेश संध्या कीर्ति डीकेश वासु डाली और पूर्वेश साहू, नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर निर्मला विशाल नवानकर सुभाष गोदारा विमला इंदु पार्वती हिमांशु गोदारा फजिलका पंजाब से नीलू मेघ वंदना कुमार बिट्टू कुमार ये सभी रायपुर से, यवतमाल से जयराम शिंगणकर दिशांत और अर्पिता राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश उर्मिला दीपक स्वाति जायसवाल, सहारनपुर से सैयद मशरूर शाइना नाजिया इब्राहिम, अशोक श्याम कुंवर प्रमिला आसमा श्याम कुंवर भिलाई नगर से, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज, ठकुरबाला लोहगढ़ से स्वर्ण सिंह दलजीत सिंह राजदीप गुरनूर गुरलाल अविराज सिंह, कवर्धा से लोहारेडी अशोक कुमार साहू लीलेश्वरी लालिमा खुशांत निशांत साहू, झारखंड गिरिडीह से मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज हसन नवाज अहद मिफ्रा नवाज चाहत, पलारी से नितेश देवांगन दुर्गा प्रसाद पराग पूनाराम और कृष्णा देवांगन, लूत्रा खमरिया से अकरम अमीन अर्श अतीका, बालोर डोंडी लोहारा से देवशंकर अजय देव और अलकबीर तामुरिया, नसीब मोहम्मद हबीब मोहम्मद इरफान मोहम्मद सरगांव बाजार से भदरसी बागबहरा से पन्नालाल सेन खुशबू तारा कौशल सेन, आमना परवीन वली भाई अंसारी आसमा परवीन दिल्ली शहर से, सामतपुर से ऋषि रितेश कंचन और माही सेन, बरका काना से अफजाल तार शाहिन सुल्ताना सोनू तस्नीम निप्पी सानी मोहम्मद अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके नंदा हनुमान बोडके, टीकमगढ़ पलेरा से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम आशीष, लच्छनपुर से विश्वनाथ पंकज तिरुपति साहू, हरिद्वार लक्सर से ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां, नवाशहर पंजाब से गगनदीप तृप्ता प्रियंका प्रशांत प्रियम थांदी विमका और वाणी थांदी, मस्तानपुरा से अनंता भगत अरुणा सुलोचना चेतन भगत, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय नमन अपार ढींगिया, पलारी से प्रकाश वर्मा निखिल यशस्वी अन्नपूर्णा वर्मा, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम वीणा विनय शंकर पांडे। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया रोटी फिल्म का ये गीत।

0: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दीवा इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं, एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित एक पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
3: ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम में। अब जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, उसकी फरमाइश की है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, शादुल शहर राजस्थान से रामकुमार, चंद्रकला रेवाड़, मालूट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश, निवान सौरव और मेंडी शर्मा, मुरादाबाद दुल्लापुर से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, इसरार नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एसएम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु, माधुरी किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत, मंजू और मयंक भाटिया, कुरासिया कालरी चिरमिरी से इंद्रभान अनुभव, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश कालिंद्री लहरे, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत, करमजीत कौर, नागपुर बहादुरा से वैशाली, शैलेश गवहानकर, टुकटुक गवहानकर, प्रिंस एकांश, सुमित ध्वनि गवहानकर, पटियाला पंजाब से सोमदत्त, ज्योति।

रानी गुरमंत कौर मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जोन डे कैस्ट्रो रोजी पर्ल और विलिस डी कैस्ट्रो, तेल्हारा से प्रकाश नर्मदा सुजाता को हारकर, भरत राम पडोटी जयंती हेमंत पडोटी उमंग और मोक्ष पडोटी भानबेड़ा मुंगवाल से, करनाल से सुधीर नूतन संदीप गुगलानी जगमोहन प्रतिभा और इशप्रीत शर्मा, कालेगांव जाफराबाद से सुधाकर राजे प्रशांत संचित प्रथमेश प्रणाली सर्वद सानवी देशमुख, दिल्ली से अजीम वकार माहिरा अजीम और नगमा अजीम, टिकरीपारा से जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ और ऋचा देवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम उषा और ऋषभ सिंह, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर वैशाली और धनंजय कटनकर, सोनम सना और अदीबा दिल्ली से, रमेश कुमार जाजोरिया गीता रानी गगनदीप आरजू और गुड्डू जाजोरिया आप सभी मालोट पंजाब से, आरसी कामड़े करुणा मीना अश्वनी और विपुल कामड़े दुर्ग से, जालंधर से रोशन मन्नत इशरत जहां और मक्कर जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी रूपेश सिंघई महेश चंघई प्रज्ञेश पित्रे सिंघई महाराष्ट्र से, यावतमाल से राहुल सरला विशाल चेतन रोशनी और प्रियांशी, बाटापारा से प्रेमलाल साहू भूपेंद्र दुष्यंत राघवेंद्र साहू, यावतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे कल्पनाताई शैलेश प्रतीक्षा स्वप्निल रक्षता लोखंडे, मामूलवाड़ी से सोपान वसंतराव निवृत्ति, नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह पल्लवी प्रखर कुशल नीति सुरभि अश्विन शाह मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल सुनीता हर्ष विनीत क्रिस्टी पटवा, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा चांदनी भूपेश दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत सरिता प्रिंस एकांश गम्हाणकर, पैठण से सुरेश अनीता आरती पूजा प्रसाद सोनल और सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय उषा अमित कुमार हैप्पी राय, दतरेंगी से हीरामणि वर्मा पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और मोखेलाल वर्मा, सनावत से सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर अल्तमा खत्री अल्तमश खत्री रमेश गोड़ मोहम्मद शदाब खत्री, पिपरिया से कमलकांत दीपा और रिमझिम गुप्ता, जालौन उत्तर प्रदेश पंजौनिया से सत्येंद्र कुमार आदर्श सार्थक अलौकिक चंदसौलिया, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी, पंजाब रामटेके यशोधरा और श्रव्या रामटेके यावतमाल से, बठेना पाटन से परमेश्वर राजबत्ती काजल पूर्वी हेजल राजेश रेशमा साहू, करजत मुंबई से अब्दुल कलाम अब्दुल सलाम राइन रामजी साहू जीवनलाल रजक निम्मी शिवम सतीश मुकेश साहू आप सभी लच्छनपुर से, राजनांदगांव नागर कोहरा से बबलू साहू जामुन देवी प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल समीक्षा आराध्या साहू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र कपिल पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, श्रीरामपुर से अशोक दले अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश और जीविका दले। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया, स्वर्ग से सुंदर फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन अखिलेश लोकेश आशीष रवि।

शनि, रेयांश, कान्हा और आदित्य देवांगन, राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला, शशिकांता प्रजापति बोड़गहन से, अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह राहुल, पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविन्द्र रौनक सेन गंडई पंडरिया से, सुरेश आशु, सोनाली नारंग सहारनपुर से। तो लीजिए, आप सबकी पसंद पर पेश है जीने की राह फिल्म का ये गीत।

0: मोहम्मद रफी के गाए जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:45 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम
1: आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:45 हुए हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।

0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर आकाशवाणी।

0: क्या महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
1: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
3: यह आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि यूसीसी का प्रारूप तैयार करने के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी हर वर्ग के बीच जाकर रिपोर्ट तैयार करेगी।
4: यूसीसी लागू होगा हमारे छत्तीसगढ़ में और इसके लिए कमेटी का गठन हो गया है। रिटायर जज मैडम देसाई हैं, उनकी अध्यक्षता में गठन हुआ है। अब वो लोगों के बीच में, हर वर्ग के बीच में जाके अपना रिपोर्ट देंगे और उसके बाद यूसीसी लागू होगा।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और महिलाओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने यह बात आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कही।
5: आज हमारा देश नार्कोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
3: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक LPG उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए गैर घरेलू पैक्ड LPG की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। इस तरह अब पश्चिम एशिया संकट से पहले जारी आपूर्ति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। यह बहाली हाल ही में LPG आपूर्ति की स्थिति में हुए सुधार को देखते हुए की गई है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि कर दिया है। आवेदकों को नए पासपोर्ट या नवीनीकरण के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। नई दरें 1 जुलाई से लागू होंगी। नई शुल्क संरचना के तहत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। पासपोर्ट की अन्य श्रेणियों में भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण और अधोसंरचना विकास मंडल के नवीन लोगों का विमोचन किया। इस अवसर पर वर्ष 2025 के आवास मेले में मकान बुक करने वाले हितग्राहियों को लकी ड्रॉ के माध्यम से पुरस्कार वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगो तैयार करने वाले अंशुल कश्यप को भी प्रतियोगिता की राशि के रूप में ₹2,50,000 का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि गृह निर्माण मंडल अब अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे प्रदेश के विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष 2 वर्षों में मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का विक्रय कर ₹1,532 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। कार्यक्रम में आवास और पर्यावरण मंत्री OP चौधरी ने बताया कि अब किसी भी नई आवासीय परियोजना का निर्माण तभी प्रारंभ होगा जब पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी, जिससे अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बचा जा सके। मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंहदेव ने बताया कि भविष्य में मांग आधारित, गुणवत्तापूर्ण और वित्तीय रूप से व्यावहारिक परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा। नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने प्रदेश के कई विभिन्न नगरीय निकायों के लिए एल्डरमैन की नियुक्ति की है। विभाग की ओर से रायपुर और

सरगुजा संभाग के 9 जिलों के 62 नगरीय निकायों में 252 एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं। नगरीय निकायों में एल्डरमैन मनोनीत पार्षद के रूप में कार्य करते हैं। वे निकाय की बैठकों में भाग लेकर स्थानीय समस्याओं और विकास कार्यों पर सुझाव देते हैं। प्रदेश में यात्री बसों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए परिवहन विभाग ने सभी बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD लगाना अनिवार्य कर दिया है। परिवहन सचिव ने बस संचालकों को 15 दिनों के भीतर बिना VLTD वाली बसों में उपकरण लगाने और बंद उपकरणों को चालू करने के निर्देश दिए हैं। नियम का पालन नहीं करने वाले संचालकों पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI और नई तकनीकों से भयभीत होने के बजाय उन्हें अपने भविष्य के निर्माण का सबसे बड़ा अवसर माने। श्री चौधरी ने यह बात रायपुर में महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवसर चुनौतियां और भविष्य का प्रभाव विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में कही। एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाने के प्रधान आरक्षक अजय लहरे को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB की टीम आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं ACB की टीम ने बिलासपुर में रतनपुर तहसील के लारपुल हरका पटवारी को हुई 25,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। पटवारी पर नक्शा बटांकन के लिए रिश्वत लेने का आरोप है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 1 जुलाई से लागू होने वाले VVG Ram Ji योजना पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 27 जून को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश से माओवाद की समस्या खत्म होने के बाद अब सुरक्षा बल के जवान माओवादियों द्वारा छिपाई गई सामग्रियों की बरामदगी में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में नारायणपुर जिले के टेकला के जंगलों से इंसास SLR 303 राइफल समेत भारी मात्रा में गोला बारूद और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसके अलावा छोटे डोंगर के तोयामेटा जंगल पहाड़ी से भी माओवादियों द्वारा छिपाकर रखी गई 24 लाख रुपये नकद राशि बरामद की गई है। आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। करबला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर संदेश जारी कर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। उन्होंने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। मुहर्रम के मौके पर राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई शहरों में ताजिए निकाले जा रहे हैं। रायपुर के करबला में भी हजरत हुसैन की कुर्बानी को याद करते हुए आज रात मजलिसों यानी धार्मिक बैठकों का आयोजन किया जाएगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2-3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रदेश के बाकी हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। वहीं कल 27 जून से राज्य में मानसून की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगामी 7 दिनों तक प्रदेश के कुछ इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। इस बीच बलरामपुर जिले के कंदरी गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई। बारिश से बचने के लिए ये युवक पेड़ के नीचे खड़े थे। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। पत्र सूचना कार्यालय PIB रायपुर की ओर से कल जगदलपुर में वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का विषय सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष नक्सलवाद से विकास और विश्वास की ओर बढ़ता बस्तर रखा गया है। सक्ती जिले के जोंगरा गांव में आज 2 अज्ञात लोगों ने एक युवती को गोली मार दी है जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जाता है कि दोनों युवक मोटरसाइकिल पर पहुंचे थे और पता पूछने के बहाने युवती पर हमला कर दिया। सुशासन तिहार के दौरान मिली शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला कलेक्टर ने पटवारी बद्री प्रसाद साहू को निलंबित कर दिया है। धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र स्थित कपालफोड़ी गांव में तालाब में नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। जांजगीर के प्रकाश इंडस्ट्रीज में काम करने के दौरान ऊंचाई से गिरकर 1 ठेका मजदूर की मौत हो गई। और जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा कल 27 जून को अंबिकापुर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में संभाग स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा।

0: था। इस मेले में निजी कंपनियों द्वारा करीब 2000 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया। प्रदेश में परिवहन विभाग ने बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य किया और आज छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न भागों में मुहर्रम श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है ईमेल पर आधारित कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। कार्यक्रम सुनने के लिए हमें ईमेल भेजा है बरेली कैंट चनहेटी उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार रागिनी और मुस्कान, सरगांव से राजेश हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह घुरनी, करिश्मा सोमार साय कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामनी और ऐश्वर्या पैकरा, भिलाई 3 चरोदा से नौशाद अहमद हमीनुद्दीन हमीदुन जीशान शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत दानू पद्मिनी रावत नीरज शुभम और सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश खुराना किरण लव्या आरव खुराना एस के पप्पी, मोताला महाराष्ट्र से विजय रतनमाला और ओम कुमार सुरलकर, करजत मुंबई से अहमद भाई दुखनी सदफ आरजू जूही इकबाल इमरान अहमद आमना नसरीन बागबान आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फुलवाले, दिल्ली से प्रमिला हेमा और अंतरा सिंह, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी सोनम वली और आसमा वली। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अलका याग्निक के स्वर में समीर का लिखा हिमेश रेशमिया का संगीतबद्ध किया तेरे नाम फिल्म का ये गीत।

0: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दीवा इंडिया। शुद्ध शहद ए टू बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दीवा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
1: ईमेल करें, गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहा है इन श्रोता साथियों ने। आप हैं नरगोड़ा से कीर्तनपुरी लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी।

निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी, संभाजी नगर से राजेश साबले, राजदीप राजेश, राशि शीतल राजेश, मोहाली चंडीगढ़ से टी मेहरोत्रा, डी ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, राजकोट वीरमगांव से रुचि ट्विंकल और उमा गुप्ता, बिलईगढ़ से खीकराम देवांगन, रेनू रजनी प्रियंका देवांगन, राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका अनिष्का और तन्मय गजबिये आप सभी डोंगरगांव से, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु और सागर बालूजा, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हेयंश कुमार चंदन आप सभी सौंगा मगरलोड से, पोड़ी भाटा अकलतरा से दिलीप चोवाराम यदु, निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा और प्रतीक्षा चंदन, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कर्पित, गर्व और हिमाक्ष, अनिल बुरांडे, उषा अनुश्री और धनश्री बुरांडे पांडर कावड़ा से, बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिम्मू, एकम, दमन और अभिजोत। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा, ए आर रहमान का संगीत पद किया, ताल फिल्म का ये गीत।

ईमेल करे गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के लिए ईमेल भेजा है तीव्रता डबरीपारा कोरबा से महेंद्र प्रताप, जया, जागेंद्र, गजेंद्र, जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरीबाई, मनमोहन सिंह, गिरजा, चंद्रपाल, लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी, वीना, चैतन्य और मेघा मस्किन, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, सीतामणि बिहार से मुसर्रत जहां, नाज, तलत, फरहत, रिफत, नुफा, नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज, चिरमिरी कुलासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे, तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता आप पटियाला से, जगराव से सुनील पाठक, कमल, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन, पीयूष कुमार और रोहित राज, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाजों में समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया राज फिल्म का ये गीत।

अभिजीत और अलका याग्निक के गाए राज फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 7:20 हुए हैं। आइए चलें ग्राम सभा में।

0: जय जवाहर संगवारी हो। ग्राम सभा कार्यक्रम सुनिया जमो संगवारी मन राम सनेही भैया के झोंका और राम राम जय जवाहर संगवारी हो। मानसून हर अवैया है और अभी के समय में हमार खेती किसानी के तैयारी हर चलत हवे। तो संगवारी हो, हमार खेत में पड़ पड़ी डिस्पोजल सीसी बोतल मन खेत में जगह जगह में बगरे हवे। तो सावधानी पूर्वक ये सब बीन के सके लेवाओ। काबर सावधानी पूर्वक संगवारी हो, कांच मन सीसी मन अगर टूटे फूटे हो ही तो कांच मन कटावे मत, खिला मन लगना नहीं है। ये प्रकार के सावधानी पूर्वक ये सब सकेलाओ और सकेले के बाद में कोनो एक जगह हमारा किला नष्ट कर देवो। संगे संग कांटा खुट्टी मल सकेल के जला देवो। घुरुआ के गोबर खातु ला खेत में बगरा देवो और बगराए के बेरा में हीरू बिछुले सावधानी बरतो। अभी के समय में खेत मन में बहुत अकन हीरू बिछरू मन निकलत हवे, तो गोबर खातु ला बगराए के बेरा में सावधानी पूर्वक गोबर खातु ला बगराना है। संगवारी हो, हमारे धान की फसल के बुआई हर होने वाला है तो बीजा भत्ता की तैयारी करो। साग भाजी की खेती करना हावे तो बीजा भत्ता की तैयारी करो। और जैसे ही हमारे खेत में बुआई के लायक रही अपन खेत में बीजा मल्ला बुआ। आओ आवाज सुनत हन ये संदेश आला।
1: समय पर बुआई, भरपूर उपज की गारंटी।
2: अरे मास्टर जी, एक किसान से बेहतर कौन जाने, बीज तो कब के बो दिए।
1: मैं फसल की नहीं एनपीएस संचय की बात कर रहा हूँ।
2: मास्टर जी, ये एनपीएस संचय क्या है?
1: एनपीएस संचय भारत सरकार के प्राधिकरण पीएफआरडीए द्वारा संचालित

0: पेंशन योजना है, जिसमें 250 रुपए से खाता खोलकर पैसा जमा करते रहने पर बुढ़ापे में हर महीने पेंशन मिलेगी। आज ही एनपीएस संचय में पैसा जमा करना शुरू करो और अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक जानकारी के लिए कॉमन सर्विस सेंटर या अपने बैंक से संपर्क करें। रहो भविष्य के लिए तैयार एनपीएस संचय के साथ।
1: जब बात हो परिवार की सेहत, स्वाद और भरोसे की, तो नाम हो हल्दी वा इंडिया। शुद्ध शहद A2 बिलोना की कच्ची घानी सरसों तेल और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों की विश्वसनीय श्रृंखला के साथ हल्दी वा इंडिया लेकर आया है शुद्धता और गुणवत्ता का विश्वास।
2: संगवारी हो, जिन प्रकार ले हम एंटीबायोटिक दवाई खा के अपन शरीर के जुझारू क्षमता कमजोर कर जातन, ठीक उसी प्रकार ले हम अपन खेत में रासायनिक खातू माटी के उपयोग कर करके अपन खेत के जो माटी के उपजाऊ क्षमता हवे वो लोग नष्ट कर जावतन। धीरे धीरे हमर खेत की भूया में जिन उर्वरा शक्ति हवे वो जमो उर्वरा शक्ति में नष्ट हो जाए, और जब हमारे खेत की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाए तब हम लोग पछताए लगे। संगवारी हो, पौधा और फसल उत्पादन में प्राचीन काल से ही खातू माटी के महत्वपूर्ण स्थान हवे। पानी के अलावा वो जमो पदार्थ जो लोग माटी में मिला के माटी के उर्वरा शक्ति में सुधार करथन। खातू के उपयोग करेले पौधा या फसल मन ला संतुलित मात्रा में पोषक तत्व उपलब्ध होते। हमार फसल या पौधा मन ला जेन जरूरी तत्व के जरूरत पड़ते वो सब जरूरी तत्व खातू के माध्यम ले पूरा होते। खातू जिले गोबर खातू या जैविक खातु ले बोलथन, एकर माध्यम ले कृषि के खेती किसानी होवत हवे। लेकिन कुछ बच्चर ले हम रासायनिक कृषि कति बहुत ही आगु बढ़ गए हवन, और अतका ज्यादा रसायन के उपयोग करत हवन जिकर ले हमार खेती किसानी मन जहरीला हो जावत है। एकर अलावा जम्मो वातावरण हर जहरीला हो जात है, तो रासायनिक खेती ले छोड़ के जैविक खेती कति आगु बढ़ाओ। संगवारी हो, अभी आप सब देखत हो कि कब के मानसून हर अवैया रिसे जिन हर अभी तक में पिछवाए हवे। अब के समय में बारिश की कोई ठिकाना नहीं रह गए है। अब समय में बारिश नहीं हुआ है, कभू अति बारिश के कारण हमारे फसल चौपट हो जाते तो कभू बारिश की कमी के कारण सूखा अकाल के सामना करना पड़ते। ये सब बदलत मौसम के प्रभाव आए, और फिर इस के तफर्रा गर्मी ला हम सब सहे हवन। तो ये सब मौसम ला देखते हुए हमारे किसान भाई मन ला सावचेत रहना पर ही पर्यावरण संरक्षण के संगे संग जल संरक्षण में भी विशेष चेत करना पड़ेगी। सिंचाई की टपक पद्धति अपनावाओ, कभू कभू जोरदार बारिश होते पानी मन सोझे बहा जाते, नरवा नदिया के माध्यम से सब पानी मन बहा जाते। तो कोशिश करो कि बारिश के पानी ला संरक्षित करे जा सके। अगर हमार खेत मन चकबंदी हवे तो ऊपर के छोटे मोटे खेत में पानी ला भर के रखाओ, ताकि जरूरत के हिसाब ले खाले के खेत में वो पानी ला उगार के पलोए जा सके। पहले के सियान मन खेत खार के बीच मन में डबरी तलाव और कुआं लग खनवाए रहे जिन में बरसात के पानी मन भराए रहे। तो आज भी कोशिश कराओ कि खेत खार में छोटे छोटे डबरी खनवा के रखो, ताकि पानी की जरूरत महसूस हो पानी ल पलो जा सके। और फिर संगवारी हो, साकंभरी योजना ले मोटर पंप घरों में रहता हुए, जितका हार्स पावर की मोटर पंप की जरूरत हवे वो हिसाब से मोटर पंप ले सकत हो। और मोटर पंप ले पर सरकार के तिले छूट घरों मिलते, तो छूट के भी लाभ लेवाओ, और डबरी खेत में कुआं या नरवा ले पानी पलो के अपन फसल के उत्पादन में वृद्धि करो। और संगवारी हो, आओ सुना थन छत्तीसगढ़ी लोकगीत जिला स्वर दिया हवे गुरुआ राम मरकाम अविकर संगवारी मन।

0: संगवारी हो अभी हम सुनें छत्तीसगढ़ी लोकगीत जेल ल स्वर दियरिन हवे धुरुआ राम मरकाम और दुखिया भाई मरकाम। अब संगवारी हो बेरा हुआ थे फोन इन कार्यक्रम सुने के जिकर विषय हवे पशु विभाग द्वारा संचालित योजना मन के जानकारी। अब ये विषय में जानकारी देवत हवे डॉक्टर रंजना नंदा पशु चिकित्सालय सहायक शल्यज्ञ पशु चिकित्सालय बरतूरी विकास खंड बिल्हा जिला बिलासपुर। और ये कार्यक्रम के संचालन करत हवे हमर वीरू भैया हर। तो आओ सुनत हन फोन इन कार्यक्रम।
1: किसान भाई बहनी हो जय जोहार राम राम। आज फोन इन में आधारित कार्यक्रम में आप जमो संगी संगवारी मन के मैं वीरू वीरेंद्र भाई स्वागत करत हूँ। आज की सुघर विषय लेके आए हैं पशु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी। ये विषय में सुघर जानकारी दे बर आज हम पहुना बुलाये डॉक्टर रंजना नंदा पशु चिकित्सक सहायक शैलज्ञ

0: पशु चिकित्सालय बरतोरी बिलासपुर में इमन कार्यरत हवे। तो सबले पहली हम उनका स्वागत कर लेते हैं उमला डॉक्टर रंजना नंदा जी, राम राम।
1: राम राम वीरेंद्र भैया, वीरू भैया, राम राम।
0: जय जोहार।
1: जय जोहार भैया, जय जोहार।
0: काबर जय जोहार करे ले किसान मन जागरूक हो जाते, जगाए के काम करते है ना।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो आप मन के स्वागत है हमारे आकाशवाणी बिलासपुर की स्टूडियो में। अब किसान भाई मल हम शुरू ले बता दिए हैं दो दिन पहले के लिए है ना।
1: हाँ,
0: कि आज के जिन विषय में हम गोट बात करबो, तो फोन आए के पहले हम आप मन से यही जानना चाहत हन कि ये पशु विभाग द्वारा जिन संचालित योजना के जानकारी, अब प्रमुख रूप से कई वो तो बकरी है, भेड़िया है, सुअर है ना, भेड़ कह जाए, कुकुट पालन, तो ये सब प्रमुख एमा आ जाते हैं एखर भीतर में कह जाए है ना। तो इखरे बार सरकार द्वारा काबर सरकार मोदी सरकार के जिन मुहिम है किसान मन के आमदनी दो गुना करे के है, तो ऐसन योजना लेके आवत है जेखर ले किसान मन की आमदनी बढ़े। तो यही सब आपके विभाग द्वारा का ये योजना है और योजना के मुख्य उद्देश्य का है खोला बतावा, और फिर जेखर फोन आई उखर से फिर गोट बात कर उखर सवाल ले।
1: जैसे भैया आप मतलब पता है पशुधन विकास विभाग में दो तरीके का काम होते, सब किसान भाई मनला और सब ला बताना चाहता हूँ दो। एक होते इलाज ट्रीटमेंट, जो कि बीमार होता है अस्पताल वाला काम करता है तो हमन जुड़े हैं समझ जाइए, जिसे स्वास्थ्य केंद्र है टाइप के, ये हमन के एक अलग वो है जो इलाज पानी, बच्चा नि फंस गए है, बीमारी है, टीकाकरण। दूसरा हमन के पार्ट है एक्सटेंशन या जन कल्याण योजनाएं करना, वो है पशुधन विकास विभाग में जन कल्याणी योजनाएं। योजना मतलब पशु ला हमन पशु जो अच्छे पशुपालक है, जो ईमानदारी से पशुपालन करते है, वो ला थोड़ा बहुत सहायता करना ताकि उमन के अर्थव्यवस्था, उमन के जो इनकम है वो दुगना हो जाए
0: जी।
1: तो एकर बार जो राज्य सरकार, अब योजना दो तरीके से चली थी, राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा। तो कुछ योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार द्वारा है, कुछ योजनाएं हैं जो राज्य सरकार द्वारा है। तो ऐसे माँ गाय हमन के चूंकि बहुत सारा अलग अलग प्रजाति है, गाय भैंस मुर्गी कुत्ता बिल्ली सब, तो सबके अलग अलग योजना है। तो मैं सबसे पहले जिसे अपन बताना चाहता हूँ, सब भाई मतलब बच्चा है जो किसान जो पशु पाला थे, हमन के बैकयार्ड कुटकुट पालन योजना। बैकयार्ड कुटकुट पालन योजना मतलब बैक यार्ड मतलब आपन जानता पीछे आंगना पर्ची आंगन पीछे है, बैक मतलब पीछे, यार्ड मतलब अंगना, पीछे अंगना में जो मुर्गी पाल सकन जे में कोई लागत पशु मतलब किसान भाई मनला ना हो। एकर में हमन काय करथन, हमन के ये जो ये योजना है ये कुटकुट पालन योजना के अंतर्गत हमन 45 नग चूजा 28 दिन के
0: जी
1: 45 नग 45 ठोक स्पाइड ऑफ की ओहर नर एक मादा है
0: चूजा
1: देथन। हाँ। और 28 दिन के रहते
0: जी।
1: और 10 किलो दाना एक बार बस देथन। ठीक है, तो ओ हमन देथन बैकयार्ड कुटकुट पालन योजना अनुसूचित जाति जनजाति सामान्य वर्ग के लिए है रहमा। और एक जो अनुदान के व्यवस्था है अनुसूचित जाति जनजाति में 90%
0: जी,
1: जो 3000 के लागत में है, 2700 विभाग वहन करते और 300 रूपए किसान ला देना है। ओकर बाद है ओबीसी और जनरल में 750 देना है, बाकी के जो खर्चा है 2200 के आसपास के वो विभाग द्वारा दिया जाते हैं
0: जी।
1: तो एमा जो 28 दिन के जो चूजा है वो हद का अच्छा चूजा रही थे भैया, 45 मतलब
0: 28 दिन के
1: हाँ, हाँ, तो एकदम स्वस्थ रही थे, रंगीन चूजा है। जब है 8 महीना के होते, 8 महीना में है पर डे एक अंडा देते अगर स्वस्थ शरीर है।
0: एक कतिक दिन में अंडा दे लगते?
1: 8 से 10 महीना।
0: 10 महीना
1: हाँ, तो आप मान, और ये सबसे अच्छा योजना एकर पर मानथन हमन कि यह बैग क्या डे मतलब आप लोग जो आप दाल भात खाते हैं, आपके लड़का मन जो खाते हैं रोटी सब्जी, वही अंगना में फेंक दिया है, कब कोई अलग से दाना दे के जरूरत नहीं। शुरुआत के जो 28 दिन के बाद हमन 10 किलो दाना देते हैं, वो 2-3 दिन पर काफी है। ओकर बाद घर के ही खाना चल, दाल चावल हो गए, रोटी हो गए, सब्जी भाजी के जैसे भाजी फेंक, लाल भाजी बना था टुकड़ा ला फेंक दिस, तो वो सब लोग खा के बड़े होते हैं। यह टीकाकरण करके आ रही थे मैरक डिजीज के, पहले 2-3 टीकाकरण हमन करके दे रही थी, तो बीमारी भी हमें ज्यादा नहीं लगे। तो 8 से 10 महीना में है, 28 दिन में अगर मान ली कि 45 चूजा आप लोग देता, 45 में थे 30 से 35 जो चूजा है वो फीमेल हुई
0: जी,
1: मादा हुई। अब मादा 35 मान के चला, जमा कि 5 अंडा नहीं देवा, मान लो कि कोई शारीरिक कुछ प्रॉब्लम हो गया, 25 भी अगर अंडा देते तो एक दिन में हमन के किसान भाई मान ला 25 अंडा मिली।
0: मैडम फोन आते ले लेते हैं। हेलो, राम राम, जय जोहार।
2: हाँ भैया, मोर माया भरे, राम राम। कटाई जिला बेमे तरह छत्तीसगढ़ ले नारायण प्रसाद वर्मा बोला था भैया।
0: हाँ, नारायण प्रसाद वर्मा भाई, जय जोहार, राम राम। आओ आप

0: की स्वागत है आज के कार्यक्रम में।
1: हाँ दीदी, राम राम।
2: राम राम भैया, बताइए भैया क्या जानकारी चाहिए।
1: हाँ दीदी, जैसे मैं कहा है मोर घर में तो ऐसे देसी गाय भैंसी भी है। हाँ। और बकरी भी है। लेकिन एला व्यापारिक दृष्टि से कुछ बढ़िया ऐसे योजना बताओ दीदी, जेकर लाभ हम ले और सरकार ये योजना में हम बढ़िया अच्छा किस्म के जैसे बकरी है भैंस है ये मोल पालना है दीदी, तो एक बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ कि अच्छा। सरकार के योजना के लाभ हमन कैसन ढंग ले सकते हैं।
2: भैया जैसे बकरी आप मन कहा ना बकरी, अब अभी तक मैं मुर्गी के बताते रहे, बकरी की योजना ला बताता हूँ। बकरी के ये जो योजना है हमन के अनुदान पर बकरा वितरण योजना, चूंकि ये जो योजना है वो सिर्फ उसी किसान भाई बहन मन है जो पहली से बकरी पाला थे, जेकर करा कम से कम 10-15 बकरी हो ही तब जाके वाला एक उन्नत नस्ल के बकरा दे की योजना है। लेकिन आजकल का है जो अभी कुछ सालों में बकरा दे की योजना नहीं है, बकरा के पैसा दे की योजना अनुदान जिला के इतना मन अनुदान, तो इस योजना के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ला उन्नत नस्ल के, जैसे उन्नत नस्ल हमारे के बकरी में का होते जमुनापारी सिरोही और बंगाल और बारबरी को एक बकरी खरीदे के हमन पैसा देते, ठीक है। एक बकरी का होते एक बकरी उन्नत नस्ल के होना चाहिए, ओकर आयु 1 से 2 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 18 किलो वजन होना चाहिए। ए आप कोई हितग्राही किसान खरीदी जे हाँ 13,000, अब चाहे आप 14,000 के खरीदा चाहे आप 10,000 के खरीदा, सरकार वाला लागत मानते 13,000 के, तो 13,000 के लागत में खरीदिया 14,000 मतलब 13,000 के लागत में खरीदिया और अनुदान हमन देता 13,000 और 1,000 परिवहन के, मतलब 14,000 लागत माना था योजना के, जेमा आप मतलब 13 अगर आप 14,000 के एक अच्छा वाला नस्ल के ग्रेडेड जमुनापारी बकरा खरीदा था तो विभाग द्वारा अनुदान जो चली वह अनुसूचित जाति जनजाति में 90%, मतलब 12,600 के और ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग पे 75%, यानी 10,500 के है ये आप खरीद सका था। अब देखिए आपका यह क्या, अरे आप मन तो एक ठोक बकरा देखा, लेकिन एक आप बकरी और बकरा के वो बताता हूँ, एक बकरा यानी 2 साल के आप दे था वो अगर सर्विस करा थे और एक बकरी आपके पहली से जो बकरी है वो एक बार माँ 2 बकरा बच्चा हो ही, चूंकि यह बहुत ही अच्छा वर्ग वो कर रही प्रजाति के रही, तो 2 बच्चों में से अगर एक बच्चा नर और एक बच्चा मादा मान के चलते तो हर 6 में आपके साल भर में तो 2 नर और 2 मादा ऐसे ही हो गए। जो विभाग के द्वारा संचालित योजना में आप लोग बकरा दे 14,000 तक के, तो मैं तो आप इतना अच्छा बकरा मिले 14,000 में, तो एक बकरी तो ऐसे ही हो गए, मतलब साल भर में आपके 4 बतो और 4 में से 1 मृत्यु दर भी मान बोन तो 3 तो कम से कम रही। और बकरी मन का क्या है 1 साल से 1.5 साल में बच्चा दे के प्रवृत्ति होते है और साल भर में 2 बार बच्चा दे अगर स्वस्थ शरीर रहता।
1: दीदी कई ठो बकरी मन 3 बच्चा भी देते।
2: हाँ 3 देते थे, कई मन 1 भी देते, कई मन 4 भी देते, तो वो तो खैर 2 बच्चा ला नॉर्मल माना जाता कि हाँ 2 तो देबेच करी। तो ये है वो है मतलब ये जो योजना है बहुत अच्छा योजना है। अब ये योजना अब आप जा कही दे कि दीदी मैं तो जान गई योजना का मतलब कैसे भरना है कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको निकटतम पशु चिकित्सालय में जाके बताना है कि मोला ये वाला योजना के फॉर्म भरना है। अब मैं सब किसान भाई मन ला रेडियो के माध्यम से बताना चाहत हो कि जो हमन के फॉर्म है हर किसान लाभ भरे के टारगेट बहुत कम रही थे और किसान भाई मन जो लाभ लेना चाहता वो बहुत ज्यादा है, तो हम मतलब सेलेक्ट करना पड़ता कि सही कौन है, काकर करा सही में 10 से 15 ठोक बकरी हावे कि नहीं, योजना के अंतर्गत वो आते कि नहीं, पात्रता रखते कि नहीं, तो पात्रता अगर आप रखता तो विभाग द्वारा आपके द्वारा फॉर्म भरना चाहिए। फॉर्म भरे पर सबसे पहले आपके जो संबंधित सरपंच है आपके नगर आपके कृषि स्थायी समिति के जो अध्यक्ष है ओकर द्वारा फॉर्म के अनुमोदन करवाहा, जब तक आपके सरपंच और आपके जनप्रतिनिधि वाला प्रमाणित नहीं करी तब तक विभाग के द्वारा वो फॉर्म ला भरे के, ओकर बाद आप मन ला सबसे पहले पशु चिकित्सालय द्वारा फॉर्म भरना है, जो फॉर्म में आधार कार्ड पासबुक के पहला नंबर के खाता 2 फोटोकॉपी आपके जो जहां पर ही था वो जगह के अगर B1 खसरा है तो या राशन कार्ड है तो ओलर लगाना पड़ते, ओकर बाद वो जाते बिलासपुर फिर आगे जाके योजना के स्वीकृति आते, और ओकर बाद जब अनुदान के राशि अगर स्वीकृति हो गए तो आप मतलब पशु खरीदना है, पशु खरीदे के जो पशु कहाँ से खरीदना है जो बाजार है बाजार ले खरीदना है या तो फिर जो हमन के फार्म है सरकारी ओ फॉर्म से खरीदना है और ओकर बिल ला सत्यापित करना है कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष या सरपंच, जो भी आपके जनप्रतिनिधि है ओकर, और वो लिख के भी दी ही, वो प्रमाणित करी कि आपने ये खरीदा है, और का बिल और फोटोग्राफी, फोटो जो हो ही आपके साथ, ये तीन के

0: डाल जाए के बाद फिर आप मन ला आपके खाता में अनुदान प्राप्त हो जाएगी। तो ये हम उनके योजना के प्रारूप है जो कि बकरा के द्वारा बकरा के संचालित।
1: बीमा है
0: बीमा का होते बकरी में जैसे पशु में और इंसान में एक एक बीमा होते जैसे एक गाय के बीमा हुई टैग लगे एक पशु के लेकिन बकरी में 10+1 के बीमा होते मतलब 10 बकरी के प्लस 1 बकरा के एक साथ बीमा हुई। जिस कंपनी से आप बीमा करवाना चाहता ओका से बीमा के जो खर्चा वहन है वो पशु किसान ला खुद करना पड़ी और बीमा के जो कागज है वो जमा करना पड़ी ऑफिस में। तो बीमा के राशि के बिना अनुदान के राशि के पात्रता नहीं रखा है किसान मन। तो बीमा हर योजना में चाहे कोई भी सिर्फ बैक कैट कुटकुट पालन योजना ला छोड़ के सारे योजना में फाइनेंस करवाना है।
2: तो अरमज भाई फोन लगाया अखर बार आप मल्ला बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
1: जय जोहार राम राम भैया धन्यवाद।
2: तो तुम प्रमुख रूप से राष्ट्रीय पशुधन मिशन आते राष्ट्रीय गोकुल मिशन है पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम है ना पशुपालन व संरचना विकास निधि है राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम पशुधन बीमा योजना और पालक मल्ला मिलने वाला लाभ योजना। तो अतका कन योजना आपन के विभाग द्वारा चलाए जाते तो एक एक करके जिन्हा सरल और सुगम किसान मन तक पहुँचाए वो योजना बताओ।
0: भैया जैसे आप योजना के नाम बताया ये जो योजना है ये फंडिंग योजना है
2: जी
0: मतलब राष्ट्रीय गोकुल मिशन हो गए राष्ट्रीय मतलब जो रोग नियंत्रण हो गए ये सब जो है ये फंड करते
2: जी
0: एकर ये जो फंड जारी करते लेकिन जो विभाग के जो योजना है वो जो किसान तक पहुंचावन हमन वो नाम के थ्रू पहुंचाथन जैसे बैक कैट कुटकुट पालन योजना
2: जी।
0: अब बैक कैट कुटकुट पालन योजना ला कौन फंडिंग करते तो वो आही आपके राज्य मतलब राज्य पोषित है की डेयरी पोषित है की आपके गोकुल मिशन के अंतर्गत आते की आपके क्या बोलते आते पशुधन रोग नियंत्रण माते तो ये सब ये जो आप नाम ले है योजना के अंतर्गत फंडिंग एजेंसी है।
2: अच्छा
0: अब मैं आप जो मैं बताऊँ किसान भाई मतलब वो नाम से बताऊँ
2: हाँ,
0: नाम है सब जैसे आपने बोला ये वाला पशुधन रोग नियंत्रण योजना इस योजना के अंतर्गत हमन के सारा टीकाकरण कृत्रिम गर्भाधान योजना आते जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जैसे किसान भाई मतलब पता हुई मतलब लगते कि हम टीका लगाथन तो वो जो एक एक टीका है एक एक टीका के जो लागत है वो 1,500 अलग अलग टीका के अलग अलग लागत आते
2: हैं कीमती
0: होते हैं। जब आप बाहर से खरीदे आप एक रेबीज ला बाहर से खरीदा 150-200 के रेबीज है विभाग द्वारा 50-50 रूपए में लगत है 35-50 रूपए में या HSBQ FMD तो फ्री में है जेकर कोई निःशुल्क है सारा। तो ये जो फंडिंग है जो खरीदे ये जो आप नियंत्रण है रोग नियंत्रण योजना के अंतर्गत आते हैं। तो
2: जी।
0: आप टीकाकरण के जो योजना है यही योजना अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन बताया राष्ट्रीय गोकुल मिशन के योजना है जैसे हमन के है पशु सखी योजना
2: जी।
0: ये विभाग द्वारा संचालित नहीं है चूंकि ये जिला पंचायत द्वारा संचालित है फंडिंग जिला पंचायत से
2: हाँ,
0: तो वो मां हर गाँव में एक पशु सखी रहना जरूरी है।
2: अच्छा
0: वो कम से कम वो है एक कड़ी है हमारे और किसान के बीच
2: बीच के जोड़ थे
0: कि वो जाके किसान मतलब बताए कि भाई अभी योजना के फॉर्म भरा थे साल भर तो भर नहीं सकन तो शुरुआत में भरथन ताकि आगे के हमन भी कार्यवाही कर सकन। दूसरा टीकाकरण चला थे तो पशु सखी जो ये योजना है ये हर आपके गोकुल मिशन वाला योजना है पशुधन बीमा योजना जिसे आपने बोला पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत जो सरकार जो भी कंपनी योजना के परमिशन देते वो है ST अनुसूचित जाति जनजाति OBC और जनरल के हिसाब से पशु के बीमा करते ताकि उनका जो मृत्यु हो जाए तो किसान मतलब ज्यादा प्रभावित ना होए
2: यानी उखर भरपाई बीमा के माध्यम ले
0: ना हो मतलब
2: किया जाए।
0: हाँ हाँ। तो एकर मोस्ट प्रोबेबली इसे हम जानता जितका भी लागत है 60,000 के पशु है तो 9% होकर बीमा के राशि माना जाते। अब चूंकि सरकार जब एला चालू करते तो 9% में से 4-5% विभाग के द्वारा दिया जाते एक या 2-3% किसान के द्वारा दिया जाता।
2: अच्छा।
0: 3 वर्ष के रही थे तो किसी प्रकार के भी मृत्यु हो ही तो पशु के जो लागत है वो किसान ला मिल जाएगी। तो पशुधन बीमा योजना तो अतका अच्छा योजना है आप यह आपके मतलब आपके जो व्यवस्था है पैसा के ओला बहुत हद तक जैसे कि ना हर घर LIC बस वैसे हर घर पशु होना हर घर बीमा होना चाहिए। और एकर बहुत अच्छा चीज है कि जरूरी नहीं कि 60,000 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख के जर्सी गाय की ही योजना है आपके 5,000 के भी अगर पशु है तो 5,000 के 5% 9% के हिसाब से आपका बीमा योजना हो ही।
2: बिल्कुल तो ये सही बात लापन फोर के बतावा था तो नहीं किसान मन यही समझते हैं कि भाई लाख डेढ़ लाख के जैसे माल खरीदत हन तेखरे भी

0: होही का, का 4,000, 5,000, 10,000 के मवेशी रखे न उखर नहीं होही का, तो आज आप मन बढ़िया खुल के बताते हो कि एकरो बीमा किया जा सकते
1: किया जा सकते
0: जी जी जी जी।
1: और एकर अलावा जो योजनाएं जो विभाग राज्य पोषित जो चलत है वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहली तो है जिसे हमन के मैं जैसे पता है प्रजाति अलग अलग है, बकरी के जिसे बता चुके हूँ, अब हमन के सुअर योजना।
0: बिल्कुल मोहू ही मुँह बात अपन छीन लिया, काबर ये बरहा जेन है ना आज के समय में रोग व्याधि कम लगते और कम खर्चा में

0: या काबर ये बरहा जेन है ना आज के समय में रोग व्याधि कम लगते और कम खर्चा में ज्यादा मुनाफा देने वाला अगर आज के समय में कोई है तो ये सुअर पालन है।
1: सुअर पालन ऐसा योजना है कि मतलब आज जो है जैसे बीमारी को देखते हुए या कोई भी ला देखते हुए सुअर पालन ला सबसे अच्छा माना गया है। बीमारी भी कम है, लागत भी कम है और सबसे बड़ी बात तो बच्चा जैसे बकरी में 2 से 3 बच्चा होते हैं एक बार के प्रेगनेंसी में, एमा तो 7 से लेकर 12 तक बच्चा मानते हैं। कोई कोई ऐसे ऐसे ब्रीड है जो 12 से 15 बच्चा देते
0: हैं। सबसे ज्यादा अगर बढ़ोतरी देने वाला है तो वो है सुकर है कह जाए
1: सुकर है।
0: तो इमन बछर में 2 पैद देते कि 1 पैद देते?
1: ये तो बछर में 2 पैद 3 पैद भी दे सकते
0: हैं। तो सबसे ज्यादा कई गुना लाभ देने वाला है कह जाए
1: 114 दिन के प्रेगनेंसी है कर आराम से दे सकते हैं। और सबसे पहले एक मांस के जो रेट है आप बाजार में पता चलिए 350 से 350 रुपए किलो बिकते है मुर्गी ले ज्यादा।
0: अच्छा
1: तो और एक जो एक डेसिंग परसेंटेज कहते हैं हमन डेसिंग परसेंटेज यानी जितका किलो के है ओकर काटे के बाद
0: जी
1: काटे के बाद जो परसेंट आता है वो कत कैसे एक मुर्गी 2 किलो के काटे के बाद वो आते हैं 1 किलो के। तो हम 1 किलो भले 4 किलो के पैसा देते हैं खाद तो 1 किलो है ना तो लेकिन एकर क्या होता है डेसिंग परसेंटेज अगर वो मान लीजिए 30 किलो के है तो 25 किलो मांस वहां मिली एकर 70% तक ड्रेसिंग परसेंटेज है मुर्गी
0: वेस्ट मटेरियल कम जाते
1: है, कम है कम जाते है मांस ज्यादा है मां हड्डी और मांस ज्यादा है।
0: जी, जी, जी, जी,
1: तो सुअर पालन बहुत अच्छा पालन है। योजना भी हमारे करा है जैसे हमन के जो है अनुदान पर सुकर त्राही इकाई सुकर त्राही मतलब 2 मादा और 1 नर।
0: फोन आते मैडम ले लेते हैं। हाँ कौन बोला था कहाँ ले बोला था?
2: मैं करगी कला से बोला था पूर्णा पांडे भाई। बढ़िया
0: करगी कला से आप मन के स्वागत है। राम राम जय जोहार।
2: राम जय जोहार भाई।
1: नमस्कार दीदी।
2: नमस्कार दीदी। राम
1: जय जय जोहार जय जोहार। बताइए दीदी योजना से जानकारी कौन सा योजना के जानकारी चाहिए पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित?
2: बरसात पहले अगर हम कुछ बीमारी आए थे ना
1: हाँ
2: तो उसके बारे में जानना भी थे।
1: टीकाकरण जरूरी है। टीकाकरण भी हमारा एक योजना है निःशुल्क टीकाकरण। तो आप मन के अगर भी पशुओं में बरसात के पहले टीकाकरण लगाना है तो आप जाके निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सका था। टीका निःशुल्क लगी और 6 महीना के ऊपर के सारे पशु वाला टीकाकरण कराना अनिवार्य है। सिर्फ जो बीमार है ऑलरेडी बीमार पशु है या किसी प्रकार के टेम्परेचर ज्यादा है तो ओला आप रोक सका था ओला जब ठीक हो जाए तब लगा थी। तो ये टीकाकरण आपके निकटतम पशु चिकित्सालय से करवा सका था।
0: जी आप मन जिन जानकारी चाहो आप मन मिल गए है ना। आप मन फोन लगाए खरबर बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जय जोहार।
1: इहू माँ हमन कोशिश करते जो पहले के किसान भाई मन जो सुअर पाला थे वो मन हो तो अच्छा है। तो एमा क्या करना है सबसे पहले तो यह एकर जो लागत है पहली सरकार अभी जस्ट संशोधन करी से ये संशोधन हुई से इसी महीना पहले तो ये कम लागत रही 9,000 के लागत में आत रही।
0: अच्छा।
1: लेकिन अभी एकर सरकार बढ़ा के 25,000 करे है
0: जी।
1: ये योजना के लागत हम जो मानथन 25,000 है 25,000 में आप मतलब 1 नर और 2 मादा यानी कि 1 नर 8,000 रुपए प्रति पशु प्रति नर प्रति नर
0: एक नग
1: हाँ एक नग के हम मानते हैं तो 24,000 तीन के 8 तीन 24।
0: अच्छा।
1: और 1,000 परिवहन जो आप मान लीजिए आप रहा था बिल्हा में आप बिल्हा में रहा था आप लोग खरीदना है बिलासपुर से तो 1,000 रुपए परिवहन
0: लागत
1: लागत तो 25,000 के लागत के योजना है।
0: हाँ।
1: जेमा किसान भाई मन ला सिर्फ और सिर्फ 10% अनुसूचित जाति जनजाति ला 10% के योगदान देना है 90% के जो अनुदान है वो विभाग के द्वारा दिया जाए।
0: यानी कि ये जबरदस्त योजना
1: हाँ,
0: है कहना भाई
1: मस्त है।
0: 100 रुपया में 10 रुपया लगाना है किसान ला 90 रुपया सरकार दे है।
1: सरकार दी
0: तो बताओ एक सुगम और सरल का योजना हो सका थी किसान के आमदनी दोगुनी करे बर सरकार कतेक बढ़िया मुहिम चला था वे संचालित करा था वे आपके विभाग द्वारा कह जाए
1: 22,500 तक के राशि विभाग के द्वारा दी जाए। अब एक बार क्या करना है एक बार वही सेम चीज है पशु चिकित्सालय में जाके फॉर्म भरना फॉर्म लेना है। फॉर्म ला फॉर्म में दूसरा पन्ना में लिखा रही थे आपके स्थानीय जो कृषि स्थायी समिति के अध्यक्ष सरपंच और जनपद अध्यक्ष जो भी आपके जनप्रतिनिधि है ओकर अनुमोदन के द्वारा ही फॉर्म भरी ओकर बाद वो फॉर्म आगे बढ़ी उमा पशु चिकित्सालय सहलग लग गए BFO सबके साइन होके वो उमकर साथ आधार कार्ड 2 फोटो बैंक के पहला खाता और बैंक के खाता नेशनलाइज में हर किसान भाई मन लग कहा था हमन के विभाग के द्वारा

0: बोला जाते हमेशा बैंक के खाता नेशनलाइज खाता होना चाहिए।
1: समझा दे माना आपका काहे अंग्रेजी नहीं समझ।
0: हाँ, वो राष्ट्रीय बैंक होना चाहिए,
1: राष्ट्रीयकृत बैंक,
0: बैंक।
1: आने की जैसन की ग्रामीण बैंक कहनी चली,
0: ग्रामीण बैंक चली, SBI है, कैनरा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब कुछ भाई मन एयरटेल बैंक लिखते,
1: अच्छा
0: एयरटेल बैंक के देते, पेटीएम बैंक देते,
1: तो
0: ये बैंक सरकार के द्वारा मान्य नहीं देवे।
1: मोबाइल वाला है,
0: मोबाइल वाला है एयरटेल बैंक, एमा सब्सिडी अनुदान रोक दिया जाते, कबर की अब DBT के जमाना है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, ना मैं बीच में आऊँ ना कोई बीच में आए, सीधा हितग्राही और सरकार
1: जी,
0: तो सरकार के द्वारा हितग्राही ला जाते।
1: ये बड़ा अच्छा इधर बात बताया हो, कह जाए खुल के, नहीं तो ये मन का है कंफ्यूजन हो जाती थी।
0: हाँ।
1: तो बढ़िया बता दे कि जिन राष्ट्रीयकृत बैंक है,
0: ओखर
1: आप मन अपन जिन पासबुक बनवा है ओखर हाँ। फोटो कापी आप मन जमा करना है।
0: आप एक बार जमा
1: कर पड़ी। तो कुल मिला के आज आप मन डॉक्टर रंजना नंदा जी हमारे बीच आया, किसान भाई मन पर पशु विभाग द्वारा संचालित योजना के जानकारी, जिन जन कल्याणकारी योजना है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिन सपना है किसान की आमदनी दो गुना करे के, बड़ा सुग्घर ढंग ले बताया हो, एक बार आप मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार भैया, जय जोहार सब किसान भाई मनला।
1: किसान भाई हो, विदा लेह के पहले आप मन बता दें कि आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग हमारे आकाशवाणी के इंजीनियर सौरभ केसरवानी जी मन के रही से, और एक संग अब कार्यक्रम ले विदा लेह के बेरा हो गए। अब आपके कही वो जय जवान जय किसान वीरू वीरेंद्र भैया के राम राम।
2: संगवारी हो, अभी हम सुनत रहे फोन इन कार्यक्रम जेकर विषय रही से पशु विभाग द्वारा संचालित योजना मन के जानकारी, और ये विषय में विशेषज्ञ रही है डॉक्टर रंजना नंदा, पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ, पशु चिकित्सालय बरतोरी, विकासखंड बिल्हा, जिला बिलासपुर, और ये कार्यक्रम के संचालन करते रही हवा हमार वीरू भैया। संगवारी हो, अब हम बात करबो आज के मौसम के बारे में। तो आज के अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड, आज के न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेंटीग्रेड, कहूँ कहूँ पानी गिरना शुरू हो हवा। मंडी की बात करबो तो शक्ति के मंडी के भाव हर मिले हवा, वहाँ महुआ हर 4000 रुपये प्रति क्विंटल, सरना धान हर 1650 रुपये प्रति क्विंटल। और आओ सुनत हन छत्तीसगढ़ी लोकगीत जिनला स्वर दिए हवा माया खपरडे।

संगवारी हो अभी हम सुनें छत्तीसगढ़ी लोकगीत जेन ल स्वर दिए रिन हवय माया खपरडे और एक संगे संग आज के कार्यक्रम में विदा लेके बिरा हुआ थे तो अपन भाई राम सनेहल देव विदा राम राम जय जवाहर।

किसान वाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं मेहंदी हसन। पेश है उन्हीं के स्वर में कार्यक्रम की पहली नज़्म।

सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आपने सुनी मेहंदी हसन के स्वर में जिया अमरोही की ये नज्म। लीजिए अब पेश है फैज अहमद की लिखी ये नज्म, स्वर मेहंदी हसन का है।

आस्था के साथ आज शहादत का पर्व मुहर्रम पूरे देश में मनाया जा रहा है। परस्पर प्रेम, शांति और भाईचारे से हम सभी एक दूसरे से प्रेम बढ़ाते हुए हर एक त्योहार को मनाएं और अपनी अनेकता में एकता की संस्कृति की जो विशेषता है उसे संवर्धित करें।

मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है, है इश्क मगर इतना ज्यादा भी नहीं है। क्यों देखते हैं सितारों की तरफ एक टक हम, जब उनसे मुलाकात का वादा भी नहीं है।

मैं अब इतनी दूर कि जितनी सागर से मरुस्थल की दूरी, और अभी क्या पता कहाँ ले जाए मुझको मेरे जीवन की ये सारी मजबूरी।

अपने रिश्ते पे हमें नाज है, कल जितना भरोसा था उतना ही आज है। रिश्ते वो नहीं जो सिर्फ गम और खुशी में साथ दें, रिश्ता वो है जो हर पल अपनेपन का एहसास दे।

0: खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी। मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ, हाँ
1: मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर।
2: इस गीत के साथ ही रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग,

0: सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग

0: न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमरीका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि खतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमरीका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में

0: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
1: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशुराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। US ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू टोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग

0: Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. In men's cricket, hosts Ireland have set a target of 183 runs for India in the first T20 international match of the two-match series in Belfast. Put into bat, Ireland scored 182 for 9 wickets in stipulated 20 overs. In reply, India were 129 for 6 in 15 overs when reports last came in. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah launches three-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Centre to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximise benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends two Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. And in US Open badminton, India's Ronak Chahan stuns top seed Chou Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikanth and three women shuttlers also reach the quarters. That is all in the news at 9. Good night.
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।
2: साथ साथ मेरी गजल सुनो। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
3: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
3: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुबारक बेगम की आवाजों में वो नगमा जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने। संगीत है शंकर जयकिशन का। फिल्म का नाम है हमराही।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है शकील बदायूनी, संगीत है नौशाद का और फिल्म का नाम है मुगले आजम।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी मन्नाडे और साथियों की आवाजों में। नगमा निगार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है रोशन की, फिल्म का नाम है बहू बेगम।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया, सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सभी को गले लगाने की ये पुकार गुलजार साहब के लिखे एक गाने की है जो फिल्म सदमा से है, लेकिन यहाँ बातें गुलजार के बारे में नहीं, यहाँ बातें फिल्म सदमा के बारे में भी नहीं, बल्कि यहाँ बातें एक संगीतकार के बारे में जिसके नाम में आता है राजा।

0: रहता मैं डटके रहता मैं आया है राजा
1: लो गोरे लो गो
0: राजा के संग संग
1: चुमलो चुमलो
0: आया है राजा
1: लो गोरे लो गो
0: राजा के संग संग
1: चुमलो चुमलो
2: वो सही मायने में फिल्म म्यूजिक के राजा हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों में संगीत, 8,500 से ज्यादा गाने और फिल्म म्यूजिक डायरेक्टर्स की एक लंबी कतार जो सम्मान से उनके आगे सिर झुकाते हैं, उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसे संगीतकार की बातें जो न केवल एक म्यूजिक कंपोजर है बल्कि एक गीतकार है, एक ऑर्केस्ट्रेटर है, एक म्यूजिक कंडक्टर है और है एक म्यूजिक मैस्ट्रो जिसने भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। आज बातें इलैया राजा की।
3: वो तो

इलैया राजा का जन्म 3 जून 1943 को हुआ था। मदुरई तमिलनाडु में एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है थेनी, इसके पन्नियापुरम नामक गांव में जन्मा था एक बालक। नाम रखा गया आर ज्ञान थेसिकन। हालांकि जब इलैया राजा ने अपनी स्कूल की पढ़ाई शुरू की तो उनके पिता रामासामी ने ज्ञान थेसिकन से बदलकर उनका नाम रख दिया राजैया। ये इसलिए क्योंकि गांव भर में इलैया एक बालक के रूप में बहुत लोकप्रिय थे और पूरे गांव के लोग उन्हें रासैया कहा करते थे। 14 वर्ष की उम्र में इलैया राजा अपने बड़े भाई पावलार वरदराजन की एक संगीत टोली में शामिल हो गए। ये संगीत टोली गांव-गांव शहर-शहर घूमती और अपनी संगीत प्रस्तुतियां करती। यही वो संगीत यात्रा थी जहां इलैया राजा ने सबसे पहले कोई धुन बनाई और उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया।

जिंदगी की राहें बदली 1968 में इलैयाराजा अपने गांव से चले आए मद्रास, यानी आज का चेन्नई शहर। मकसद था संगीत सीखना। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन के एग्जाम में भी उन्होंने हिस्सा लिया। क्लासिकल गिटार का एग्जाम उन्होंने दिया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मद्रास में शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संघर्ष इलैयाराजा को करना पड़ा। उस दौरान दोनों भाइयों ने मिलकर कभी किसी नाटक में संगीत दे दिया, कभी मंच पर परफॉर्म करने लगे, कभी चर्च में कॉयर म्यूजिक में हिस्सेदारी कर ली, तो कभी कोई अलग अलग तरह के मशहूर हस्तियों के कार्यक्रमों में फिलर के रूप में इस्तेमाल हो गए। लेकिन आंखों में थे सुनहरे ख्वाब और संघर्ष का मादा था दिल में, तो डटे रहे। और इस तरह से इलैयाराजा की जगह बन गई जी के वेंकटेश की संगीत टोली में। यहां से इलैयाराजा के सीखने की और लगातार आगे बढ़ने की यात्रा शुरू हुई।

आगे चलकर इलैया राजा ने धनराज मास्टर नामक एक संगीतकार का शागिर्द बनना कबूल किया। यहां वो उनसे संगीत की बारीकियां सीखते रहे और यही वो हस्ती थी जिन्होंने इलैया राजा के नाम में आगे राजा जोड़ा। सन 1976 में फिल्म अन्नकिली में संगीत देने का मौका आया और इत्तेफाकन इलैया राजा बन गए संगीतकार। 1976 में अन्नकिली नामक फिल्म में जब उन्होंने संगीत दिया तो इस फिल्म का संगीत अचानक इतना लोकप्रिय हुआ कि तमिल सिनेमा में जैसे तूफान आ गया। इलैया राजा ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज की। सुनने वाले चकित रह गए कि ऐसे भी गाने

बनाए जा सकते हैं। अचानक इलैयाराजा की गिनती एक प्रतिभाशाली युवा संगीतकार के रूप में होने लगी। इलैयाराजा की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि जहां एक तरफ उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को जोड़ा, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी संगीत की बारीकियों को अपने फिल्मी संगीत में अपनाया और एक अलग तरह का जादुई फ्यूजन तैयार किया।

फिलहाल अभी उनकी कुछ फिल्मों की बातें करते हैं। सन 1978 में उनकी फिल्म आई कज़ू हंदाई, सन 1980 में आई मुडुपानी, इसी साल आई निजलगल, 1981 में नेत्रिकन नामक फिल्म आई और इसी बरस आई निजिनथई किलनथे, 1982 में कोजू कुवुथु नामक फिल्म आई। चूंकि मेरा ताल्लुक दक्षिण भारत की भाषाओं से नहीं है, इसलिए अगर उच्चारण संबंधी कोई दोष होता है तो हम दक्षिण भारत के श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं। इलैयाराजा की जो बहुत महत्वपूर्ण फिल्में हैं उनमें शामिल है 1987 में आई फिल्म नायकन, जो उनकी 400वीं फिल्म थी, 1990 में आई फिल्म अंजलि। यहां महत्वपूर्ण ये है कि वो इलैयाराजा की 500वीं फिल्म थी। अब हिंदी फिल्मों की बात करें तो इलैयाराजा का हिंदी फिल्मों में आगमन हुआ कमल हासन के अभिनय वाली फिल्म सदमा के जरिए, जिसके निर्देशक थे बालू महेंद्रू। असल में ये फिल्म बालू महेंद्रू की तमिल फिल्म मुंदरम पिरई का हिंदी रीमेक थी।

0: सदमा की रिलीज के 4 बरस बाद इलियाराजा ने जिस फिल्म में संगीत दिया उसका नाम था कामाग्नि। उसके बाद राज सिप्पी की फिल्म महादेव में उन्हें संगीत देने का मौका मिला। सन 1996 में बालू महेंद्रू की फिल्म और एक प्रेम कहानी में उन्होंने संगीत दिया। वैसे आपको बता दें कि इलियाराजा ने रामगोपाल वर्मा की फिल्म शिवा के हिंदी संस्करण में भी संगीत दिया है और कमल हासन की फिल्म हे राम में भी उनका संगीत है। एक और हिंदी फिल्म है उनके संगीत से सजी हुई जिसका नाम है मुंबई एक्सप्रेस।
1: बंदर की डुगडुगी है, क्या शोर से बजी है।

साल 2007 में जब आर बाल्की ने फिल्म चीनी कम बनाई तो उसके लिए संगीतकार के तौर पर उन्होंने चुना इलैया राजा को, और यहां से आर बाल्की और इलैया राजा का एसोसिएशन शुरू होता है।

और फिर आई फिल्म शमिताभ, जिसके गाने लिखे स्वानंद किरकिरे ने, और इस फिल्म में था ये दिलचस्प गाना अमिताभ बच्चन की आवाज में।

आपको बता दें कि साल 2015 में जब इलैयाराजा ने अपनी 1000वीं फिल्म में संगीत दिया तो जाने माने संगीतकार एआर रहमान ने ट्विटर पर लिखा, डियर मेस्ट्रो इलैयाराजा, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी 1000वीं फिल्म में क्वालिटी म्यूजिक दिया है। आप इसी तरह से काम करते रहिए और हमें इसी तरह से प्रेरणा देते रहिए।

चूंकि इलैयाराजा के संगीत की बातें हो रही हैं और बातें हिंदी फिल्मों की भी हो रही हैं, तो आपको बता दें कि आशा भोसले से इलैयाराजा ने कुल 53 गाने गवाए विभिन्न भाषाओं में, और लता मंगेशकर से केवल 2 गाने उन्होंने गवाए।

आ जाए कि जीवन के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं, और वो ये कि जब इलैयाराजा अपना संगीत सीख रहे थे, तब उनके ऊपर जर्मनी के क्लासिक संगीतकार बाख की शैली का बहुत गहरा असर पड़ा था। आगे चलकर इलैयाराजा ने अपना पहला फ्यूजन एल्बम बनाया, हाउ टू नेम इट। इसके बाद उनका एक और एल्बम आया है जो वेस्टर्न क्लासिकल फ्यूजन एल्बम है, और इसका नाम है नथिंग बट विंड।

यहां आपको इलैयाराजा के कुछ आध्यात्मिक एल्बम्स के बारे में भी बता दें। इस तरह का काम भी इलैयाराजा ने बहुत सारा किया है। गीतांजलि, राजविन, रामन्ना मलाई, इलैयाराजविन, ये सब ऐसे एल्बम हैं जिन

में आध्यात्मिकता का रस है। इलैयाराजा का संगीत का ये सफर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों तक फैला हुआ है। जाहिर है कि दुनिया के कोने कोने में इलैयाराजा के प्रशंसक मौजूद हैं। अगर हम ये कहें कि इलैयाराजा पर सम्मानों की और पुरस्कारों की बारिश होती रही है तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्रवीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फहरिस्त है इलैयाराजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब

तो ये गलत नहीं होगा। साल 2010 में पद्म भूषण, साल 2018 में पद्म विभूषण, 5 नेशनल अवार्ड हैं। 1984 में तेलुगु फिल्म सागर संगमम के लिए, 1986 में सिंधु भैरवी के लिए, 1989 में रुद्र वीणा के लिए, 2009 में पजसी राजा के लिए और 2016 में थरई थपतई के लिए। ये 5 नेशनल अवार्ड्स हैं। इसके अलावा फिल्म फेयर अवार्ड्स, केरला स्टेट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, नंदी अवार्ड्स, एक लंबी फेहरिस्त है इलैया राजा के जीते सम्मानों और पुरस्कारों की। बल्कि अब तो लोग ये कहने लगे हैं कि पुरस्कार जब इलैया राजा को मिलते हैं तो पुरस्कार सम्मानित होते हैं।

चूंकि इलैयाराजा तमिलनाडु के एक ग्रामीण इलाके में पले बढ़े, इसलिए तमिल लोक संगीत जैसे उनकी रगों में बहता है। संगीत सीखते समय उन पर जो असर पड़ा वो पड़ा बाख, हाइडन, मोजार्ट और बीथोवेन का, इसलिए वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक भी उनकी रगों में बहता है। और इसीलिए तमाम तरह की संगीत शैलियों को मिक्स करके जब वो संगीत बनाते हैं तो ये एक जादू सा रचता है।

इलिया राजा के निजी जीवन के बारे में आपको थोड़ी जानकारियां दे दें। इलिया राजा का विवाह जीवा से हुआ, जिनसे उनकी 3 संतानें हैं, कार्तिक राजा, भावथरिणी और युवान शंकर राजा। इलिया राजा के ये तीनों बच्चे फिल्म कंपोजर और गायक हैं। आपको बता दें कि इलिया राजा को अपने हारमोनियम से बड़ा प्यार है और चाहे वो कॉन्सर्ट्स में हो या अपने स्टूडियो में गानों की धुनें बनाते रहें, वो इसी हारमोनियम का इस्तेमाल करते हैं। इलिया राजा ये कहते हैं कि जब वो छोटे थे तब किसी भी अपने परिवार के सदस्य को, यहाँ तक कि अपने भाई को भी इस हारमोनियम को छूने नहीं देते थे। इस हारमोनियम में उनकी जान बसती है। इलिया राजा का कहना है कि यह हारमोनियम जानता है कि ये उनके लिए बना है और इस हारमोनियम से ही उनके संगीत का जादू निकलता है। इलिया राजा ने अब तक 1523 फिल्मों में 8600 गाने बनाए हैं। तकरीबन 9 भाषाओं की फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया है। पूरी दुनिया में इलिया राजा 20,000 से ज्यादा कॉन्सर्ट कर चुके हैं। यहाँ इस बात का जिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि सन 1987 में आई फिल्म नायकन को टाइम मैगजीन ने दुनिया की 100 सबसे अच्छी फिल्मों में से एक माना था। इस फिल्म का संगीत इलैयाराजा का है और इसके गानों से लोगों को बड़ा प्यार है।

संगीत दिया। वो थी पल्लवी अनु पल्लवी। ये एक कन्नड़ फिल्म थी। ये वो दौर था जब फिल्मकार मणिरत्नम सिनेमा में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1984 में मोहनलाल के अभिनय वाली उनारू में संगीत दिया इलैयाराजा ने। निर्देशन मणिरत्नम का था और ये मणिरत्नम की दूसरी फिल्म थी। सन 1985 इलैयाराजा ने तमिल फिल्म पागल निलवू में संगीत दिया। ये वो फिल्म है जिसके जरिए मणिरत्नम ने तमिल सिनेमा में अपना कदम रखा था। 1985 में आई इदया कोविल, 1986 में आई मौन रागम, 1987 में नायकन आई जिसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, 1988 में आई अग्नि नटचित्रम, 1989 में आई गीतांजलि, 1990 में अंजलि आई और इस फिल्म ने 3 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। सन 1991 में इस फिल्म को भारत की ओर से ऑस्कर पुरस्कार में भी भेजा गया था। इलैयाराजा और मणिरत्नम का साथ। सन 1991 में आई फिल्म थलपथी जो महाभारत के एक किरदार से प्रेरित थी।

अब आपको बताते हैं मणिरत्नम और इलैयाराजा के लंबे साथ के बारे में। सन 1983 में इलैयाराजा ने सबसे पहले मणिरत्नम की किसी फिल्म

जुलाई 1993 में इलैयाराजा ने वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक के अपने सबसे बड़े और पहले काम को रिकॉर्ड किया था। इसे उन्होंने सिंफनी नंबर 1 का नाम दिया था और इसे रिकॉर्ड किया गया था लंदन के प्रसिद्ध रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ, और वो भी जाने माने कंडक्टर जॉन स्कॉट की निगरानी में। आपको बता दें कि रॉयल फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा दुनिया के सबसे उत्कृष्ट पश्चिमी संगीत से जुड़े ऑर्केस्ट्रा में शामिल।

सन 2012 में संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इलैयाराजा को संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। सन 2010 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। सन 2018 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इलैयाराजा की उपलब्धियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। सन 2012 के समर ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में इलैयाराजा की फिल्म राम लक्ष्मण का एक गाना बजाया गया था। सही मायनों में इलैयाराजा एक लिविंग लेजेंड हैं। अपने काम के प्रति उनका जुनून, उनका समर्पण लाजवाब है। 9 भाषाओं में इतनी बड़ी तादाद में फिल्में करना और लगातार सक्रिय रहना और उत्कृष्ट काम करना उन्हें महान बनाता है।

0: संगीतकार इलियाराजा का संगीत संसार लेकर आया था आज के फनकार। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: फैटी लिवर इन्फेक्शन एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। दिल का सौदा है एक ऐसा सौदा जहाँ जो खोए वो पाता है और जो पाता है वो खोता भी है। इसमें जीत कर भी हार है और हारने वाले की भी जीत। इसकी है ऐसी रीत कि ना यहाँ होता है मोल भाव ना कोई नाप तौल। जनाब ये है दिल का शहर, यहाँ बदलते हैं मौसम हर पहर। धूप में खिलती है चांदनी और रात में बरसते हैं शोले। जैसा जैसा दिल कहे बस कुछ वैसा ही मौसम हो ले।

खोजती हैं ये नजरें जिसे दिल के बाजार में वो दिल जाने कहाँ गुम है। ढूंढूं कहाँ उसे, ये सितारे भी गुमसुम हैं। जलते हैं अरमानों के दिए, उम्मीदों की रोशनी में ही कहीं मिल जाओ तो क्या बात हो। दिन रात का ये सफर मिट जाए जो हाथों में तेरा हाथ हो। है दिल को बहारों का अरमान तेरे संग, मैं तुझसी बन जाऊं, रंग जाऊं तेरे रंग।

हार जीत का ये दुनियावी तिलिस्म हमें समझ न आया है, हमने तो खोकर दिल को अपने तुझे दिल के करीब पाया है। इस सौदे में लगा हमारा सब कुछ, पर कुछ भी ना गंवाया है। जितना दिया पास से अपने, लाखों गुना वापस आया है। एक ओर दिल का सौदा हुआ खरा और दूसरी ओर निगाहों ने भी ठंडक पाई है। तेरे साथ जीवन की हर तन्हाई भी शहनाई है।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। दिल की सौदेबाजी में हमने पाया प्यार का रंग, दुनिया के भीड़ में मिला है एक हम कदम। तो मिल ही गया तो क्यों ना तय करें ये सफर अब साथ में ही, हाथों में हाथ थामे मिला लें कदम से कदम। कभी कलियां खिलें तो कभी गलियां मिलें, साथ है तेरा तो मुझे है अब क्या गम। देख ले साथी दिल की सौदेबाजी में संभाल लेना जो जरा भी लड़खड़ाए हम।

दिल का क्या भरोसा, तेरा होकर भी तुझसे ही शर्माता है। कहते कहते अपनी कोई बात खुद ही चुप हो जाता है। कभी लगता है जैसे बरसों से हो तुम राजदार इसके, और अगले ही पल न जाने क्यों अपनी बातें तुमसे ही छुपाता है।

छेड़ता है रागिनी कोई और झूम झूम जाता है, पाकर तुझे खोता है और खोकर तुझे पाता है, हर रोज तेरी एक नई झलक ही पाता है।

जिंदगी के सफर में चल रहे थे तन्हा ही हम, तुम मिले तो बदले मायने सफर के। इस साथ का दिल पे हुआ है असर ये कि अब तन्हाइयों में भी होती है तुमसे ही बातें, याद आती हैं वो मुलाकातें। जब फूलों की चादर पर चले थे हम साथ, यादों में ही थामती हूँ अब तेरा हाथ। तो हकीकत बनकर सामने नजर आते हो तुम, मेरे अफसानों को रंग जाते हो तुम।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 022-400-24662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
1: गुड नाइट।
2: हाँ गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 10 medals. And that is the end of this news bulletin.
1: समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारा आज का प्रसारण संपन्न होता है। कल प्रातः 5:53 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभरात्रि। जय हिंद।